0: शब्द है सुरभि, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सुगंधित, खुशबूदार, प्रिय, मनोरम, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, विद्वान। शब्द है सूरती, स्त्रीलिंग, अर्थ है शक्ल, रूप, याद, स्मरण। शब्द है सोहता, विशेषण, अर्थ है मोहक, सुंदर। शब्द है सोहावन, अकर्मक क्रिया, अर्थ है अच्छा लगना, भला मालूम, सुंदर, शोभित होना। शब्द है स्वच्छंद, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है अपनी इच्छा, पसंद। शब्दकोश का अगला अक्षर है ह। शब्द है हसिया, पुल्लिंग, अर्थ है लोहे का धनुषाकार औजार जिससे फसल तरकारी आदि काटते हैं। शब्द है हठी, विशेषण संस्कृत, अर्थ है हठ करने वाला, जिद्दी। पृष्ठ संख्या 151। ब्रेल भारती, हिंदी वर्ण व गिनती। इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें हिंदी वर्ण व गिनती को ब्रेल रूप में अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 152। पहेलियों के उत्तर। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें पाठ में आए हुए पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। पाठ एक, मां कह एक कहानी। प्रश्न, आज की पहेली। इन पहेलियों के उत्तर इस प्रकार हैं, मां, पक्षी, सुरभि। पाठ दो, तीन बुद्धिमान। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, मां, पक्षी, सुरभि। पाठ दो, तीन बुद्धिमान। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, गिरगिट, नीला डिब्बा। पाठ चार, पानी रे पानी। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, मेह, जलाशय, नीर, अंबु, सर, सरोवर, सलिल, ताल, तटिनी, बारिश, प्रवाहिनी, तरंगिणी। पाठ पांच, नहीं होना बीमार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, आलू का पराठा, मसाला डोसा, वड़ा पाव, ढोकला, पानी पूरी, मक्के की रोटी, बाटी, रसगुल्ला। पाठ सात, वर्षा बहार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़। पाठ आठ, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, रूपक, लक्ष्मी, तिलवाड़ा, कहरवा, झूमरा, दीपचंदी, दादरा। पाठ नौ, चिड़िया। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, तोता, कौवा, खंजन, कोयल, कबूतर, चातक, हंस। पाठ दस, मीरा के पद। प्रश्न, मधुर ध्वनिया। उत्तर, बांसुरी, तबला, शहनाई, वीणा, ढोलक, बीन, संतूर, मजीरा। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, आवन, घुमड़, नगर, गोपाल। पृष्ठ संख्या 153। मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर इस शीर्षक से संबंधित आप अपने मन की अभिव्यक्ति को रचनात्मक ढंग से लिखिए। पृष्ठ संख्या 154। मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर भी आप अपने मन की बातों को इस शीर्षक के अनुसार रचनात्मक ढंग से लिखिए। यहां यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार।
2: सीरो के आगे सीरो सीरो के।

0: पीछे जीरो, आगे जीरो, पीछे जीरो। टीको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखें तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यह टॉपिक लेकर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर MP मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
3: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्रॉल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
2: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
3: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
2: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
3: लेमन ग्रास भारत वर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
2: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
3: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
2: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए।
3: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नेमा, CKP25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
2: और डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो।
3: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
2: और डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
3: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
2: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
3: रोपण का कार्य वर्ष में दो बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र, एक भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है।
2: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
3: लेमन ग्रास साग की फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2 से 2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
2: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
3: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3 से 4 कटाइयों प्रति वर्ष।
2: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
3: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45 से 50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
2: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
3: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग हैं लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियां सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
3: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60 से 70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
2: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
3: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है, तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45-50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें, तो इसमें जो नमी होती है तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फिर डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
2: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
3: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
2: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
3: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
2: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
3: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचाता है, त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
2: जी तो श्रोताओं, आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फायदे हैं और इसलिए बाजार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। और व्यावसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रीक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: Ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप

सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट। खुश होंगे अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए, सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह के बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हो, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी, और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत मोटे, आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं।

0: और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीजों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे के मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हो तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपके ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं। ये गलत है, आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीजें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए। और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आंखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा रहे हैं,
1: रहा है,
0: तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात की ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक लाई जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें। और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं आप सभी को बता दूँ, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है। परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती न करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं। और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्टी ड्रिल का उपयोग करते हैं।
0: जी सर, इसके फायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
1: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फायदे हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं। जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है। और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं। इसमें सबसे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी बुवाई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुआई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्रिक है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता।
0: जी सर, धान की सीधी बुआई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
1: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें। और समतलीकरण करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पे कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं, उनका समुचित उपयोग होता है। और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है। पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है। और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेबल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं, साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
1: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ पर खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी तो खरपतवार की बढ़वार को वो रोकेगा। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिसका जड़ है जो कि गहरे नीचे उसकी गहराई ज़्यादा तक हो, एवं ऐसे प्रभेद का हम चयन करें जो जहाँ जिसकी जल की आवश्यकता कम हो। सीधी बुआई करते समय हमको प्रभेदों का चयन जल की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। हम सामान्यतः बिहार में अगर हम धान की प्रभेद की बात करते हैं तो हम लंबी अवधि की किस्म को भी लेते हैं और साथ ही साथ कम अवधि के किस्म को भी लेते हैं। हम अगर प्रभेदों की बात करें तो राजेंद्र महसूरी, MTU 1001, सबौर रजल, सहभागी, सुष्क्रमराट, इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
0: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
1: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत ये मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमा होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई, और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस बार का ही लें, इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था, और उसके बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम हैं जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
0: सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूंकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं सुगंधित धान ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 केजी नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 केजी आप फॉस्फोरस की मात्रा और 60 केजी पोटास की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा तथा स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12-32-36 के माध्यम से भी पोषक तत्व तो हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप धान की सीधी बुआई या धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना ना हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिन, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पाइरेजोसल्फिरॉन, ये पाइरेजोसल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। यह खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पाइरेजोसल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है, जिसको कि हम 250 ml दवा है जो कि 1 हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोफ है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 2,4-D इथाइल इस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुशंसा हमारे यहाँ की पाइरेजोसल्फिरॉन एवं बिसपायरीबैक सोडियम का हम इस्तेमाल है जो कि बुआई के 15 से 20 दिन के बाद करें तो हम अधिकतम घासों का है जो कि कंट्रोल कर लेते हैं आराम से। इसके बाद एक और चीज़ बचती है कि सिंचाई एवं जल प्रबंधन। जहाँ तक धान की सीधी बुआई का बात है, हम सिंचाई के बाद सामान्यतः क्या होता है कि उचित नमी रहती है तो हम धान को बिना सिंचाई के भी हम खेतों में लगा लेते हैं। सीधी बुआई की फसल जमाव की अवस्था में जल भराव से सामान्यता है जो कि उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है, तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से 1 महीना पहले कर देना चाहिए। सामान्यतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए और हमको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सामान्यतः हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं, तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज़ होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। समानता अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहां उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक पर निर्धारित करती है, इसलिए हमें बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है, तो इन सब चीज़

हैं, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों

0: ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया। कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा?
1: देखा।
0: सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
0: टीकन भाभी एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
0: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
0: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं,
1: कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
2: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
3: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
1: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
3: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
3: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
3: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
3: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है, पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता। पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
3: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
4: बस यही जीत है, सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
3: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
4: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
3: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात धन जगह देखकर नहीं आती।
4: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
3: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
4: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
3: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
4: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
2: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
3: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
4: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
2: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
4: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई हैं।
3: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
4: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
2: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
4: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना वही असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
2: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों है इतने जीरो?
6: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
5: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनके लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
8: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
7: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
8: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते हैं, और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया, जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
7: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
8: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है, इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
7: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
8: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है, ताकि सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
7: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
8: जी,
7: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
8: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय है लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए, और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई, तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है, और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षतिकर क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग। तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
7: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
8: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं दो तीन केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
7: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
8: धन्यवाद आपको भी।
7: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि।
10: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
11: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य के किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी।
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी।
1: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सुमारू चले घास

0: घास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गया।

0: टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
5: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
6: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
7: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, तो अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
6: आजा खेलते हैं।
7: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
8: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
7: अच्छा वो क्या?
8: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
9: हाँ दूसरा क्या?
8: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
6: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए

0: था, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब, हर बात ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंडगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे।
0: अभी बोला चाहता हूं मैं।

0: आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
3: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
3: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज से ही वो काफी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए
3: भिंडी के फसल के लिए? खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
3: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए लेकिन बारिश को देखते हुए, और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
3: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है। और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार, तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे, ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
3: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण है वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण है। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण है आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी जरूरी मिनरल्स है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज आएंगी, तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी,

0: और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है, उनका मूड कभी काफी अच्छा रहता है, कभी काफी खराब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है। तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफी डल हो जाती है। तो इन सारी चीजों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखें एकदम खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें।
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
2: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
2: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
0: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है।
2: जी,
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है।
2: जी,
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
2: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उगटा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी मैंने जान लिया, लेकिन अब बेसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बेसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
2: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है, और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा, उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो, और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
3: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
2: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास से उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडी बर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
3: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बेसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बेसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
2: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे, आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं, बैसिलस, सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगरजी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगरजी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कि ये बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
3: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल।
2: जी बिल्कुल।
3: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
2: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हैं, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में, इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये उपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
3: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
4: उन्नत कृषि जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।

सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई, तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे, ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
2: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
3: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है, जो एक कीटाणु से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
2: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
3: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
2: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
3: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
3: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
2: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
3: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
2: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
3: हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए, भले लक्षण हो या ना हो।
2: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
2: और भैया ये इलाज कितना लंबा चलता है?
3: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं। बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
2: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
3: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
2: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल आरजी उमा, गलत फहमियां ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
2: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
3: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीवी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीवी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद, मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
2: भैया कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
3: यह भी गलत है, टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर गरीब, जवान बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
2: भैया ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
3: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
2: भैया और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते हैं।
3: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
2: भैया लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
3: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है। जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है।
2: पर भैया कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
3: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
3: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
2: और भैया टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
3: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
3: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की

0: अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
1: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीवी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीवी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
0: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
1: हाँ उमा बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग्य बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाई जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: साथियों आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
2: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं, बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
0: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
2: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं, इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की पहली किश्त मिलती है। और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2 लाख की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र, जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं, उस वहां पे जाकर के या फिर खुद ही इंटरनेट पर से इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की, जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है, वो है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
0: जी,
2: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और फिर इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50% से 80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना। फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है, जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आए, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो कोई उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
0: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया और अंत में आप महिला किसान, खास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
2: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है। वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है, उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सके।
0: जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून की वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं, और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी मैम कि कृषि सखी सरकार द्वारा एक पहल चल रही है, कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएं और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं वहाँ जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जाकर के, या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पर जानकारी ले सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 एफएम ग्रीन पर. आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए. तो किसान भाइयों, हर रोज की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे. और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम. और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद. तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी. हमारे किसान भाइयों के लिए हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में.
1: जी धन्यवाद.
0: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है. तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है. वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं. तो बिल्कुल आप जान सकते हैं. तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं.
1: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है. ख़ास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है. विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है. साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं. और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूल गोभी में ज्यादा पाए जाते हैं. और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूल गोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम फूल गोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है. तो फूल गोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं.
0: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से. फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं.
1: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: जी जी.
1: वो चाहे कोई भी फसल हो तो इसी प्रकार से जो फूल गोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं. इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है. तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम.
0: अच्छा.
1: तो इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुआरी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है. तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं. उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है. इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं. और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज़ आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज़ हैं जो हम पछेती मौसम में लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
1: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
0: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
1: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
0: अच्छा।
1: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
0: अवशेष, तो
1: जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
0: जी।
1: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
0: अच्छा।
1: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप दो क्यारियां बना रहे हैं, तीन क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए, ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद एक या दो दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूल गोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है, लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
0: अच्छा।
1: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है,
0: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
1: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी, और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
0: होती है,
1: बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
0: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है

0: एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएं फूल गोभी के लिए?
1: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए जैसे हमने तीन भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज्यादा होती है।
0: अच्छा।
1: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में मुख्य खेत में डालना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा जो एक खरपतवार जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120-80-80 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटास जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए, और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
0: अच्छा
1: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फास्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फोट से फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
0: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना चाहेंगे हम।
1: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं।
0: अच्छा।
1: और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण हो सकता है।
0: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
1: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबा कर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूलगोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूलगोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
0: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
1: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
0: है
1: फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। अगर जो आप तेज दोपहर में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
0: जी,
1: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा। अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
0: मतलब
1: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते हैं।
0: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं जो हानि पहुंचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान भाई हैं वो कंफ्यूज करते हैं। इसके अंदर बीमारी भी हैं, कीट भी हैं और कई तरह के ऐसे दैहिक क्रियात्मक असंतुलन भी हैं जिनकी वजह से जो गोभी की फसल है उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अंदर सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में 2-3 तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
0: अच्छा,
1: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किस्में उगाएं, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर व्हिपटेल।
0: अच्छा,
1: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। व्हिपटेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
0: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं व्हिपटेल?
1: हाँ, व्हिपटेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
0: अच्छा,
1: तो उसको व्हिपटेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहां पे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
0: अच्छा,
1: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं। या फिर इसी अमोनियम मोलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
0: अच्छा।
1: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं, तो इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं तो आप उसे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे यानी पौधे की जड़ में देंगे तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो इसके अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला गलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएँ होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौधे की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ?

वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती है तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम जरूरी हैं, जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये जरूरी है, तो कुछ जो जरूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, इससे आपका वक्त जाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकाले। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना जरूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर के लोग समझें, खास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए, किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है,
आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं।

अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझें और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए जरूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं, तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी, तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कराती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी जमीन रह जाती है तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीज़ें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगी हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई है, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आएं सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ। पोषण वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका, उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है,
2: या फिर यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमजोर
3: हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
2: तो मैम, इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
3: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्व से भरपूर। पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है। गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम, जेली, केचप, ये सब बनाया जा सकता है, और जब मौसम नहीं हो इनका तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
2: वैसे देखा गया मैम कि अभी शहरों की भी बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है, जैसे नींबू के पौधे हो जाएं, मिर्च के पौधे हो जाएं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतरकर बाहर आकर हम बात करें शहरों के, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं। वैसे छोटे छोटे, जो ज़्यादा वज़न वाले जो फल या सब्ज़ी ना हो, वैसे पौधे लगाने लगे हैं। अब आप उनके टेरेस पर, छत पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वजन वाले जो फल हैं, जो सब्जी हैं, आप लगा सकते हैं। देखने में भी काफी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ है इसके। और मैम, अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
3: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन, उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं, जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है
2: जी।
3: तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुंच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो, ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है, तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है
2: जी।
3: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए, जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके। ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे 3 तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, छपन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई 4थी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए
2: जी।
3: फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए, जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के 2 कोनों पर गड्ढों होने चाहिए, जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो
2: जी।
3: जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए, ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए, जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए, जो कि पोषण तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
2: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
3: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
2: अच्छा।
3: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
2: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
3: इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
2: अच्छा।
3: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवे प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी है, दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर, अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू, अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट, ककड़ी आदि लगा सकते हैं और जून से अगस्त के बीच में हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं, कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छपन कद्दू, परवल, करेला, मैंने पहले भी बताया, को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा लें तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी, अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता की एक कुंजी है।
2: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूं कहूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं, अपने घर के आगे जो बची खुची ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल करके इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना, साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
3: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
3: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
3: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
3: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
3: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
3: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
3: जी।
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
3: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
3: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
3: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
3: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
3: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
3: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
3: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
3: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
3: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
3: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास।

0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
1: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
1: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए।

0: टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
4: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
5: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
6: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
7: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, तो अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
6: आजा खेलते हैं।
7: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
8: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
7: अच्छा वो क्या?
8: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
9: हाँ दूसरा क्या?
8: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
6: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे हो, आगे हो। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: अजी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
5: हमला करो, हमला,
6: हमला।
2: लाल, उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: लॉक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, बहुत सारी बातें खेती बाड़ी से जुड़ी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होंगी, तो उन सारी बातों को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, पार्थेनियम के बारे में हम जानेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आपको विषय बता देते हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में पार्थेनियम का उपयोग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एके जाम। मैं आपको बता दूं, ये मृदा वैज्ञानिक हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बता दें कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है।
2: ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताऊं, वर्मी कंपोस्ट जैसा कि नाम ही है, वर्म के द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, यानी एक खास प्रकार का कंपोस्ट है जो कि केचुआ की सहायता से बनाया जाता है।
1: जी।
2: बहुत सारी चीजें हम से बना सकते हैं, गोबर से बना सकते हैं या गोबर पुआल के मिक्सर से बना सकते हैं, वाटर हाइसिंथ यानी जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी और गोबर के मिश्रण से भी बना सकते हैं, पार्थेनियम से भी बना सकते हैं, यानी हम जिस चीज से भी बनाएं, लेकिन केचुआ की इसमें सहभागिता होती है। केचुआ इसे खाता है और अपने शरीर से निकालता है एक कास्ट, चाय की पत्ती जैसी संरचना। तो उसी चाय जैसी जो पत्ती जैसी संरचना है उसी को आप वर्मी कंपोस्ट कहते हैं।
1: जी, तो ये तो बातें हुई वर्मी कंपोस्ट की, और अब हम बात करते हैं पार्थेनियम की। तो सर, इसका जो पोषक मान्य है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: देखिए, पार्थेनियम तो एक खरपतवार है जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए भी सब जगह। यदि वो बीज बन जाता है तो इतनी संख्या में उसका बीज बनता है कि वह फसलों के लिए या दूसरे जगह भी बहुत बड़ी समस्या हो गई हुई है।
1: अच्छा,
2: अब यह है कि यदि हम इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में मुझे जानना होगा कि इसमें पोषक मान क्या है।
1: अच्छा।
2: यदि हम पार्थेनियम को देखें तो इसमें लगभग 2.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस भी 0.44% यानी 0.5% के आसपास इसमें फास्फोरस पाया जाता है, पोटास भी 0.25% के आसपास, 1.23% जो यहां जांच किया था तो 1.23% इसमें पोटास पाया गया, जस्ता भी 13.9 PPM पाया जाता है, लोहा 528 PPM पाया जाता है, तांबा 8 PPM पाया जाता है, मैग्नीज 161 PPM पाया गया। यह खास तरह का जो हमने जांच किया था उसमें पाया गया, दूसरा कोई जांच करता है तो हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, लेकिन हमने जो इसकी जांच किया था तो उस समय यह पोषक मान पाया गया।
1: जी, तो ये बातें हो गई हैं पार्थेनियम की। और अगर डॉक्टर साहब, यदि हमारे किसान भाई पुआल के स्थान पर पार्थेनियम का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या वर्मी कंपोस्ट के पोषक मान पर कोई प्रभाव पड़ता है, और अगर हाँ पड़ता है तो कैसे, वो भी बता दें।
2: बिल्कुल सही बात आपने पूछा। ये किसान एक चीज निश्चित रूप में इनको स्पष्ट करना जरूरी है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो कहीं केचुआ बाहर से तो पोषक मान डालता नहीं। जो सब्सट्रेट हम प्रयोग करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में पदार्थ प्रयोग करते हैं, उसी के पोषक मान के ऊपर यह निर्भर करता है कि हमारा वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान क्या होगा।
1: जी।
2: अब यदि इसमें मान लीजिए कि आप ऐसा चीज प्रयोग कर रहे हैं जैसे अजोला प्रयोग करें, इसमें 4.5% नाइट्रोजन होगा, तो निश्चित रूप में जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वह ज्यादा नाइट्रोजन वाला वर्मी कंपोस्ट बनेगा। तो इसी तरह से यदि हम पुआल की बात करते हैं तो पुआल में हम यदि देखते हैं तो पोषक मान सामान्यतया कम होता है पार्थेनियम की तुलना में।
1: जी।
2: तो इसी तरह से यदि हम पार्थेनियम प्रयोग करते हैं या जलकुंभी प्रयोग करते हैं, उसका पोषक मान ज्यादा होता है, तो उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसका पोषक मान निश्चित रूपेण ज्यादा होगा। जैसे हमने जो वर्मी कंपोस्ट बनाया था उस वर्मी कंपोस्ट में हमने 40% उसमें हमने लिया था पार्थेनियम, और जो 60% है वो गोबर का प्रयोग किया था। तो अब जो 40% हमने दूसरा वाला जो पुआल वाली बात आपने किया, यदि मान लीजिए 40% आप पुआल प्रयोग करते हैं

0: और 60% गोबर प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इस सबके पोषक मान में अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बताऊं तब जाकर के आपको स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए पुआल है, 40% पुआल आपने प्रयोग किया, 60% गोबर प्रयोग किया, इसमें यदि आप नाइट्रोजन देखें तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम होगा, यानी 0.698 1.368% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। लेकिन वही पार्थेनियम में ये प्रयोग हम करते हैं तो पार्थेनियम में 1.76% के आसपास इसमें नाइट्रोजन होगा। इसी तरह से हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यदि पुआल वाला है तो फास्फोरस उसमें आप देखेंगे कि पुआल यदि आप 40% प्रयोग करें और 60% उसमें गोबर प्रयोग करते हैं तो इसमें 0.757% के आसपास आपको फास्फोरस होगा। जबकि जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो कहता है कि 0.8% के ऊपर उसमें फास्फोरस होना चाहिए। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 0.808%, यानी 0.8 के, यानी थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यह फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुरूप बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम उसमें ऐसी चीजें डालते हैं तो निश्चित रूपेण उसका पोषक मान बढ़ता है। इसी तरह से हम पोटास की बात करें तो पोटास में यदि हम देखते हैं कि यदि सिर्फ पुआल और गोबर से बनाते हैं तो इसमें 0.992% इसमें आपको पोटास पाया गया। जबकि यदि हम पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं तो पार्थेनियम के प्रयोग से देखा कि 0.966% इसमें हमारा पोटास पाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम पुआल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि फास्फोरस मेरा थोड़ा कम हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको कोई दूसरी विधा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप इनडिस्ट बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको 0.8% के ऊपर फास्फोरस रखना ही रखना है। यदि आप बर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण आपको 0.8% से ऊपर फास्फोरस भी रखना है, 0.8% से ऊपर पोटास भी रखना है, नाइट्रोजन भी 1% के ऊपर रखना है। तो आप इसके लिए उसमें ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि आपको ऑर्गेनिक खेती में भी प्रयोग कर सकें, हार्म ना हो और साथ ही साथ उसमें पोषक मान भी उतना रहे। तो आपने जो पूछा था कि इसमें कितना प्रतिशत हमको जो है क्या कहते हैं फायदा होगा, यानी कितना फायदा होगा, तो यह निश्चित रूपेण है कि अच्छा जलकुंभी प्रयोग करते हैं, जलकुंभी में आप देखेंगे कि पार्थेनियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास पाया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, अभी हमने अजोला की बात किया, अजोला में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये और ज्यादा है। तो यदि अजोला वाले आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें पोषक मान ज्यादा होगा। इवन कार्बन की भी बात करते हैं तो कार्बन ज्यादा होगा। तो यदि हम इस ढंग का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उससे हमारा मृदा स्वास्थ्य ज्यादा ठीक होगा। और इसी तरह के बर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है, जिससे कम मात्रा में भी बर्मी कंपोस्ट हम बना करके हम ज्यादा से ज्यादा पोषक मान को ठीक कर सकें, हम अपनी मिट्टी की सेहत को ठीक कर सकें और ज्यादा पोषक मान की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें, ये ज्यादा जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी बात कर रहे हैं हम पार्थेनियम की, तो अगर हम इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं तो कैसे करें, हम वो भी बता दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्मी कंपोस्ट बनाने में यदि पार्थेनियम का प्रयोग करते हैं, लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पार्थेनियम ऐसे ही डाल देते हैं।
1: जी
0: ऐसा नहीं करें, वो करें क्या कि इसको एक एक इंच के टुकड़े में काट लें।
1: अच्छा।
0: पार्थेनियम को एक एक इंच के टुकड़े में काट लिया, अब उसमें 40% पार्थेनियम आप रखिए और 60% गोबर, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके उसको 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कंपोस्टिंग कल्चर है तो कंपोस्टिंग कल्चर ऊपर से छिड़काव कर दीजिए, या पंचगव्य है तो पंचगव्य का छिड़काव कर दीजिए, वो और कुछ नहीं करेगा। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, उसके परिणाम क्या होगा कि आंशिक अपघटन आपका तेजी से हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी बनाती है, नेफेड कंपनी भी बनाती है, आपका गाजियाबाद वाला है वो भी कंपोस्टिंग कल्चर बनाता है, जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से भी कंपोस्टिंग कल्चर बनता है। तो वह थोड़ा सा आप डाल दें तो वो आपको बहुत बढ़िया से आपको सड़ जाएगा, तो 3-4 हफ्ते में कुछ आंशिक अपघटन हो गया। उसके बाद उसको आप ढेर लगा लें, ढेर लगा देने के बाद उसकी थोड़ी हल्की सिंचाई कीजिए और उसमें हाथ डाल करके देखिए, यदि वो ठंडा हो गया है ढेर तो उसमें आप केचुआ डाल दीजिए। कितना केचुआ डालेंगे, यदि आपके पास 1 टन मटेरियल है तो 1 टन मटेरियल में आपको 1000 से 2000 केचुआ डालना चाहिए। 1000 से 2000 केचुआ डाल दिया, अब उसकी सिंचाई आप प्रॉपरली कर रहे हैं जिससे 60-65% नमी उसका बरकरार रहे कम से कम, तो 65% के आसपास नमी बरकरार है, उसी ढंग का आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से। और वो जो सिंचाई आप कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे कुछ दिनों के बाद, लगभग दो तीन तीन हफ्ते चार हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में चाय की पत्ती जैसी संरचना बन गई है, यानी कि महीन महीन बन गया हुआ। उसके बाद आप सिंचाई को तीन चार दिन के लिए रोक दीजिए। सिंचाई रोक करके ऊपर से वो जो चाय की पत्ती जैसी संरचना है उसको हाथ से या किसी लकड़ी से उसको आप हटा देंगे। अच्छा। वहीं तक हटाइएगा जहां तक केचुआ आपको नहीं दिखे। जब केचुआ दिखा इसका मतलब कि अभी इधर प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हाँ, ऊपर वाला बन चुका हुआ है तो ऊपर वाला आप हटाते जाएंगे तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनेगा, नहीं हटाएंगे तो थोड़ा धीमा बनेगा। इसीलिए आप उसको हटा करके साइड में कर लीजिए और उसके बाद आप 4 mm की जाली से उसे छान करके पैक कर लीजिए, तो बर्मी कंपोस्ट आपका तैयार हो गया। तो ये जो है क्या कहते हैं आप उसकी व्यवस्था करेंगे। हाँ, जहां आप ढेर लगाते हैं वो थोड़ा सा यदि ढालू हो तो ज्यादा बढ़िया है कि धोखा से यदि ज्यादा पानी पड़ गया तो वो वहां से बह करके निकल जाएगा। तो इस ढंग से आप करेंगे, हाँ वहां पर वायु का संचार भी ठीक ठाक रहे। इसीलिए जिस शेड में आप बना रहे हैं वहां पर आप देखिएगा कि ऊपर कुछ जगह खाली हो, एक दो हाथ जगह खाली हो जिसमें कि वायु का संचार प्रॉपरली वहां पर हो सके। कुल मिलाकर के आप क्या करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं जो केचुआ के लिए ठीक ठाक है, जिस पर केचुआ बढ़िया से चल सके वही व्यवस्था आप करते हैं तो आपका बर्मी कंपोस्ट तेजी से बनता है। तो यही चीज आपको करना है। इस ढंग से करके जब आपने हाँ, इसमें एक चीज बताया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह भी है कि 15-25% नमी हो। इसीलिए जब बर्मी कंपोस्ट आप पैक करने लगे तो उसमें निश्चित रूप से आप देख लें कि 15-25% के बीच में हमारी नमी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम हार्मोन इस सब की एक्टिविटी तभी होती है जब उसमें नमी बरकरार हो। तो इसीलिए आप नमी का भी ध्यान देंगे और नमी की व्यवस्था आप देख करके उसके बाद आप इस ढंग से कर दीजिए, बिल्कुल आपका रेडी हो गया प्रयोग करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए, जब बीज बना उसके पहले ही आप पार्थिनियम का प्रयोग कीजिए। जब बीज बन जाएगा और उसके बाद बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो वो बीज आपके खेत में भी पहुंच जाएगा और वहां पर आपको फिर पार्थिनियम पैदा होने लगेगा। इसीलिए यह निश्चित रूप में विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस समय आप नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग आप उसी समय कीजिएगा जब बीज नहीं बना है, यानी बीज बनने के पहले का ही पार्थिनियम आपको प्रयोग करना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और आज एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने जाना, सभी किसान भाइयों की, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में आप पार्थिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सारी विधि यहाँ पर आपको बताई गई है। आशा करते हैं कि आप जरूर अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। कृषि
2: सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: जमाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिक्कू क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस, यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है, और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है अच्छा करने का, और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है, और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना, और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है? कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं, और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमज़ोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज़ एक ही समय पर सोने जाएं और रोज़ एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है, तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे, तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं, अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो भी आपको नींद अच्छी आती है या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना, लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है, लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है, तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंग्जाइटी के, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंग्जाइटी तक पहुँच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंग्जाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं, तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से

बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं ले, इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नजरअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं। नींद, खान पान, इन सारी चीज़ों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा ख़त्म होने लगती है और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आपका दिमाग ही, आपका मन ही लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, रोने का मन करेगा, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे और इसके साथ ही मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे दिखता है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग ख़त्म हो चुका है, और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है और फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ेंगे पे तो भूल जाएंगे, तो ऐसे में आप अचानक, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीज़ें बोलेंगे, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये मानसिक थकान है, आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रीसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है, पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं, आप एंग्जाइटी आपको होती है, तो अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करें, और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमज़ोर कर देता है, और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, आपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी।

ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमजोर बनाता है और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज़ जो तरक्की की है, आपने हर रोज़ जो पढ़ा है, उसको आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोलें कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से, परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है, तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, और एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी ज़िंदगी, सारी चीज़ें प्रभावित होगी। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लें, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, और ज़रूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जो एग्जाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, तो उसे बात करें, उसका साथ दे, और ज़रूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम ज़रूरी है, अच्छा खान पान ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं, वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी की कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: കൃഷി. नमस्कार, ये है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में बिल्कुल आज एक खास विषय लेकर आए हैं, मिट्टी के उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उपाय. मिट्टी बहुत ज़रूरी है हमारे खेती के लिए, और अगर इसमें उर्वरता ज़्यादा रहेगी तो हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती आसानी से कर पाएंगे और खेती में कोई दिक्कतें भी नहीं आएंगी. फसलें भी जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर रहेंगी. तो चलिए आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को लेकर डॉक्टर निशा कुमार आई हुई है हमारे साथ हमारे स्टूडियो, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: थैंक यू.
0: मृदा उर्वरता क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में बताएं सबसे पहले.
1: मृदा उर्वरता से

0: पर उसकी उस क्षमता, मिट्टी की उस क्षमता से है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा व उपलब्ध अवस्था में आपूर्ति करता है। साथ ही मृदा किसी दुष्प्रभाव या विषैले प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो ये सुनिश्चित करता है। मृदा उर्वरता से हमें उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता के स्तर का बोध होता है। मृदा उर्वरता सामान्यतः मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों पर निर्भर करती है। हमारे देश की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में फास्फोरस की भी व्यापक कमी महसूस की गई है, तथा साथ ही विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ते, लोहे तत्व की कमी भी हमारे देशों में मुख्य रूप से देखी गई है। कुछ क्षेत्रों में जिंक की कमी भी बहुत ज़्यादा उग्र होती जा रही है। जिंक युक्त उर्वरकों का उपयोग के बिना फसल उत्पादन असफल होता देखा गया है। धान में खैरा रोग और गेहूं के पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना जिंक की कमी के कारण होता है। हमारे देश में जिंक की कमी विशेष रूप से चूना युक्त मृदाओं व खराब जल निकासी वाली मृदाओं में पाई जाती है।
1: ये जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, ये घटती क्यों है, इसके बारे में बताएं।
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटने के बहुत कारण है। जैसे आज खेती में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण कुछ सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की मृदा में कमी होती जा रही है। बिना मिट्टी परीक्षण के उर्वरकों व खादों के बिना सोचे समझे अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण उपयुक्त समस्याएं आ रही है। किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्रयोग करने पर पोषक तत्वों की आपसी क्रिया के कारण अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे साथ ही खेतों में गोबर की खाद व पशुओं की मल मूत्र तथा बिछावन का बहुत कम प्रयोग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी होती जा रही है। मृदा में जीवांश पदार्थ की कमी से उसमें उपस्थित लाभकारी जीवाणु और जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। इनकी उपस्थिति में मृदा में होने वाली विभिन्न अपघटन इत्यादि क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पोषक तत्व एवं खनिज लवणों का बहुत बड़ा हिस्सा पौधे को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देश के अनेक कृषि क्षेत्रों में पौधों के लिए तीन मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का प्रयोग एक अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है, जबकि इनका आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। किसानों द्वारा खेती में लगातार एक ही प्रकार के उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से मृदा में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों की उपज प्रभावित होती जा रही है। साथ ही अत्यधिक जुताई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, और साथ ही फसलों का अवैज्ञानिक चक्रण के कारण भी मृदा की उर्वरता घट रही है। इसके साथ साथ देखा गया है बिना मृदा परीक्षण के अभाव किए बिना ही उर्वरकों का अनिश्चित रूप से प्रयोग किए जाने के कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति घट रही है।
1: ये जो मृदा की उर्वरता है उसमें पीएच का क्या महत्व है?
0: मृदा उपजाऊपन और मृदा पीएच में एक घनिष्ठ संबंध है। सामान्यतः खनिज मृदाओं का पीएच मान 3.5 से 10 के बीच होता है। उदासीन मृदाओं का पीएच 7 के आसपास होता है। कृषि योग्य मृदाओं का पीएच 4 से 8 तक होता है। सभी पौधों की पीएच आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। मृदा पीएच के बढ़ने से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे आयरन, जिंक और मैग्नीज इसमें प्रमुख है, जबकि पीएच के अत्यधिक बढ़ने से मोलिब्डेनम अधिक उपलब्ध होता है। मृदा पीएच के घटने से पाँच से पाँच दशमलव पाँच के मध्य अगर रहता है तो एल्युमिनियम तथा मैग्नीज अधिक घुलनशील अवस्था में होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर भी मृदा पीएच का सीधा प्रभाव पड़ता है। पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन की उपलब्धता मृदा जीवाणुओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। जब मृदा पीएच 6 से 7 के बीच होता है तो नाइट्रीकरण की क्रिया अधिक तेजी से होती है। फास्फोरस की उपलब्धता के लिए भी मृदा पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, जबकि पोटाश की उपलब्धता पर मृदा पीएच का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
1: जी, अब बात करते हैं कि मिट्टी की उर्वरता को हम कैसे बेहतर बनाएं।
0: फसल उत्पादन के लिए योजना बनाने से सबसे पहले महत्वपूर्ण है मृदा परीक्षण। यह हर साल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन साल में 3 से 4 बार एक बार किसान निहित पोषक तत्वों की सामग्री के लिए विशेष प्रबंधन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर अपनी मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। किसान मृदा परीक्षण रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार फसल नियोजन करे। साथ ही यदि मिट्टी में पीएच कम है तो मिट्टी की सीमित को सीमित करना आवश्यक है। जैसे सीमित करने में मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे पोषक तत्वों को जोड़कर मिट्टी की पीएच को बढ़ाने की प्रक्रिया है। दूसरा है मिट्टी में लवणता। अगर मिट्टी में घुलनशील लवणों की उच्च सांद्रता को इंगित करती है और वे पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी के ऊपर जाने में बाधा डालती है। अच्छी गुणवत्ता वाली सिंचाई के पानी से मिट्टी को बार बार लीचिंग करके लवणता को कम किया जा सकता है। मिट्टी में सोडेसिटी तब होती है जब मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सापेक्ष उच्च मात्रा में सोडियम होता है और कैल्शियम या मैग्नीशियम युक्त उर्वरकों के आवेदन से इसे कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला है मिट्टी के कटाव, लीचिंग, वाष्पीकरण आदि के माध्यम से पोषक तत्वों के नुकसान को कम करना और दूसरा है मिट्टी में कार्बनिक स्रोतों को जोड़ना। कार्बनिक स्रोतों में जैसे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करके कर सकते हैं, संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन है, साथ ही मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को का पहचान करके हम उर्वरक का सही उपयोग कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को भी हम बढ़ा सकते हैं जैसे हरी खाद का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके। साथ ही हम किसान भाई खेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद ही मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
1: जी इसके बाद बात करते हैं, आपने कहा था कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से हम इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, तो ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: यह मिट्टी में केवल अकार्बनिक उर्वरकों का एकमात्र उपयोग मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता को कम कर देती है, जिसके कारण से मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता में सुधार करने में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में अत्यधिक प्रभावी है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों का एक साथ उपयोग करता है। उदाहरण के लिए जैसे अकार्बनिक उर्वरक जैसे DAP, यूरिया, म्यूरेट और पोटाश के साथ साथ कुछ जैविक स्रोतों जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, पशु खाद को जोड़ना है। यह कार्बनिक स्रोत न केवल मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता स्तर को भी बढ़ाता है। शोध रिपोर्टों से पता चलता है कि मिट्टी की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को केवल अकार्बनिक उपयोग की तुलना में कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरकों स्रोतों के संयोजन के साथ लगभग 35-50% तक बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी की उन्नत उर्वरता वृद्धि के कारण जैविक और अकार्बनिक उर्वरक के संयुक्त उपयोग के साथ फसल की लगभग 40% अधिक उपज प्राप्त करने में मदद करती है। मिट्टी में कार्बनिक स्रोत को जोड़ने से मिट्टी की जैविक गतिविधि में भी सुधार होता है जो मिट्टी में पोषक तत्वों के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: जी मृदा में जीवांश पदार्थों का स्तर कैसे बनाए रखा जा सकता है?
0: मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थों की मात्रा का वृद्धि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व, मृदा संरचना, मृदा ताप, जल धारण क्षमता, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या, फसल गुणवत्ता व मृदा उर्वरता इत्यादि पर प्रमुख प्रभाव होता है। मृदा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे फसल उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता और मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी खाद, हरी खाद, फसल अवशेष इत्यादि का समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरा, खेती में जैविक उर्वरकों जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, नील हरित शैवाल, फॉस्फोबैक्टीरिया, अजोला व माइकोराइजा का प्रयोग करके भी मृदा उर्वरता को बढ़ाने में लाभदायक पाया गया है। जहां पर सघन खेती की जा रही हो वहां आवश्यक हो जाता है कि 2-3 साल में एक बार हरी खाद की फसल जैसे सनई, ढैचा, मूंग या ग्वार अवश्य उगाई जाए। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही मृदा उर्वरता में भी सुधार होता है, परिणाम स्वरूप अगली फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। इस प्रकार भूमि की जल धारण क्षमता तथा फसलों में जल की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी मृदा उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। फसलों के साथ दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में यौगिकरण कर नाइट्रोजन की मात्रा की को बढ़ाती है। साथ ही समृद्ध एवं टिकाऊ खेती के लिए मृदा में रुझान इशोर किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत किसान नीम की खली व पत्तियां फसल कटाई उपरांत फसल अवशेष खेत में दबाकर अपनी जमीन का उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भूमि में जीवांश पदार्थ की उपलब्धता को भी बढ़ाया जा सकता है।
1: संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है इसके बारे में बताएं।
0: किसान भाई अपने खेत में फसल की बुआई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करें, इसके बाद ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इससे फसल के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों के भंडार भी बढ़ेंगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में संतुलित पोषण की मुख्य भूमिका है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहे, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा के प्रयोग से फसल को फायदा होता है। साथ ही यदि इन पोषक तत्वों को मांग से अधिक मात्रा के प्रयोग से पौधों में विशेषता हो सकती है। एक पोषक तत्व के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित अन्य तत्व के अवशोषण को प्रभावित करती है। जैसे कि मान ले फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरक ना हो तो पौधे में नाइट्रोजन की प्रति अनुक्रिया कम होती रहती है। तो वही अगर नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस एवं पोटेशियम को उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हमारे किसान भाई की गंधक प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में गहन खेती के प्रचलित होने के साथ ही एक तत्व की अधिक मात्रा वाले उर्वरक को अधिक उपयोग में लिया जाता है, जिनमें गंधक का स्तर या तो बहुत कम होता है अथवा शून्य होता है। इसी कारणवश भारत के अधिकांश उपजाऊ भूमियों में इसकी कमी देखी गई है। गंधक के साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। वर्तमान समय में पौधों में वृद्धि तथा उत्पादन को कम करने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म तत्वों में जस्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो विस्तृत रूप से सभी गहन कृषि वाले क्षेत्रों में आवश्यक स्तर से कम है। भारत के सभी धान गेहूं वाले क्षेत्रों में जस्ते की उपयुक्त मात्रा डालने से उत्पादन में दर्शनीय वृद्धि देखी गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में डालकर अथवा पर्णीय छिड़काव द्वारा दूर किया जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन से न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है अपितु पोषक तत्व उपयोग क्षमता व जल उपयोग क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है, जो अंततः कृषि के लाभ को बढ़ाता है। इसीलिए फसल उत्पादन से अधिकतम लाभ लेने के लिए सभी 17 आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टिकाऊ खेती के लिए पौधों को उचित वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा एवं सही अनुपात में होना अनिवार्य है।
1: भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपचार करना चाहिए?
0: खेती में पाए जाने वाले विभिन्न मित्रों कीट जैसे परजीवी, परभक्षी एवं कीड़ों एवं बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को कीट व्याधि नियंत्रण हेतु प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म अंड परजीवी है जो तना छेदक, फली छेदक व पत्ती खाने वाले कीटों के अंडों पर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद को भूमि द्वारा उत्पन्न रोगों में नियंत्रण के काम लेते हैं। इसको जर, गलन, उकटा व नर्सरी में पौधों का सड़ना इत्यादि रोगों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज व भूमि उपचार के लिए 2 से 3 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर व भर्मी कंपोस्ट में मिलाकर भूमि में डालने से विभिन्न मृदा जनित रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इससे कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से भूमि को बचाया जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हमारे खास वार्ता मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के उपाय, और इसमें बहुत सारी बातें बढ़ाई गई हैं कि तरीके क्या कुछ हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के, और मृदा में जीवांश पदार्थों का स्तर कैसे बनाए रखा जा सकता है, और किस तरीके से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हो या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन हो, इसके बारे में भी आपको बताया गया। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है, वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड से धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर PCOS जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हेवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फिब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है, और खासतौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा

0: गई है कि इतनी ज्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में जरूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इससे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हों, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट खराब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसे कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो, देखो क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार,
3: और मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 एफएम ग्रीन पर। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम पर कुछ अच्छी बातें। और आज का हमारा विषय है, बहुत ही खास विषय है हमारा, और वो है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ। तो आज इसके बारे में जानेंगे हम, और इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं

0: डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी और ये हैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आप सभी को बता दें कि हम इस विषय पर खास चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस किस राज्य में मक्का को उगाया जा सकता है और साथ ही बिहार का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है।
1: मक्का विभिन्न जलवायु परिस्थिति में व्यापक अनुकूल क्षमता वाली सबसे बहुमुखी फसलों में से एक है। भारत में मक्का राष्ट्रीय खाद्य कटोरी के रूप में भी जाना जाता है और विश्व स्तर पर ये 9% का योगदान देता है। मक्के के कुल उत्पादन का 80% मुख्यतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में उपजाया जाता है। बिहार में मेनली 8.9% का योगदान देता है।
0: तो यहाँ पर हमने जाना कि क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार का मक्के के कल्टीवेशन में और साथ ही यहाँ पर मक्के के पोषक तत्वों के बारे में हम जाना चाहेंगे डॉक्टर साहब और उनसे क्या क्या लाभ है उनके बारे में बताएं।
1: मक्के में बहुत ज़्यादा बहुत प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 9% होते हैं, प्रोटीन 3.2%, शुगर 3.2%, फाइबर आहार जो कि डाइट्री फाइबर रहते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 2.7% रहते हैं, वसा 1.2% होते हैं, कैल्शियम 9 मिलीग्राम होते हैं, आयरन 0.5 मिलीग्राम होते हैं,
0: मैग्नीशियम
1: 37 मिलीग्राम, नाइसिन 1.7 मिलीग्राम, फास्फोरस 120 ग्राम मिलीग्राम होते हैं, पोटासियम 270 मिलीग्राम, विटामिन बी 15 ग्राम मिलीग्राम, विटामिन सी 7 मिलीग्राम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के साथ साथ इसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन भी रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं
0: जी।
1: मक्के में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण मक्के को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो है कि फायदे के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि अगर जब तक आपको फायदे के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप इसको खाने में उतने इच्छुक नहीं होंगे। मक्के में मौजूद फाइबर जो है उच्च मात्रा के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को उसको कम करने का काम करता है और खास करके जो कोलोन कैंसर जो होता है उसके खतरे को भी कम करता है
0: जी।
1: जो मक्का अगर मध्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उससे मधुमेह से पीड़ित लोग होते हैं उसको फायदेमंद होता है। और फोलेन एक इसमें एक कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर उसको उसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति में ये मदद करता है। जो कॉर्निया के सेवन, अगर इसमें कॉर्निया जो रहता है, इसमें कॉर्निया के सेवन से क्या होता है, एनीमिया से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सकारात्मक प्रभाव जो है रिसर्च में देखा गया है। मक्के में मौजूद जो पाइटोथेनिक एसिड जो होते हैं हमारी शारीरिक कार्य करने की क्षमता में मदद करता है। उसके बाद जो है गुर्दे की समस्याओं के इलाज में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। मध्य मात्रा में अगर मक्का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। उसमें है कि अगर इसको कंटिन्यूस अगर सेवन करते हैं मक्के को तो फेफड़े के जो बीमारी होते हैं और फेफड़ा को में जो कैंसर का कारण जो बनता है तो उसको भी इसमें सहायक सिद्ध होता है। और इसमें जो अघुलनशील फाइबर जो होते हैं तो कब्ज या बवासीर जैसे बीमारी जो होते हैं उस तरह की बीमारी से भी निजात इसमें पा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे तो बहुत हैं और इस तरह से अगर मक्के को खाते हैं तो फायदा बहुत ज़्यादा होता है
0: जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने जाना कि इसमें पोषक तत्व और उनके लाभ के बारे में जाना, तो मक्का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे हमें बहुत लाभ भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है मक्के से बनने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ, तो सब अब आते हैं उस पर और जानना चाहेंगे कि प्रसंस्कृत पदार्थ इससे क्या क्या बन सकते हैं।
1: मक्के से बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं, इसमें मेनली जो है कॉर्नफ्लेक्स, जो कि आप लोग किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आप लेते भी होंगे, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च होते हैं, मक्के का तेल होता है, मक्के का सिरप बनता है, हाई माल्टोज कॉर्न सिरप बनता है, इस तरह जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। ये छोटे स्तर पे भी कुछ जैसे है कि कॉर्न फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न फ्लेक्स बना सकते हैं छोटे स्तर पे। ऐसे जो होते हैं दूसरे जो होते हैं ये बड़े स्तर के कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फायदे, अगर इस तरह के कारखाने लगते हैं तो बिहार के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, इसके साथ साथ दूसरे कारखाने भी लगने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि अब हम चर्चा करते हैं कॉर्न फ्लेक्स और डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं इसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कॉर्न फ्लेक्स होते हैं ये जो होते हैं इसको बनाने में के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके पहले हम जानना बताते हैं कि कॉर्न फ्लेक्स का मार्केट क्या है, जो कि है 2015 के अनुमान जो है कि 6.7 बिलियन रुपया का जो है इसका सेल करने का अनुमान रहा, और जो 2020 तक इसका अनुमान जो है 10.9 बिलियन रुपीज रहने का अनुमान है। मीन्स इसका रीजन ये है कि जो आदमी का कंजम्पशन पैटर्न है, खाने का यदि पैटर्न है, वो काफ़ी ही मीन्स करने का मतलब चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जा रहे हैं, और वो और क्योंकि ये आसानी से मीन्स बाजार में भी उपलब्ध होता है, आप अपने मीन्स कॉटेज टाइप के इंडस्ट्री लगाकर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बनाने में। इसके बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले जो होता है मकई उसको मार्केट से खरीदते हैं, या आपके पास अगर उपलब्ध है तो उसको प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको औद्योगिक स्तर पर मीन्स फैक्ट्री में आप इसका सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मीन्स करने का मतलब दूसरे पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर ये सब रहते हैं उसको आप निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टीमिंग कर देंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, जो कि 57 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म कर सकते हैं, और ये समय जो है 4 घंटा से 20 घंटा तक गर्म करना रहता है। ये तापमान जो है जो निर्भर करेगा वो समय के साथ चेंज होता है, तापमान अगर ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर तापमान कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस में जब स्टैंडर्ड करेंगे तब उसमें ज़रूरत होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सेस पानी जो स्टीमिंग का है उसको निकाल देंगे और थोड़ा सा सुखा लेंगे उसको, है रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान उसको सुखा लेंगे। जब उसका देखिए मॉइस्चर कंटेंट जो है मीन्स उसमें जो नमी है 16 से 24% आ जाए तो उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं। जो प्रोसेस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमें मशीन की आवश्यकता पड़ती है उसको फ्लेकिंग मशीन बोलते हैं, और फ्लेकिंग मशीन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है। अगर फ्लेकिंग मशीन नहीं है तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो फ्लेकिंग मशीन के सहायता से हम इसमें मकई को क्या करते हैं, फ्लेक्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें 2 रोलर लगे रहते हैं और बीच में गैप रहता है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्स के रूप में या चपटा के रूप में उसमें कन्वर्ट करते हैं। ऊपर के एक हॉपर रहता है जिससे कि हम लोग मेज जो है जो कि जिसमें कि 16 से 24% मॉइस्चर है, नमी है, उसमें हॉपर में डालते हैं, और दूसरे साइड से हमें क्या फ्लेक्स के रूप में प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखावक यंत्र या आपके पास कैबिनेट ड्रायर हो या हॉट एयर ओवन हो उसकी सहायता से उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% से कम कर लेते हैं। 2% से कम करने के बाद उसको या तो पैकेज के रूप में पैकेट में डाल देंगे जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो उसके बाद अगर आपको नमकीन बनाना है या उसको स्पाइसी बनाना है या चॉकलेटी टाइप का बनाना है तो पैकेजिंग करने से पहले क्या करना है कि इस तरह के मटेरियल को से कोट कर लेना है, और आफ्टरवर्ड उसको क्या करना है पैकिंग करना है और उसका फिर बाजारीकरण करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए दूसरी विधि भी हम अपनाते हैं, मशीन दूसरे लगते हैं इसके लिए। जैसे कि आप एक्सट्रूडर एक मशीन होता है जिसके सहायता से हम लोग मकई के दूसरे प्रोडक्ट एक्सट्रूडेड टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स टाइप के प्रोडक्ट होते हैं बनाते हैं। इसमें है कि एक्सट्रूजन एक मशीन होता है जिसमें कि डिफरेंट जोन होते हैं, हीटिंग जोन होते हैं। इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है आपको रखना रहता है 16-20% के लगभग में रखना होता है। और इसमें है कि टेम्परेचर जोन को सेट करते हैं और एक नोजल के सहायता से प्रोडक्ट को हम निकालते हैं जिससे कि हम लोग मशीन के अंदर एक्सट्रूजन होता है उसमें जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर पे काम करता है और आफ्टरवर्ड क्या होता है एक्सट्रूजन होता है। और एक्सट्रूजन से क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो मीन्स कहने का मतलब कुरकुरे टाइप का भी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं और फ्लैक्स के रूप में भी निकाल सकते हैं, रिंग के रूप में भी निकाल सकते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें आप डिफरेंट शेप में आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और उसमें फिर मॉइस्चर को रिड्यूस कर लेते हैं, उसमें नमी को कम कर लेते हैं, देन आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर से कोटिंग कर लेते हैं और फिर पैकेटिंग करके उसको बाजारीकरण कर सकते हैं।
0: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने जाना कि मक्के के लाभ को जाना आपने और साथ ही जाना कि इससे कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उनकी विधि को आपने जाना। तो आशा करूँगी कि आपको इन सभी बातों को जानकर काफ़ी लाभ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी।

0: क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु K.S. रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर PK सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई TV धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी। लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बद्दूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम ग्रीन पर और आप सुन रहे हैं मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो श्रोताओं, आज हम एक और खास विषय लेकर आए हैं। हमारा विषय है वर्तमान समय में फसल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन, और इस विषय के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल, सर्ववैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है।
1: धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्रभान पटेल आपको इस विषय पर विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर 76% लोग अपनी आय और कृषि से संबंधित चीज़ों पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि खेती किसानी हम लोग जानते हैं मौसम और जल पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो वर्तमान समय में जल प्रबंधन एक आवश्यक चीज़ हो जाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 60% खेती मानसून पर ही निर्भर है, बाकी बचे 40% के लगभग वो सिंचाई योग्य भूमि पर खेती की जाती है। अगर हमको प्रबंधन और अच्छी तरीके से कर पाएँ तो औसतन हम 30-40% वाले जगहों को सिंचाई कर करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें मैं दो बातें रखना चाहूँगा। एक है बिहार के गंगा नदी के उत्तरी छोर में जो ज़िले हैं, जैसे मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। वहीं बिहार के दक्षिणी भाग में जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और कैमूर, मुंगेर, बांका जिलों में जो है सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो इसलिए जल प्रबंधन एक अति आवश्यक जरूरी है हमारे यहाँ।
0: जी जी, अभी वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो सिंचाई की क्या प्रमुख चुनौतियाँ अभी देखी जा रही हैं, क्या क्या हैं?
1: जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जल की कमी से हमारे यहाँ फसलों पर काफ़ी नुकसान होता है उसकी पैदावार, जैसे सुखाड़ की स्थिति आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम बोलना चाहेंगे कि मौसम की अनियमितता एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मानसून अगर सही समय पे आए तो जल प्रबंधन को उचित ढंग से कर पाएंगे, अगर ये डिले यानी लेट हो देर हो जाती है तो फसलों को लगाने में और इसके जब अंतिम में मानसून विड्राल यानी निकलने के समय आता है, तो उस समय अगर जल प्रबंधन ज़्यादा नहीं ध्यान दिया गया तो कभी कभी ड्रेनेज यानी जल निकासी की भी व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वर्तमान समय में इन चुनौतियों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
0: अभी के समय की हम बात करते हैं वर्तमान समय की, तो जल प्रबंधन के प्रभावी उपाय अभी क्या क्या हैं?
1: जी जी, इसमें सबसे प्रमुख उपाय जो है आज से मैं वर्णन करना चाहूँगा। ऐसे सिंचाई की बहुत सारी प्रमुख विधियाँ हैं, लेकिन उनमें से माइक्रो इरिगेशन एक टर्म आता है, माइक्रो इरिगेशन जो है कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर ये दोनों से मिलकर के बना है। अगर सिंचाई विधि से सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो इसमें खेतों में किसान अपने पानी को सीधे पहुंचाता है उस पौधे की जड़ तक, जो कि एक बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसमें 40-60% तक जो है जल को बचाया जा सकता है, जो कि आने वाली अगली फसल या उस फसल के 2-3 इरिगेशन या सिंचाई दे सकता है, उससे फायदा होता है। इसी के साथ मैं उसमें और जोड़ना चाहूँगा बात कि अगर इसमें हम बचत करते हैं तो 15-20% तक कम से कम उसकी जो लागत की कमी भी आती है। ये एक प्रमुख कारण है।
0: अभी हम माइक्रो सिंचाई यानी सूक्ष्म सिंचाई के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी जी, तो जैसे माइक्रो इरिगेशन में अभी हमने बताया ड्रिप इरिगेशन, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं उसी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो इसका विस्तृत चर्चा है। जैसे जल की बचत, पानी सीधे अगर पौधों की जड़ तक पहुँचता है तो बीच में जो नाली से हम लोग पहले किसान पहुँचाते थे तो उसमें कुछ जो ज़मीन में सोख लेता था, कुछ ड्रेनेज होकर के बाहर चला जाता था, सीपेज होता था, उससे नुकसान होता था, इससे तो सीधे खेत में ही पहुंच जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम पानी को सीधे जड़ तक देंगे तो जो उर्वरक देंगे उसको चाहे तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जड़ तक तो उर्वरक पहुंचेगा ही और वहां की फसलों को लाभ होगा। और एक बात और बिंदु पे है कि उत्पादकता में वृद्धि, पौधों को नियमित और संतुलित मात्रा में उर्वरक और न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व मिलने से उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी मिलती है। अगर हम उसमें ऊर्जा की बचत की बात करें तो अगर न्यूट्रिएंट और पानी को सही मात्रा में मिलेगा तो उससे जो बचत है वो पानी और आय दोनों की होगी। और तीसरा बात इसमें है कि मिट्टी की संरचना अच्छी बनी रहती है। कैसे? अगर बहाव द्वारा इरिगेशन या सिंचाई करेंगे तो इसमें मिट्टी के बहने की भी संभावना रहती है, जबकि इस तरीके से करेंगे तो केवल पौधे की ही जड़ में जाएगा। एक और जो किसान बंधु रहते हैं कि अगर ड्रिप इरिगेशन देने से क्या होता है, खरपतवार को सही ढंग से नियंत्रण भी किया जा सकता है।
0: माइक्रो सिंचाई यानी सूक्ष्म सिंचाई के प्रमुख लाभ क्या क्या मिलेंगे किसान भाई अगर करते हैं तो?
1: जी, इसी में एक हमने आपको अभी शुरू से और बताया, तो उसमें और भी उसी पॉइंट में मैं और जोड़ना चाहूँगा। सिंचाई करने से क्या होता है कि इसमें सूखे और जलवायु परिवर्तन, आजकल एक विषय आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा समस्या है जो वर्ल्ड लेवल पर यानी ग्लोबली सबको परेशान किए हुए है। तो सभी किसान भाई चाहें तो इस जलवायु परिवर्तन को समझे। इसमें क्या होता है कि औसत जो हवा की जो तापमान है उसमें औसत मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या होता है कि जल की मांग, जो पौधों की जल की मांग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें अगर पौधों जिसे कहते हैं कि पत्तियों से पानी को इवेपोरेट करते उड़ता है, तो अगर उनकी जड़ में देंगे तो पहली बात मिट्टी से जो पानी का हानि हो रहा था वो नहीं होगा और सीधे उनके जड़ में रहेगा पानी, जिससे कि उनको पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट दोनों भी मिलेंगे। और इस जलवायु परिवर्तन से जो कि नमी की लाश हो रहा था वो बच सकता है।
0: मल्चिंग और जैविक खाद का जब प्रयोग करेंगे किसान भाई तो क्या क्या लाभ मिल सकता है उन्हें?
1: जी, इसमें मल्चिंग और जैविक ये दो बातें मैं बताना चाहूँगा। मल्चिंग एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि मृदा के खुद उसके जो स्ट्रक्चर हैं या ऊपर के कुछ हिस्से को तोड़ करके उसको फिजिकल कंडीशन में इम्प्रूव कर दे सकते हैं, या पुरानी फसल या पहली फसल के अवशेष को उसके पौधे पर या पौधे के नीचे उसके जड़ के जहाँ पर तना रहता है वहाँ पर सरफेस पर मिट्टी पर बिछाए, जिससे कि जो तापमान से या सीधे हवा के संपर्क में मिट्टी के आ नहीं पाता, जिससे कि उसमें पोषक तत्व के साथ साथ नमी भी बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि लगभग इससे 18% जल धारण क्षमता भी बढ़ जाता है और 20-25% तक पानी की बचत भी होती है। ये है मल्चिंग का इफेक्ट। और जैविक खाद अगर मिला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जैविक खाद मिलाने से जो सॉइल के टेक्सचर हैं वो आपस में जुड़ते हैं अच्छे से, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जो कि कम सिंचाई में भी फसल को किया जा सकता है, एक अच्छा ऑप्शन है।
0: इसके बाद जल प्रबंधन के लिए कुछ योजनाओं के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ सरकारी योजनाएं हैं?
1: जी, इसमें जैसे कि जल प्रबंधन के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, वो भारत सरकार की भी चलती हैं और राज्य सरकार की भी चलती हैं। तो जिसमें से मैं एक कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा किसान बंधुओं, जिसमें से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एक ऐसी भारत सरकार की योजना है जो कि किसानों की सिंचाई की जो प्रणालियाँ हैं, सिस्टम हैं, उनको अनुदान में देती हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन की हम बात किए हैं अभी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो उसमें कुछ अनुदान राज्य सरकार देती है, कुछ अनुदान भारत सरकार देती है, जिससे कि किसान उसको आसानी से खरीद करके अपने खेत पर लगाएं।

0: और फसल के उत्पादन बढ़ाए और जल की बचत करें। और दूसरा है मुख्यमंत्री हरित बिहार योजना। इससे क्या होता है कि किसानों को ये भी जल प्रबंधन की एक अच्छी योजना है। इसमें इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक गांव में जल संरक्षण परियोजनाएं लागू कर की जा चुकी हैं और 3 लाख से अधिक किसान इसमें लाभ उठा चुके हैं। तो किसान बंधुओं को मैं यही सलाह दूंगा कि दो प्रमुख योजनाओं को जो मैं वर्णन किया हूं, अगर चाहें तो वहां से लाभ उठा सकते हैं जल प्रबंधन के लिए।
1: जी जी, मौसम पूर्वानुमान से क्या जल प्रबंधन किया जा सकता है?
0: जी, एक बहुत बड़ा वर्तमान समय का विषय है। हमारे भारत सरकार में एक मंत्रालय है, मौसम मंत्रालय जिसे कहते हैं, उसका एक विभाग है भारतीय मौसम विभाग IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि सही समय पर सही तरीके से मौसम का पूर्वानुमान करता है। इस मौसम के पूर्वानुमान में कितनी बारिश होगी, कितना तापमान रहेगा, किस स्पीड से, किस रफ्तार से हवा चलेगी और किस दिशा से चलेगी, अगर ये अनुमान इतना मिलता है तो किसान बंधु चाहें तो अपने खेत पे जल प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, इसमें हर एक कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी में एक AMFU जिसे कहते हैं एग्रोमेट फील्ड यूनिट चलता है, जिसे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भी नाम से जाने लगा है। ये 5 दिनों की मौसम की पूर्वानुमान IMD से लेती है और उसको आने वाले खेती किसानी को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से करें वो एक एडवाइजरी जारी करती है। इस एडवाइजरी को अगर किसान बंधु ध्यान में रखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगा, अगर कोई किसान सिंचाई करने जा रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, किसान अभी सिंचाई करने वाला है, अगर उसको पता चल जाए कि मौसम में परिवर्तन होगा अगले दिन, तो अगर वो सिंचाई को थोड़ा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रोक करके या उस मौसम को ध्यान में रख करके करता है, तो एक तो उसकी सिंचाई का जल बचेगा, दूसरा उसकी लागत में भी कमी आ सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि इस किसान भाई अभी सिंचाई करके आ गए सुबह में और शाम को बारिश हो गई, या शाम को सिंचाई की है तो सुबह बारिश तक हो गई, तो उससे क्या फसल भी नुकसान होता है, जल भी आपका ख़त्म होता है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रख करके जब भी किसान बंधु खेती कर रहे हैं सिंचाई करने जाएं, तो उसमें सबसे बड़ी बात मेघदूत एक मोबाइल ऐप है, उसको भी चाहें तो अपने मोबाइल में रख करके उसमें मौसम का पूर्वानुमान देता है, उसको देख करके ध्यान में रख करके सिंचाई का या जल प्रबंधन करें।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे वर्तमान समय में फसल उत्पादन के लिए जल प्रबंधन, और इस विषय को लेकर आज हमारे साथ थे डॉक्टर चंद्रभान पटेल, और इस विषय में बहुत सारी जानकारियां आप सभी को दी गई हैं कि जल प्रबंधन क्यों ज़रूरी है और चुनौतियां अभी के समय में सिंचाई के लिए क्या कुछ आ रही हैं। इसके अलावा मल्चिंग के बारे में आपने जाना, जैविक खाद के प्रयोग से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सारी जानकारी आज आपको दी गई हैं। आशा करते हैं आज के इस वार्ता को सुनकर आपको एक नई जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो, मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 128, अध्याय 10, मीरा के पद। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1. बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वय जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। 2. बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा, इस पृष्ठ पर एक सुंदर चित्र है, जिसमें मीरा एक हाथ में एक तारा और दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए पद गा रही हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, सामने एक नदी बह रही है, आकाश में बादल छाए हैं जिनसे वर्षा का जल बरस रहा है, चारों ओर हरियाली है, मीरा के ही निकट एक हिरन और नदी के उस पार एक मोर यूं लग रहे हैं जैसे वे मीरा के पद सुन रहे हों। आसपास फूल खिले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 129, कवयित्री से परिचय। पृष्ठ संख्या 129, कवयित्री से परिचय। आपने जो रचना अभी सुनी है, उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। यहाँ मीराबाई का एक चित्र है, जिसमें वे एक तारा लिए अपने पद सुना रही हैं। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पद में मीरा किनसे विनती कर रही हैं? संतों से, भक्तों से, वैजंती से या श्री कृष्ण से? 2. बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति या ज्ञान और शिक्षा? इस पृष्ठ पर एक चित्र है, जिसमें मीराबाई एक नदी के किनारे एक तारा हाथ में लिए अपने पद गा रही हैं। पृष्ठ संख्या 130। 3. बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत? यहां एक बालिका का चित्र है जो एक पेड़ से लटके झूले पर झूला झूल रही है। चार, बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न है, दुखी है, उदास है या चिंतित है। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहां दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा दूसरे स्तंभ में उन शब्दों से संबंधित अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। तालिका के पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द, जिसके अंतर्गत कुछ शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। एक, नंदलाल। दो, वैजंती माल। तीन, सावन। चार, गिरधर। दूसरे स्तंभ में इन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ अथवा संदर्भ शीर्षक से कुछ इस प्रकार वाक्य दिए गए हैं। एक, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। दो, श्रावण का महीना आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना। तीन, वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। चार, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। अब आप इन शब्दों को इनके सही अर्थ अथवा संदर्भ के साथ मिलान करें। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। ख, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। पृष्ठ संख्या 131। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है? ख, दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है? यहां इस पृष्ठ पर श्री कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वे मुरली बजा रहे हैं। कविता की रचना। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अनेक कवि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। क, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा, कैसे कहा होगा? ख, यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या कहेंगे और क्या क्या पूछेंगे? यहां इस पृष्ठ पर एक बादल का चित्र है जिससे जल बरस रहा है। शब्दों के रूप। अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 132 क मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। इस पंक्ति में शब्द सांवरी को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में सांवरी शब्द आया है, इसके स्थान पर अधिकतर सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। यहां ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं

कोष्ठक दिए गए हैं। एक मुख्य शब्द श्री कृष्ण पहले से दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए श्री कृष्ण से संबंधित एक शब्द मुरली पहले से अंकित है। अब आप अन्य 6 रिक्त स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। पंक्ति से पंक्ति, यहां स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल। 2. क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। 3. मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। 4. सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। 5. उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया दामिन दमके झर लावन की। स्तंभ 2, स्तंभ 2 के अनुसार जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। 1. चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लग गई है। 2. होठों पर सुरीली धुनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजयंती माला सजी हुई है। 3. सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। 4. हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो। 5. कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाज में बोल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 133। कविता का सौंदर्य, बरसे बदरिया सावन की। इस पंक्ति में बरसे बदरिया को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी? इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। रूप बदलकर, पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए, सावन के बादल बरस रहे हैं या सावन की बदरिया बरसती है आदि। मुहावरे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनों या आंखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे, उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है, आंखों में घर करना। यहां आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समझिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आंखों का तारा। 2. आंखों पर पर्दा पड़ना। 3. आंखों के आगे अंधेरा छाना। 4. आंख दिखाना। 5. आंख का कांटा। 6. आंखें फेरना। 7. आंख भर आना। 8. आंखें चुराना। 9. आंखों से उतारना। 10. आंखों में खटकना। यहां इस पृष्ठ पर एक पत्र का चित्र है जिस पर आंखें बनी हुई हैं। पास ही एक कलम और एक दवात का चित्र है जिसके नीचे कुछ और पत्र रखे हैं। पृष्ठ संख्या 134। सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए, गायन करना,

भाव नृत्य प्रस्तुति करना, कविता पाठ करना आदि। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक ढोलक बजा रहा है। पाठ से आगे, आपकी बात। क, बरसे बदरिया सावन की। एक, इस पद में सावन का सुंदर चित्रण किया गया है। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन आते हैं, वर्णन कीजिए। दो, सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। उदाहरण के लिए, बिजली के कड़कने या बूंदों के टपकने की ध्वनियां। तीन, वर्षा ऋतु में आपको कौन कौन सी गतिविधियां करने या खेल खेलने में आनंद आता है। चार, सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, आपके घर, परिसर या गांव में सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, किसी एक के विषय में अपने अनुभव बताइए। ख, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाला और भक्तों का पालन करने वाला कहती हैं। एक, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है, विस्तार से बताइए। दो, कवयित्री ने पाठ में नूपुर और क्षुद्र घंटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी बड़ी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आसपास के किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए। पृष्ठ संख्या 135। विशेषताएं। मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। क, इस पंक्ति में कवयित्री ने श्री कृष्ण की मोहनी मूरत, सांवरी सूरत और विशाल नैनों की बात की है। आपको श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातों ने सबसे अधिक आकर्षित किया। ख, किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, क्यों, अपने जीवन से जुड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के उदाहरण से बताइए। ग, हम सबकी कुछ विशेषताएं बाह्य तो कुछ आंतरिक होती हैं। बाह्य विशेषताएं तो हमें दिखाई दे जाती हैं लेकिन आंतरिक विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती हैं। आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक महिला को फूलों का गुलदस्ता दे रही है। मधुर ध्वनियां। अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। इन पंक्तियों में तीन ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं जिनसे मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उन वस्तुओं के नाम पहचानिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। आगे मधुर ध्वनियां उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के विषय में पहेलियां दी गई हैं। इन्हें पहचान कर सही चित्रों के साथ रेखा खींच कर मिलाइए। यहाँ एक नदी का चित्र है जिसके आसपास चट्टाने हैं और हरियाली है। पृष्ठ संख्या 136। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पहेलियां लिखी हैं और दूसरे स्तंभ में उन पहेलियों के उत्तर के रूप में कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र हैं। पहले स्तंभ में जो पहेलियां हैं वे इस प्रकार हैं। एक, हवा से बोलती है सुरमे गीत सुनाती है, होठों से छू जाए तो मन को लुभाती है। दो, दो साथियों का जोड़ा हाथों से है बजता, ताल मिलाए ताल से हर संगत में सजता। तीन, शाहों में शामिल होती फूंकों से संगीत सुनाती, सुख के सारे काम सजाती दुख में भी ये साथ निभाती। चार, तारों में छिपा संगीत
माँ सरस्वती का गहना, छेड़े जब अंगुलियां, बहे रागों का झरना। 5, दो हाथों से बजती है ये, ताल से थिरके पैर, हर उत्सव की है ये साथी, लटक गले ये करती सैर। 6, नागिन सी लहराती है जो, बड़ी खास आवाज है जिसकी, तीन चीन रंगीन हीन से, मिली जुली पहचान है इसकी। 7, 100 तारों का जादू, डंडियों से जो गाए, कश्मीर की वादियों जैसा मधुर संगीत लाए। 8, छोटा सा यंत्र है, हाथों से बजता जाए, घर मंदिर का साथी, झनकार से मन बहलाए। इस तालिका के दूसरे स्तंभ में इन पहेलियों का उत्तर चित्रों के रूप में दिया गया है। ये चित्र इस प्रकार हैं: 1, ढोलक, 2, बांसुरी, 3, संतूर, 4, तबला, 5, वीणा, 6, शहनाई, 7, मंजीरा, 8, बीन। पृष्ठ संख्या 137। इस पृष्ठ पर मीरा का पद गाते हुए एक चित्र है। उनके केश खुले हुए हैं, उनके कानों में झुमके हैं, माथे पर टीका है और हाथों में इकतारा है। वे श्री कृष्ण के पद गाते हुए उनकी भक्ति में लीन है। यह मीरा का कांगड़ा शैली में बना चित्र है। इस चित्र के आधार पर मीरा के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए। सावन से जुड़े गीत अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से सावन में गाए जाने वाले गीतों को ढूंढिए और किसी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप सावन से जुड़ा कोई भी लोकगीत, खेल गीत, कविता आदि लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। खोजबीन। आपने पढ़ा कि मीरा श्री कृष्ण की आराधना करती थी। आपने कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार में पढ़ा था कि सूरदास भी श्री कृष्ण के भक्त थे। अपने समूह के साथ मिलकर सूरदास की कुछ रचनाएं ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। इसके लिए आप पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 138। आज की पहेली। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। इनकी अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से खोजिए और लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द तथा दूसरे स्तंभ का शीर्षक है समान ध्वनि वाले शब्द। आपकी सुविधा के लिए शब्द मूर्ति के लिए समान ध्वनि वाला शब्द सूरति दिया गया है। अब आप दिए गए शब्दों के अनुसार समान ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से चुनकर लिखिए। तालिका के पहले स्तंभ जिसका शीर्षक शब्द है, उसके शब्द इस प्रकार हैं: सावन, उमड़, नागर, नंदलाल। इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको इन शब्दों से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आपके संकेत के लिए साथ ही एक वर्ग दिया गया है जिसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं। ये अक्षर बाएं से दाएं ओर इस प्रकार हैं: पहली पंक्ति आ, घू, म, ड, दूसरी पंक्ति व, अ, सु, गो, तीसरी पंक्ति न, ग, र, पा, चौथी पंक्ति सो, भी, ती, ल। खोजबीन के लिए यहां दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप कवयित्री मीरा के बारे में और जान समझ सकते हैं। मीरा, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है:
TTPS:SlashSlash WWW.YOUTUBE.CO/Mark VEqual to Capital K, Capital W, Capital K, T, Capital P, Capital M, Art, C - Capital P, Capital A, and AB_CHANNEL. मीरा के भजन, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है TTPS:SlashSlash WWW.YOUTUBE.CO/Mark VEqual to Art, C - Capital P, Capital A, and AB_CHANNEL. मीरा बाई, इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS:SlashSlash WWW.YOUTUBE.CO/Mark VEqual to Capital O, Do - Capital G, S - M - Capital V, I, 3, 7, S - Capital A, and AB_CHANNEL. Capital N - Capital C - Capital E - Capital R - Capital T, Capital O - Capital F - Capital F - Capital I, Capital C - Capital I, Capital L. मीरा के भजन MS Subbulakshmi. इनसे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS:SlashSlash WWW.YOUTUBE.CO/Mark VEqual to Capital E, H - Capital O, C - Capital N - Capital J, Capital X - Capital J, E - Capital I, and AB_CHANNEL. Equal to Capital P R A S A R, Capital B H A R A T I, Capital A R C H I V E S. मीरा फिल्म 1945 भाग एक, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहां दिया गया है जो इस प्रकार है HTTPS:SlashSlash WWW.YOUTUBE.CO/Mark VEqual to Capital O, 0, 5, Capital Q, Capital U, W, Do, U, 7, Capital Q, and AB
PRASAR HARATIVES। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस शीर्षक से संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.yout.com/waTCH?vec। पृष्ठ संख्या 139। पढ़ने के लिए स्वामी भक्त सुमुख। पुराने समय में महिंसक राज्य में जब सकुल नामक राजा का शासन था, चित्रकूट पर्वत पर एक गुफा में हंसों का बहुत बड़ा झुंड निवास करता था। एक दिन कुछ हंस आहार की तलाश में निकल पड़े। आह, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस आकाश में उड़ रहे हैं। एक हंस ने यह बात कही, दूसरे हंस ने कहा वह मानुषीय कहलाता है, तो एक और हंस ने कहा वह बहुत सुंदर है, उसमें 5 प्रकार के कमल उगते हैं। तभी तीसरे हंस ने कहा हमारे चुगने के लिए वह आदर्श जगह रहेगी। यहाँ एक चित्र है जिसमें तीनों हंस आपस में बातें कर रहे हैं। हंसों के राजा मराल देव को तनिक संदेह था, नहीं, हमें चित्रकूट का अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा मराल देव अपने साथी हंसों से कुछ कह रहा है। उसका मंत्री सुमुख उनसे सहमत था, हाँ महाराज, ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी जिस जगह का उपयोग मनुष्य करते हों वहां पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तभी दूसरे हंस ने कहा पर एक बार जगह तो देखें। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस उड़ रहे हैं और मंत्री सुमुख कुछ कह रहे हैं तथा उसका उत्तर एक अन्य हंस दे रहा है। जब हंसों की टोली ने जोर डाला, ठीक है, अगर इसी में तुम सबकी खुशी है तो हम तुरंत वहां जाएंगे। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा बाकी हंसों से कुछ कह रहा है। हंस टोली मानुषीय सरोवर की ओर उड़ चली। आह, नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ रहे हैं और एक हंस ने इस प्रकार कहा। पृष्ठ संख्या 140। चूंकि अनेक पक्षी उस सरोवर पर आते जाते थे, इसलिए शिकारियों का वह मन पसंद स्थान बन गया था। जब हंस टोली सरोवर पर उतरी तो हंसों के राजा के पांव आखेटक के जाल में फंस गए। यहाँ बाई ओर एक चित्र है जिसमें उड़ते हुए हंस धरती पर उतर आए हैं। यहाँ दाई ओर एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा का पैर शिकारी के जाल में फंस गया है। ओह, मैं तो फंस गया, हंसों के राजा ने कहा, अगर मैं अभी ही चिल्ला पड़ा तो मेरे साथी बिना कुछ चुगे ही उड़ जाएंगे। बेचारे, यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी लंबी उड़ान भरी है। जाल में फंसे हुए राजा हंस ने यह बात सोची। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस एक जाल में फंसा हुआ है और वह सोच रहा है और चुपचाप ही अपने पांव छुड़ाने का प्रयास करने लगा। मैं जितना खींचता हूँ जाल की रस्सी मेरे शरीर में उतनी ही अधिक फंसती चली जाती है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस जाल से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने शांति से इंतजार किया। आह, अब वे पानी में क्रीड़ा और उछल कूद कर रहे हैं। उन्होंने
पेट भर चुग लिया होगा। यहाँ एक चित्र है।

जिसमें राजा हंस कुछ सोच रहा है और पास ही कुछ हंस जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तब हंसों को संकट का संकेत सुनाई दिया। आह, खतरे का संकेत, चलो जल्दी वापस चित्रकूट चलते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों ने संकट का संकेत सुना और कहा, लेकिन पुकारा किसने था? यह पता लगाने का समय नहीं है, हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से उड़ जाना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी टोली में केवल एक हंस ऐसा था जो उड़ जाने को तैयार न था, और वह था मंत्री सुमुख। मुझे महाराज मरालदेव दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वही तो घायल नहीं हो गए? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख कुछ सोच रहा है। चिंताग्रस्त सुमुख सरोवर पर लौट कर गया और उसने राजा को घायल और लहूलुहान अवस्था में पाया। पृष्ठ संख्या 141। चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपको बंधन से छुड़ाऊंगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख राजा हंस से कुछ कह रहे हैं, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? देखो शेष सब के सब उड़ गए हैं, मेरे जैसे फंसे हुए पक्षी के लिए आशा ही क्या बचती है भला? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस अपने मंत्री से कुछ कह रहे हैं, मैं आपको इस स्थिति में छोड़ने की अपेक्षा आपके साथ मर जाना अधिक पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे इस बलिदान से हमारा या किसी और का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? हे पक्षियों में श्रेष्ठ, संकट की इस घड़ी में आपके साथ रहना मेरा परम कर्तव्य है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं, सचमुच ऐसा करना तुम्हारी महानता का प्रमाण है, मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तभी देखो आखेटक इसी ओर आ रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर से आखेटक आ रहा है और दूसरी ओर हंस राजा और मंत्री उसे देख रहे हैं। वाह, क्या सौभाग्य है, आज मेरे जाल में एक साथ दो हंस फंसे हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर आखेटक है और दूसरी ओर दोनों हंस हैं। आसपास कुछ हरियाली है, लेकिन जब वह निकट गया, अरे तुम तो मुक्त हो, फिर दूसरे हंस की भांति उड़ क्यों नहीं जाते? यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक मंत्री हंस से कुछ कह रहा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, ये मेरे राजा होने के साथ साथ प्रिय मित्र भी हैं, इन्हें मुक्त कर दो और हमें जाने दो। यहाँ मंत्री हंस का चित्र है, लेकिन तुम तो जब चाहो जा सकते हो। नहीं, मैं अकेले अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता, सचमुच मैं तुमसे विनती करता हूँ, महाराज को छोड़ दो और बदले में मुझे पकड़ लो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक के हाथ में एक पिंजरा है और दूसरी ओर जाल में फंसे हुए राजा हंस और साथ में मंत्री हंस का चित्र है। मैं इनके समान ही आकार में बड़ा और मोटा ताजा हूँ, इनके स्थान पर अगर तुम मुझे पकड़ लो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सौम्यता से किंतु दृढ़तापूर्वक बातचीत करके सुमुख आखेटक का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो गया। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस कुछ कह रहा है, मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हूँ, जाओ मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर देता हूँ। धन्यवाद, तुम भी सदा सुखी रहो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हाथ में पिंजरा लिए खड़ा है और वह मंत्री हंस से कुछ कह रहा है। बड़ी कोमलता से आखेटक ने हंस के फंसे हुए पांव को छुड़ाया और उसके जख्मों को धोकर साफ किया। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक राजा हंस को जाल से छुड़ा रहा है और उसके जख्मों को धो रहा है। पास ही उसका मंत्री हंस है और कुछ दूर एक पिंजरा रखा है। पृष्ठ संख्या 142। हे महाराज, इस आखेटक ने हमें छोड़कर हम पर बहुत उपकार किया है, यह चाहता तो हमें
क्रीड़ा हंस बनाकर यहाँ के राजा को भेंट करके पुरस्कार पा सकता था या हमें मारकर हमारा मांस बेच सकता था। आप इस आखेटक की ओर से यहाँ के राजा से बात क्यों नहीं करते? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस राजा हंस से कुछ कह रहा है, हमें अपने राजा के पास ले चलो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक अपना जाल समेट रहा है और पास ही राजा हंस और मंत्री हंस खड़े हैं। लेकिन ऐसा करना संकट से खाली नहीं है। राजा तुम्हें पालतू बनाकर बंधन में रख सकते हैं या मरवा भी सकते हैं। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया, हो सकता है कि तुम्हारे राजा भी कठोर हृदय वाले ना हों। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हंसों से कुछ कह रहा है और दोनों हंस भी कुछ बात कह रहे हैं। आखेटक दोनों हंसों को राजा सकुल के पास ले गया। ये दोनों उत्तम हंस हैं महाराज, ये हंसों के राजा और उनके सेनापति हैं। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगे? यहाँ एक दरबार का चित्र है जिसमें आखेटक हाथ जोड़े राजा से कुछ कह रहे हैं, पास ही कुछ दरबारी हैं और राजा के समक्ष दोनों हंस खड़े हैं। तब आखेटक ने सारा किस्सा सुनाया, इन्हें सोने के आसन पर बैठाया जाए, इनके लिए शहद और मिश्री का प्रबंध किया जाए। यहाँ राजा का चित्र है जो कुछ कह रहे हैं। जब हंसों का खाना हो गया, हंसों मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंसों से कुछ कह रहे हैं और पीछे की ओर आखेटक खड़ा है। हे राजा, इस आखेटक ने कृपा पूर्वक हमें मुक्त किया, हम आपके पास इसे पुरस्कार दिलवाने के लिए आए हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा मरालदेव आखेटक के राजा सकुल से कुछ कह रहे हैं। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं तुम्हें एक घर, रथ, भरपूर सोना दे रहा हूं और तुम्हारे लिए 1,00,000 की आय की व्यवस्था करता हूं। यहां राजा का कुछ कहते हुए चित्र है। राजा सकुल की अनुमति लेकर हंसों का राजा मरालदेव और सुमुख अपने झुंड में वापस आ गए। आप कैसे मुक्त हुए? यह सब मेरे सेनापति सुमुख की समझदारी और निष्ठा के कारण संभव हुआ। उसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा और सेनापति एक ओर हैं, दूसरी ओर अन्य हंस हैं। पृष्ठ संख्या 143। पढ़ने के लिए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिटे जावे भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद। यहाँ इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर और दाईं ओर चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर एक लड़का तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है और दाईं ओर एक लड़की तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है। पृष्ठ संख्या 144। शब्दकोश। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा शब्दकोश दिया गया है।
इस शब्दकोश में वे शब्द हैं जो विभिन्न पाठों में आए हैं और आपके लिए नए हो सकते हैं। किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं। पाठ के संदर्भ से जोड़कर आप यह अनुमान स्वयं लगाएं कि कौन सा अर्थ पाठ के लिए अधिक उपयुक्त है। कहीं कहीं शब्दों के अनेक समानार्थी भी दिए गए हैं। इससे आप प्रसंग के अनुसार अनुकूल शब्द का चयन करना सीख सकेंगे। यह शब्दकोश आपको शब्दों के न केवल सही अर्थ जानने में सहायता करेगा, अपितु शब्दों की सही वर्तनी भी सिखाएगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक और बालिका प्रसन्न मुद्रा में हैं और आसपास उनके अलग अलग अक्षर लिखे हैं। शब्द का अर्थ देने से पहले मूल शब्द के बाद कोष्ठक में एक संकेताक्षर दिया गया है। इन संकेतों से हमें शब्दों की भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। अंग अंग्रेजी, अ अव्यय, अ अरबी, अ क्री अकर्मक क्रिया, पू पुलिंग, फा फारसी, वी विशेषण, संग संस्कृत, स क्री सकर्मक क्रिया, सर्व सर्वनाम, स्त्री स्त्रीलिंग। अब आपको शब्दकोश इस प्रकार दिया गया है जिसमें वर्णों के अनुसार कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समक्ष कुछ अर्थ लिखे गए हैं। अक्षर अ शब्द है अकाल, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सूखा अयोग्य या अनियत काल कुसमय अनवसर परमात्मा। शब्द है अदृश्य, विशेषण संस्कृत, अर्थ है जो दिखाई न दे जो देखा ना जा सके अगोचर लुप्त गायब। शब्द है अधर, विशेषण संस्कृत, अर्थ है होंठ नीचे का ओठ अंतरिक्ष पाताल दक्षिण दिशा। शब्द है अनोखी, विशेषण अर्थ है अनूठा अद्भुत अपूर्व नया सुंदर। शब्द है अनौपचारिक, विशेषण संस्कृत, अर्थ है नियम आदि का पालन ना किया गया हो। शब्द है अभिवादन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है प्रणाम करना छोटे की ओर से बड़े को नमस्कार स्तुति। शब्द है असफल, विशेषण संस्कृत, अर्थ है विफल नाकामयाब। शब्दकोश में अगला वर्ण है आ। आ से संबंधित शब्द इस प्रकार हैं। शब्द है आखेटक, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है शिकारी शिकार। शब्द है आग्रही, विशेषण संस्कृत, अर्थ है आग्रह करने वाला। शब्द है आजीविका, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है रोजगार रोजी धंधा। शब्द है आमोद, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है हर्ष प्रसन्नता खुशी बिखेरने और फैलने वाली सुगंध सुरभि। शब्द है आवन, पुल्लिंग, अर्थ है आगमन। पृष्ठ संख्या 145। शब्द है आवरण, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है ढकना छिपाना घेरना ढक्कन पर्दा बचाव ढाल चाहर दीवारी। शब्द है आवेश, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है प्रवेश दबा लेना हावी हो जाना गुस्सा जोश घमंड लगन। शब्द है आश्चर्य, पुल्लिंग
संस्कृत, अर्थ है अचरज, अचंभा, विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव। शब्द है आश्रय, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है आधार, विषय, शरण, ठिकाना, घर, सहायता। शब्द है आहत, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है घायल, आघात किया गया हो, जिस पर प्रहार, मारा हुआ, हटाया। शब्दकोश का अगला वर्ण है ऊ। शब्द है उपवन, शब्द है उपवन, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है उद्यान, बगीचा। शब्द है उभय, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है दोनों, दोनों में से प्रत्येक। शब्द है उमग्यो, स्त्रीलिंग, अर्थ है उमंग, उल्लास, मौज, जोश, उभार, उमड़ा, आकांक्षा। शब्द है उमड़, स्त्रीलिंग, अर्थ है बाढ़, धावा, घिराव। शब्द है उर, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है हृदय, मन। शब्दकोश का अगला वर्ण है ओ। शब्द है औपचारिक, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है गौण, उपचार संबंधी, दिखाऊ। शब्दकोश का अगला वर्ण है क। शब्द है कटितट, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है कमर। शब्द है कतार, स्त्रीलिंग, अरबी, अर्थ है पंक्ति, पांत, क्रम, सिलसिला, समूह। शब्द है कपोत, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है कबूतर, पंडुक, चिड़िया। शब्द है कसर, स्त्रीलिंग, अरबी, अर्थ है कमी, न्यूनता, घाटा, वैर, विकार। शब्द है काक, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है कौवा, एक द्वीप, एक माप, कान। शब्द है कुंज, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है लता आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान। हाथी का दांत, नीचे का जबड़ा, गुफा। शब्द है कुढ़न, स्त्रीलिंग, अर्थ है खीज, कुढ़ने का भाव, जलन, विवशता आदि की अनुभूति से होने वाला मनस्ताप। शब्द है कुल, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है वंश, घराना, गोत्र, समुदाय, श्रेणी, घर, आवास, जनपद, सब, सारा। शब्द है कोकिल, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है कोयल, अंगारा, एक तरह का सांप। शब्दकोश का अगला अक्षर है क्ष। शब्द है क्षुद्र, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है नन्हा, छोटा, तुच्छ, खोटा, ओछा। शब्दकोश का अगला अक्षर है ख। शब्द है खंजन, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो मैदानी प्रदेशों में केवल जाड़े में दिखाई देती है, लंगड़ाते हुए चलना। शब्द है खग, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है पक्षी, सूर्य, ग्रह, वायु, बादल, चंद्रमा, बाण, देवता। शब्द है खता, पुल्लिंग, अर्थ है क्षत, घाव। शब्दकोश का अगला अक्षर है ग। शब्द है गावन, स्त्रीलिंग, अर्थ है गाने का ढंग। पृष्ठ संख्या 146। शब्द है
गुजारा, पुल्लिंग फारसी, अर्थ है निर्वाह, रास्ता, घाट, पुल या नाव से नदी पार करना। शब्दकोश का अगला अक्षर है घ। शब्द है घंटिका, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है छोटी घंटी, घुंघरू। शब्द है घनघोर, विशेषण संस्कृत, अर्थ है बहुत घना, जबरदस्त, गहरा, भयंकर। शब्द है घसियारा, पुल्लिंग, अर्थ है घास खोदने वाला, घास काटने वाला, घास बेचने वाला। शब्द है घुमड़, अकर्मक क्रिया, अर्थ है बादलों का इधर उधर से आकर जमा होना। शब्दकोश का अगला अक्षर है च। शब्द है चकित, विशेषण संस्कृत, अर्थ है विस्मित, हैरान, शंकित, घबराया हुआ, भीत। शब्द है चहु, विशेषण, अर्थ है चारों ओर, चार। शब्द है चातक, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है पपीहा, सारंग। कवि संप्रदाय के अनुसार यह पक्षी केवल वर्षा बल्कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, फलतः सदैव बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। शब्द है चापलूस, विशेषण फारसी, अर्थ है चाटुकार, खुशामदी। शब्द है चित्त, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है अंतःकरण, मन, अंतरिंद्रिय। शब्द है चेटी, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है दासी, सेविका, सेवा टहल करने वाली स्त्री। शब्दकोश का अगला अक्षर है छ। शब्द है छटा, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है शोभा, छवि, झलक, दीप्ति, परंपरा, बिजली। शब्द है छुटपन, पुल्लिंग अरबी, अर्थ है छोटापन, बचपन। शब्दकोश का अगला अक्षर है ज। शब्द है जलाशय, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है झील, तालाब, जलाधार, समुद्र। शब्द है जीय, पुल्लिंग, अर्थ है जी, मन, जान, चित्त, जीव। पृष्ठ संख्या 147। शब्दकोश का अगला अक्षर है झ। शब्द है झर, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है झरना, सोता, जल प्रवाह की ध्वनि, ज्वाला, आंच, झुंड। शब्द है झलमल, पुल्लिंग विशेषण, अर्थ है झलमलाने का भाव, अस्थिर झलमलाता हुआ प्रकाश। देख रहे हो क्या लिखा है, झिलमिलाते होना चाहिए ना। शब्द है झुंझलाना, अकर्मक क्रिया, अर्थ है खींचना, चिढ़ना, बिगड़ना। शब्दकोश का अगला अक्षर है ट। शब्द है ट्रैफिक, अंग्रेजी, अर्थ है यातायात। शब्दकोश का अगला अक्षर है ठ। शब्द है ठाठ, पुल्लिंग, अर्थ है शान, सजधज, सितार का तार। शब्दकोश का अगला अक्षर है ढ। शब्द है ढाल, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है तलवार, भाले आदि के आघात को रोकने का लोहे या गैंडे के चमड़े का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। आगे की ओर क्रमशः नीची होती गई जमीन। उतार, ढंग, प्रकार। शब्दकोश का अगला अक्षर है त। शब्द है तात, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है
पिता, आदरणीय व्यक्ति। शब्द है ताप, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है गर्मी, ज्वर, दुख, मानसिक व्यथा, आधी, उष्णता। गर्माहट के लिहाज से किसी वस्तु की दशा, वह दशा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। शब्द है तालीम, स्त्रीलिंग अरबी, अर्थ है शिक्षा। शब्द है ताही, सर्वनाम, अर्थ है उसे, उसको। शब्दकोश का अगला अक्षर है द। शब्द है दम, पुल्लिंग फारसी, अर्थ है सांस, श्वास, पल, लहजा, क्षण, ताकत, जिंदगी, जोर। शब्द है दामिन, स्त्रीलिंग, अर्थ है दामिनी, बिजली। शब्द है दुर्जन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है दुष्ट मनुष्य, खल। शब्द है द्रोह, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है दूसरे का अनिष्ट चाहना, हिंसा, अपराध, वैर, विद्रोह। शब्दकोश का अगला अक्षर है न। शब्द है नभ, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है आकाश, आसमान, मेघ, जल, पृथ्वी आदि पांच तत्वों में से एक। शब्द है निर्भय, विशेषण संस्कृत, अर्थ है निडर, निरापद, जो किसी से भय ना खाए। पृष्ठ संख्या 148। शब्द है नूपुर, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है घुंघरू, पैर का एक गहना। शब्द है नैना, पुल्लिंग, अर्थ है नेत्र, आंख। शब्दकोश का अगला अक्षर है प। शब्द है पनघट, पुल्लिंग, अर्थ है पानी भरने का घाट। शब्द है प्रतीति, अर्थ है प्रतीति, ज्ञान, बोध, हर्ष, विश्वास। शब्द है पवन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है हवा, छलनी, पानी। शब्द है पैनी, विशेषण स्त्रीलिंग, अर्थ है जो भीतर की वस्तु को देख सके, जिसकी धार बहुत तेज हो। शब्द है प्रशिक्षण, पुल्लिंग, अर्थ है किसी व्यवसाय, कला, दौड़ आदि की व्यवहारिक रूप में लगातार कुछ समय तक दी जाने वाली शिक्षा, ट्रेनिंग। शब्द है फरमाइश, स्त्रीलिंग फारसी, अर्थ है आज्ञा रूप में कुछ मांगना, आज्ञा, कोई चीज भेजने की आज्ञा, ऑर्डर। शब्द है फौरन, अव्यय अरबी, अर्थ है तुरंत, अभी, झटपट। शब्दकोश का अगला अक्षर है ब। शब्द है बघारना, सकर्मक क्रिया, अर्थ है छोंकना, तड़का देना, हींग, जीरा, प्याज आदि घी में कड़कड़ाकर दाल तरकारी आदि में डालना। शब्द है बसन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है वस्त्र, आवरण, ढकने की वस्तु, निवास। शब्द है बानी, स्त्रीलिंग, अर्थ है वाणी, सरस्वती, सार्थक शब्द, वचन, जीभ, स्वर, प्रशंसा। शब्द है बिद्ध, विशेषण, अर्थ है बिंधा हुआ, छेदा हुआ। शब्द है बिसारी, सकर्मक क्रिया, अर्थ है बिसराना, भुला देना। शब्द है बेड़ी, स्त्रीलिंग, बंधन,
कैदियों, हाथी, घोड़ों आदि के पावों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। शब्द है बेध, पुल्लिंग, अर्थ है छेद, मूंगे आदि में किया हुआ छेद, मोती। शब्द है बेवक्त, पुल्लिंग, अरबी, अर्थ है कुसमय, किसी समय, हमेशा। शब्दकोश का अगला अक्षर है भ। शब्द है भक्त वचल, विशेषण, अर्थ है भक्त को प्यार करने वाला, भक्त के प्रति स्नेह युक्त। शब्द है भक्षक, विशेषण संस्कृत, अर्थ है खाने वाला, भक्षण करने वाला। शब्द है भनक, स्त्रीलिंग, अर्थ है धीमी, अस्पष्ट ध्वनि, उड़ती हुई खबर। शब्द है भावन, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है निमित्त, कारण, उत्पादन, रुचिवर्धन, चिंतन, कल्पना, स्मरण। शब्द है भाव भंगिमा, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है मन के विकार को व्यक्त करने वाला अंग संचालन या क्रिया। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है भौंर, पुल्लिंग, अर्थ है भ्रमर, भौंरा, मधुप, जलावर्त। शब्द है भ्रमण, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है घूमना, फिरना, यात्रा, अस्थिरता, चक्कर। शब्दकोश का अगला अक्षर है म। शब्द है मंत्र, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सलाह, राय, गुप्त वार्ता, कान में कही जाने वाली बात, कार्य सिद्धि का गुर, स्त्रीलिंग समक्ष, बुद्धि। शब्द है मनहर, विशेषण संस्कृत, अर्थ है मन को हरने चुराने वाला, सुंदर। शब्द है मानधन, पुल्लिंग संस्कृत, विशेषण, अर्थ है मान का धनी, प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। शब्द है मुक्ति, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है आजादी, छुटकारा, मोक्ष। शब्द है मूर्ति, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है मूर्ति, शरीर, स्वरूप या शक्ल, प्रतिमा। शब्द है मेह, पुल्लिंग, अर्थ है वर्षा, बरसात, झड़ी, पड़ना, बरसना। शब्दकोश का अगला अक्षर है र। शब्द है रस, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है स्वाद, आनंद, प्रेम, द्रव, जल, मन में उत्पन्न होने वाला वह भाव जो काव्य पाठ, अभिनय दर्शन आदि से होता है। शब्द है रसाल, विशेषण संस्कृत, अर्थ है रसीला, मीठा, मधुर, सुंदर, शुद्ध। शब्द है राजती, अकर्मक क्रिया, अर्थ है राजना, रहना, शोभित होना, विराजना। शब्द है रीसेस, अंग्रेजी, अर्थ है अल्पावकाश, मध्यावकाश। शब्द है रीति, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है नियम, झरना, टपकना, ढंग, प्रकार, तरीका, चलन। शब्द है रेवड़, पुल्लिंग, अर्थ है भेड़ों का समूह, पशुओं का झुंड, गल्ला। शब्दकोश का अगला अक्षर है ल। शब्द है लहरा, पुल्लिंग, अर्थ है लहर, मजा, आनंद, बाजों की संगत, जिसमें ताल स्वरों की केवल लय होती है, बादलों का कुछ देर जोर से बरसना, एक घास। शब्द है
लावन स्त्रीलिंग, अर्थ है लावनी लावण्य

रूप, धर्म आदि स्वाभाविक अवस्था का परिवर्तित होना। शब्द है विचरण, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है घूमना फिरना, चलना भ्रमण करना। शब्द है व्यापक, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सर्वत्र फैला हुआ, दूर तक, जो किसी चीज के सारे विस्तार में हो। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है शाखा, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है पेड़ की डाल, दरवाजे की चौखट, बाहु संप्रदाय। शब्द है शुक, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सुग्गा, तोता, वस्त्र, पोशाक। शब्द है शैली, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है रीति, किसी काम के करने का ढंग, तरीका, पद्धति। शब्द है श्याम, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सांवला, काला, कृष्ण। शब्दकोश का अगला अक्षर है स। शब्द है सदय, विशेषण संस्कृत, अर्थ है दयालु, रहमदिल। शब्द है समुझी, स्त्रीलिंग, अर्थ है समझ, बुद्धि, प्रज्ञा, विचार। शब्द है साजिंदे, पुल्लिंग फारसी, अर्थ है साज बजाने वाला, सारंगिया, तबलची। शब्द है सिद्धि, स्त्रीलिंग संस्कृत, विशेषण, अर्थ है सफलता, अभ्युदय, अनुमान, दक्षता, निपुणता, मोक्ष, लाभ। शब्द है सुखदाई, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है सुख देने वाला। शब्द है सुधा, स्त्रीलिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संस्कृत, अर्थ है अमृत, रक्त, रस, दूध, जल, शहद, गंगा, बिजली, पृथ्वी। शब्द है सुधी, स्त्रीलिंग, अर्थ है याद, होश, चेत, खबर। शब्द है सुर, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है स्वर, आवाज, देवता, सूर्य। शब्द है सुरभि, विशेषण संस्कृत, अर्थ है सुगंधित, खुशबूदार, प्रिय, मनोरम, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, विद्वान। शब्द है सूरती, स्त्रीलिंग, अर्थ है शक्ल, रूप, याद, स्मरण। शब्द है सोहता, विशेषण, अर्थ है मोहक, सुंदर। शब्द है सोहावन, अकर्मक क्रिया, अर्थ है अच्छा लगना, भला मालूम, सुंदर, शोभित होना। शब्द है स्वच्छंद, पुल्लिंग संस्कृत, अर्थ है अपनी इच्छा, पसंद। शब्दकोश का अगला अक्षर है ह। शब्द है हसिया, पुल्लिंग, अर्थ है लोहे का धनुषाकार औजार, जिससे फसल, तरकारी आदि काटते हैं। शब्द है हठी, विशेषण संस्कृत, अर्थ है हट करने वाला, जिद्दी। पृष्ठ संख्या 151। ब्रेल भारती, हिंदी वर्ण व गिनती। इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें हिंदी वर्ण व गिनती को ब्रेल रूप में अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 152। पहेलियों के उत्तर। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें पाठ में आए हुए पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। पाठ एक, मां कह एक कहानी। प्रश्न, आज की पहेली। इन पहेलियों के उत्तर इस प्रकार हैं, मां, पक्षी, सुरभि। पाठ दो, तीन बुद्धिमान

0: ज्ञान। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर माँ पक्षी सुरभि। पाठ दो, तीन बुद्धिमान। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर गिरगिट नीला डिब्बा। पाठ चार, पानी रे पानी। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर मेह जलाशय, नीर अंबु, सर सरोवर, सलिल ताल, तटिनी बारिश, प्रवाहिनी तरंगिणी। पाठ पांच, नहीं होना बीमार। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर आलू का पराठा, मसाला डोसा, वड़ा पाव, ढोकला, पानी पूरी, मक्के की रोटी, बाटी, रसगुल्ला। पाठ सात, वर्षा बहार। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़। पाठ आठ, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर रूपक, लक्ष्मी, तिलवाड़ा, कहरवा, झूमरा, दीप चंदी, दादरा। पाठ नौ, चिड़िया। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर तोता, कौवा, खंजन, कोयल, कबूतर, चातक, हंस। पाठ दस, मीरा के पद। प्रश्न मधुर ध्वनिया। उत्तर बांसुरी, तबला, शहनाई, वीणा, ढोलक, बीन, संतूर, मजीरा। प्रश्न आज की पहेली। उत्तर आवन, घुमड़, नगर, गोपाल। पृष्ठ संख्या 153, मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर इस शीर्षक से संबंधित आप अपने मन की अभिव्यक्ति को रचनात्मक ढंग से लिखिए। पृष्ठ संख्या 154, मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर भी आप अपने मन की बातों को इस शीर्षक के अनुसार रचनात्मक ढंग से लिखिए। यहां यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास के बारे में। और बहुत सारे किसान भाई भी इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि लेमन ग्रास की खेती कैसे होती है, प्रभेद कौन सा है और कौन से क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर देखें तो इसे उगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये टॉपिक कराए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस खास विषय को बताने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर एमपी मंडल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि लेमन ग्रास क्या होता है, ये बताएं हमारे श्रोताओं को।
5: किसान भाइयों नमस्कार। लेमन ग्रास एक सुगंधीय पौधा होता है जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज़्यादा होती है। वही इसकी महक नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी फंगल आदि आपको कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं। अक्सर लेमन ग्रास का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। लेमन ग्रास तेल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसमें लगभग 75% सिट्राल पाया जाता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लेमन ग्रास तेल के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है।
4: तो यहाँ पर आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या होता है। डॉक्टर साहब, अगर वानस्पतिक दृष्टि से देखा जाए तो लेमन ग्रास का जो वानस्पतिक परिचय है वो कैसे होगा, उसके बारे में बताएं।
5: लेमन ग्रास की पत्तियों में नींबू जैसी तीक्ष्ण सुगंध आने के कारण ही इस घास का नाम नींबू घास रखा गया है। इसका वानस्पतिक नाम सिम्बोपोगन फ्लेक्सुओसिस है। यह घास कुल पोएसी परिवार का सदस्य है, जिनमें फ्लेक्सुओसिस को ही भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी दूसरी प्रजातियां हैं सिम्बोपोगन नार्डस, सिम्बोपोगन पेंडुलस एवं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। यह सगंधीय पौधा बहुवर्षीय एवं 2 मीटर ऊंचाई वाला होता है। इसकी पत्तियां लंबी कोमल व गुच्छेदार होती है। इनके तने पर लाल धारियां होती है।
4: डॉक्टर साहब, अगर लेमन ग्रास की व्यावसायिक खेती के बारे में हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में हमारे किसान भाई जो हैं व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती कर सकते हैं?
5: लेमन ग्रास भारतवर्ष के दक्षिण पूर्वी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल एवं बिहार में इसकी खेती होती है।
4: और साथ ही अगर खेती की बात करें डॉक्टर साहब, तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है कि इसमें मिट्टी का चयन कैसा करें, तो खेती से जुड़ी कुछ बातें और मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
5: लेमन ग्रास की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक रेतीली दोमट तथा हल्की कपासीय मिट्टी उपयुक्त होती है। वैसे हल्की लैटेराइट मिट्टियों में भी उगाई जा सकती है, परंतु जीवांश युक्त दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सर्वोत्तम होती है।
4: इसके साथ ही इसके प्रमुख हम प्रजातियों को जानना चाहेंगे, कौन कौन से उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे किसान भाई जिसका चयन करें खेती के लिए।
5: लेमन ग्रास की अभी जो हाल में रिलीज हुई है वैरायटी, तो सिम शेखर अभी वैरायटी है। इसका जो है उपज क्या है, 280 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। और इसके अलावे कावेरी, प्रगति, प्रमाण, चिरहरित, कृष्णा, नेमा, CKP 25, ये सब जो है पुरानी वैरायटी है।
4: और डॉक्टर साहब अगर आगे बढ़ते हैं तो लेमन ग्रास की कृषि तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, और इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे खेत की तैयारी कैसे करें अगर लेमन ग्रास लगा रहे हैं तो।
5: लेमन ग्रास की खेती करने से पूर्व खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से आरा तिरछा जुताई की जाती है। उसके बाद लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप द्वारा किया जाता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों एवं स्लिप्स से किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे के लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
4: और डॉक्टर साहब अगर यहाँ पर प्रवर्धन की बात की जाए तो वो कैसे किया जाता है?
5: लेमन ग्रास का प्रवर्धन बीजों एवं स्लिप्स के द्वारा किया जाता है
4: जी। और बुआई और रोपण का समय क्या होना चाहिए?
5: रोपण का कार्य वर्ष में दो बार, प्रथम फरवरी मार्च में जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, तथा द्वितीय वर्षा ऋतु में कभी भी किया जा सकता है। लेमन ग्रास की बिजाई इसके बीजों से की जाती है, स्लिप से भी एवं स्लिप से भी। बीजों से बिजाई करने की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की सर्वोत्तम विधि है इस स्लिप से लगाना। इसके लिए सर्वप्रथम लेमन ग्रास के एक वर्ष पुराने पौधों को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इन स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ों को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई प्रायः 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम खाली खेत में एक खुला पानी छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि में नमी आ जाए। तैयार की गई स्लिप्स को गोमूत्र, एक भाग गोमूत्र एवं 10 भाग पानी में 2-3 घंटे डुबोकर उनको 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद में लगा दिया जाता है। सिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्रों में रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, जबकि असिंचित क्षेत्रों में यह दूरी 45x30 सेंटीमीटर भी रखी जा सकती है। ऐसा पाया गया है कि फरवरी मार्च में लगाई गई लेमन ग्रास से प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पैदावार मिलती है। प्रायः स्लिप्स का उगाव 60-80% तक होता है तथा 15-40% स्लिप्स मर जाती है, जिनकी नई स्लिप्स लगाकर गैप फिलिंग कर दी जानी चाहिए। फरवरी मार्च की अपेक्षा वर्षा ऋतु में लगाई गई स्लिप्स की मृत्यु दर कम रहती है
4: जी। तो यहाँ पर आपने जाना कि रोपण की विधि क्या होनी चाहिए, बुआई किस समय आप कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब जब हम अच्छे उर्वरक देंगे तभी हमारी अच्छी उपज होगी, तो लेमन ग्रास के लिए हम कौन कौन से अच्छे उर्वरक का चयन करें?
5: लेमन ग्रास शाकीय फसल होने के कारण लेमन ग्रास को पोषक तत्वों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतया खेत तैयार करते समय ही 15 टन कंपोस्ट खाद डाले जाने की संतुति की जाती है, परंतु इसके साथ साथ प्रत्येक कटाई के उपरांत भी कम से कम 2-2.5 टन गोबर की खाद पौधों के पास पास डाला जाना उपयोगी रहता है। वैसे रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रति एकड़ प्रति वर्ष 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम पोटाश तथा 16 किलोग्राम फास्फोरस डाले जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें से फास्फोरस एवं पोटाश तो वर्ष के प्रारंभ में एक ही बार डाला जाना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का डोज प्रत्येक 2 महीनों में 10-10 किलोग्राम प्रति डोज की दर से दिया जाना उपयोगी बताया गया है।
4: इसके बाद सिंचाई की बात करते हैं, तो सिंचाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, वो भी बता दें डॉक्टर साहब।
5: अच्छी फसल तक साग के रूप में उत्तम उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से लेमन ग्रास के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था हो जाने पर इसका अच्छा विकास हो जाता है। हालांकि असिंचित स्थितियों में भी इसकी खेती की जा सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में इसकी केवल एक कटाई ही ली जा सकती है, न कि 3 से 4 कटाइयों प्रतिवर्ष।
4: डॉक्टर साहब, अगर निकाई गुराई की बात करें हम, तो कब करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए?
5: लेमन ग्रास की फसल में पहली बार ही ज्यादा खरपतवार होती है। लेमन ग्रास के पौधों की पत्तियों काफ़ी चौड़ाई होने के कारण खरपतवार नहीं पनपती है। लेमन ग्रास की रोपाई के 45 से 50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर दी जाती है।
4: तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही इसमें लगने वाले कीट और रोगों के बारे में भी बता दें।
5: लेमन ग्रास एक कठोर प्रवृत्ति का पौधा होता है, अतः इस पर अधिकांशतः किसी प्रकार की कीट पतंगों का आक्रमण नहीं होता तथा न ही इस पर कोई ऐसा रोग अथवा बीमारी होती है जो इस फसल के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर सके। वैसे लेमन ग्रास की फसल के प्रमुख रोग है लीफ ब्लास्ट, लीफ स्पॉट और पित्त रोग। लीफ ब्लास्ट के उपचार हेतु मैंकोजेब या डाइफोलेटन का 0.3% घोल पत्तियों पर छिड़कना उपयोगी पाया जाता है। लेमन ग्रास का दूसरा प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट, जिसके कारण पत्तियों सूख जाती है। डाइथेन M45 के 0.3% घोल के 15 से 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। तीसरे प्रमुख रोग है पित्त रोग की स्थितियों में पौधे के तने में काफ़ी वृद्धि हो जाती है।
4: डॉक्टर साहब, इसके साथ ही लेमन ग्रास फसल की कटाई के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
5: लेमन ग्रास रोपाई के लगभग 100 दिनों बाद पहली बार कटाई योग्य हो जाती है तथा उसके बाद 60 से 70 दिनों के अंतराल पर इसको काटते रहना चाहिए। फसल की कटाई सदैव फूल निकलने से पहले ही करनी चाहिए तथा फसल को भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए। इस प्रकार लेमन ग्रास की प्रथम वर्ष लगभग 3 से 4 कटाई तथा अगले वर्ष में प्रत्येक वर्ष 4 से 5 कटाई मिलती रहती है तथा एक बार रोपित फसल लगभग 5 वर्षों तक चलती रहती है।
4: जी, इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात वो है कि लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कैसे निकाला जाता है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में बताएं।
5: लेमन ग्रास की पत्तियों से फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा तेल निकाला जाता है। तो आसवन उस समय करते हैं जबकि पत्तियों थोड़ा मुरझा जाए। इसके लिए उन्हें खेत में या किसी छायादार स्थान पर लगभग 45 से 50 घंटे रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो नमी होती है, तो नमी मतलब कि समाप्त हो जाती है। उसके बाद फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट से इसको निकालने से क्या कि 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है।
4: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में कितना तेल प्राप्त हो सकता है?
5: निकाले गए तेल की मात्रा विभिन्न प्रजातियों, भूमि व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन प्रथम वर्ष में औसतन 250 किलोग्राम तेल 4 कटाइयों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जो आगामी वर्षों में बढ़ता है तथा 4 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाता है।
4: जी डॉक्टर साहब, प्रति वर्ष अगर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं तो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर कितना आमदनी मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
5: लेमन ग्रास की खेती प्रति वर्ष जो है 2 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
4: जी डॉक्टर साहब, इसके फायदों के बारे में भी बता दें हमारे सभी श्रोताओं को।
5: लेमन ग्रास विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, और मैग्नीज से भरपूर होती है। रोजाना लेमन ग्रास टी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और विषैले पदार्थ पेशाब द्वारा बाहर निकलते हैं। इससे किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज की भी सफाई होती है। लेमन टी पीने से सर्दी जुकाम दूर होती है, कैंसर की बीमारी दूर होती है, गठिया दर्द से राहत मिलती है, डिप्रेशन से बचा

0: आता है त्वचा में निखार लाता है और निद्रा को दूर करता है, एनीमिया दूर करता है, दिमाग को तेज करता है, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है।
1: जी, तो श्रोताओं आपने जाना कि लेमन ग्रास के कितने फायदे हैं और इसलिए बाजार में इसकी मांग भी ज़्यादा है। व्यवसायिक स्तर पर आप खेती कर रहे हैं तो आपको फायदों के बारे में भी बताया गया कि आपको कितना आमदनी मिल सकता है। तो इस प्रकार लेमन ग्रास की खेती आप करेंगे तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा और यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप खेती करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नहीं जानलेवा बीमारी। यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: फर्स्ट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितनी तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थी या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी, आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया, बॉडी पॉजिटिविटी। और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा। मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है, बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है। सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी। और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं हैं, आप बिल्कुल पतले नहीं हैं, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत मोटे, आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं, लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं, या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए, और आपकी जो नेचुरल स्किन है जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफ़ेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी। फिर आप गोरे हो, काले हो, मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई, या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नज़रिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफ़ी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपके ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीजें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए। और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और खुद की तारीफ कीजिए, खुद को पहले निहारिए और खुद से प्यार कीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बढ़ जाएगा और आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और कुछ पेजेस ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आँखें ऐसी नहीं होनी चाहिए, बॉडी टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको वो बुरा फील करा रहे हैं, लो फील करा, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उस सोशल मीडिया पेज को एकदम ब्लॉक कर दीजिए। एक और बात कि ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे नहीं होते हैं। आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं वो सच्चे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो, तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक लाई जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं आप सभी को बता दूँ, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है, परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती न करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं। और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्टी ड्रिल का उपयोग करते हैं।
0: जी सर, इसके फायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
1: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फायदे हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं। जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है, और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं। इसमें सबसे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी विधि बुआई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुआई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्रिक है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता।
0: जी सर, धान की सीधी बुआई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
1: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें, और समतलीकरण करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पर कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं, उनका समुचित उपयोग होता है। और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है। पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है, और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेबल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं, और साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
1: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ पर खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी तो खरपतवार की बढ़वार को वो रोकेगा। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिसका जड़ है जो कि गहरे नीचे उसकी गहराई ज़्यादा तक हो, एवं ऐसे प्रभेद का हम चयन करें जो जहाँ जिसकी जल की आवश्यकता कम हो। सीधी बुआई करते समय हमको प्रभेदों का चयन जल की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। हम सामान्यतः बिहार में अगर हम धान की प्रभेद की बात करते हैं तो हम लंबी अवधि की किस्म को भी लेते हैं और साथ ही साथ कम अवधि के किस्म को भी लेते हैं। हम अगर प्रभेदों की बात करें तो राजेंद्र महसूरी, MTU 1001, सबौर अर्जल, सहभागी, सुष्क्रमराट, इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
0: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
1: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत ये मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई, और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस बार का ही लें, इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था, और उसके बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम हैं जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
0: सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूंकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फॉस्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 kg नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 kg आप फॉस्फोरस की मात्रा और 60 kg पोटास की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नेत्रजन की एक तिहाई मात्रा तथा स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12 32 36 के माध्यम से भी पोषक तत्व तो हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप धान की सीधी बुआई और धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन के का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना न हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिन, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पायरेजो सल्फिरॉन, ये पायरेजो सल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। यह खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पायरेजो सल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है जिसको कि हम 250 ml दवा है जो कि 1 हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोप है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 2,4-D इथाइल इस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुशंसा हम

0: असल जमाव की अवस्था में जल भराव से समानता है जो कि उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से एक महीना पहले कर देना चाहिए। समानता हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए, और हमको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं। तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो, जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। सामान्यतः अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहाँ उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक पर निर्धारित करती है, इसलिए हमें बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम धान की सीधी बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इससे न केवल हमको हमारी लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन बराबर रहने के बावजूद है जो कि हमारे आर्थिक जो लाभ है उसमें बढ़त प्रदान करती है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है धान की सीधी बुआई में आपको क्या कुछ करना है। तो आशा करते हैं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव।

0: और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं। अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैक छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा? देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहां जो भी नई चीज आती है, पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है। दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100 सवा सौ नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने? इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है। बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त?
1: सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, ANM से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे, और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है। कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
2: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलतफहमी है। बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
2: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
2: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो, जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
2: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
2: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं कई हैं।
2: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
1: बस यही चाहिए, सवाल रहे जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में UWIN पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो, देखो
4: Q
3: क्यों है इतने जीरो?
4: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा

0: जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
3: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
2: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
3: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया, जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
2: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
3: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
2: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप की पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
3: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है, ताकि सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
2: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
3: जी,
2: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
3: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं। लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए, और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई, तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है, और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
2: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
3: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है, और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
2: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
3: धन्यवाद आपको भी।
2: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल, और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
4: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
5: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: अगवंती धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी।
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की

0: धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
0: तो श्रोताओ, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
0: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
0: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओ, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
0: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
0: जी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सुमारु और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ।
0: कमली और सुमारू चले।

0: थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान

0: टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
3: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
4: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
5: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
6: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
5: आजा खेलते हैं।
6: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
7: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
6: अच्छा वो क्या?
7: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
6: हाँ दूसरा क्या?
7: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
5: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को

0: कभी।
1: आपके पास फौजी वर्दी है?
0: हाँ।
1: आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना?
0: बिल्कुल, मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है।
1: मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा।
0: शाबाश पुत्र, शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आगे हो, आगे हो। ये देखो, यदि इधर देखो, इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: हाँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था।

0: ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था, तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास
1: जी।
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग।

0: रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं।
1: ठीक है साहब। हां साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैंड गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर बैंगन मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है। और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
3: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं। और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है। और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
3: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और दो से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पे एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए
3: भिंडी के फसल के लिए? खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
3: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
3: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है, है और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
3: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है।

0: खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें? वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी जरूरी मिनरल्स है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफी अच्छा रहता है, कभी काफी खराब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफी डल हो जाती है। तो इन सारी चीजों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन B, C, D, E और बहुत सारे जरूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में जरूर बैठें, और खास तौर से सुबह की धूप बहुत जरूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप जरूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं कुछ भी करें वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीजों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं तो जरूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहे। और साथ ही ये भी जरूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगी ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस, एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी। मैं भी, मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
2: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
3: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बैसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है।
2: जी यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
3: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बैसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
2: जी
3: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
2: जी।
3: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बैसिलस?
2: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बैसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बैसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
2: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा, तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है, फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं, तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
3: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
2: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा, आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता, तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
3: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
2: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबूर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल दें कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
3: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिले।
2: जी बिल्कुल।
3: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
2: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव नियंत्रण नियंत्रक कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो

0: प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
4: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में राम किशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
2: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
3: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
2: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
3: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
2: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
3: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
3: नहीं आरजे उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
2: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
3: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
2: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
3: हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए, भले लक्षण हो या ना हो।
2: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
2: और भैया ये इलाज कितना लंबा चलता है?
3: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं। बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
2: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
3: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
2: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल आरजी उमा, गलत फहमियाँ ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
2: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
3: यह बिल्कुल गलत है।

0: क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
1: भैया, ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है। ये ऐसा कुछ होता है?
0: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
1: भैया, और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते।
0: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: भैया, लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
0: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है। जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रतिमाह, पोषण सहायता भी मिलती है।
1: पर भैया, कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
1: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
0: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
1: और भैया, टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
0: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
1: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
0: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
1: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
0: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीवी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीवी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे। यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
1: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
0: हाँ उमा बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग्य बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाई, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी।

0: तो साथियों याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: साथियों आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी शायद पुरुषों से बराबर की होती है या थोड़ी ज़्यादा होती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आती है जो महिलाओं को मदद करती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं कृषि से जुड़ी हुई, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मधुमिता। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद उमा।
1: मैम, आपसे पहला सवाल तो यही है कि कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं?
3: नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज कृषि में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं इस पे बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कृषि में महिलाओं की भूमिका हम लोग बखूबी रूप से जानते हैं, बहुत ज़्यादा अहम उनकी भूमिका होती है। बीज की बुआई से लेकर के फसल की कटाई, थ्रेशिंग एवं पैकेजिंग से लेकर उसके विपणन या कहें मार्केटिंग तक उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ने अपने बजट का कम से कम 30% हिस्सा महिला किसानों के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया है। तो कुछ कुछ जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हैं नमो ड्रोन दीदी योजना, फिर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लखपति दीदी योजना, फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा स्टार्टअप कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए, फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि यांत्रिकरण योजना, निजी नलकूप पर सब्सिडी, थ्रेशिंग फ्लोर योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इत्यादि। तो हम ऐसे जान सकते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, और हम इनमें से कुछ मुख्य योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे।
1: जी मैम, और आप विस्तार से बता दीजिए इन सारी योजनाओं के बारे में।
3: जी बिल्कुल, तो इसमें सबसे पहले क्रम में है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो लखपति दीदी योजना। यह योजना स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक अहम पहल है, जिसका लक्ष्य महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1,00,000 रुपए से ऊपर पहुंचाना है। इसमें महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन, सिलाई एवं कृषि आधारित व्यवसायों के लिए 5,00,000 का ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। बिहार में अब तक लाखों महिलाएं इस पहल से लखपति बन चुकी हैं। इसमें जो है उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसपे की रियायती ब्याज दरें होती हैं। अगर हम बिहार में इसकी स्थिति की बात करें तो 25-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लाखों ग्रामीण महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दूसरी जो अहम योजना है वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसको कि जो जीविका के द्वारा जिसे हम जान सकते हैं, इसके तहत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की पहली किश्त मिलती है। और इस योजना का उद्देश्य जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय जैसे कि बकरी मुर्गी पालन या दुकान शुरू कर निर्भर बनाना होता है। सफल रोजगार के बाद इसमें 2 लाख की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है। जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वह अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र जो CSP पॉइंट हम बोलते हैं उस वहां पे जा करके या फिर खुद ही इंटरनेट पर से इसके बारे में जान सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं एक और अहम योजना की जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसमें जो है महिला किसानों को आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा है। इसकी पात्रता एवं लाभ की हम अगर बात करते हैं तो इसमें महिला किसान भारत की निवासी होनी चाहिए और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उनके पास खेती योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए और आवेदन के लिए वो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय या जीविका के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। और एक अन्य मुख्य योजना है वह है बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना।
1: जी,
3: बिहार सरकार की एक ये बहुत अहम पहल है जिसमें कि महिलाओं को अपना नया कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है और फिर इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है जिसे कि वे 7 साल में आसान किस्तों में उन्हें चुकाना होता है। यह योजना सभी वर्ग की महिलाओं के लिए खुली है। इसके अलावा भी एक योजना है जो नमो ड्रोन दीदी योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खड़े करना है। ये तो थे कुछ अहम योजनाएं। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं हैं जो कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, जैसे कि कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें महिला किसानों को ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र खरीदने पर विशेष सब्सिडी मिलती है। मखाना, मशरूम और मक्का की खेती के लिए 10 क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण में भी प्राथमिकता दी जाती है। फिर निजी नलकूप पर सब्सिडी है, जैसे कि जो जल संकट वाले क्षेत्र में महिला किसानों को निजी नलकूप स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 50% से 80% तक अनुदान दिया जाता है। फिर एक है थ्रेशिंग फ्लोर योजना, फसल सुखाने के समय समस्या को दूर करने के लिए पक्का थ्रेशिंग फ्लोर बनाने के लिए भी सरकार 50,000 तक का अनुदान दे रही है। फिर उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी है जो कि जीविका समूह की महिलाओं को इस योजना से जोड़कर पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाएं आगे आएं, इनका लाभ लें और वो अपना पूरा जो कोई उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सरकारी सहायता का लाभ मिले। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं हैं।
1: जी मैम, तो आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया और अंत में आप महिला किसान खास तौर से महिला किसानों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
3: जी हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो भूमिका है वह अभिन्न है, वो हर एक क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा करती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो कृषि जो कि हमारा देश जिस पे की आधारित है उस पे भी उनका रोल, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ज़्यादा उनका अहम उनका रोल है। तो जब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है, सारी वो गतिविधियों में वो शामिल हैं, तो हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनका पूरा पूरा लाभ लें, वो सजग हों, उन्हें पता होनी चाहिए कि उनके बारे में क्या कुछ लाभ मौजूद है, क्या कुछ स्कीम या योजनाएं मौजूद हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और वो अपना कृषि में भरसक योगदान दे सके।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कृषि में अपना और भी योगदान दे सके। और महिलाओं के पास जो सरकार की योजनाएं तो हैं वो हैं ही, साथ ही होना चाहिए उनके पास हौसला और ये जुनून कि वो कुछ कर सकती हैं, और कुछ करने के लिए उनके पास हर क्षेत्र में जो मौके हैं, और खेती के जब वो खेती करना चाहती है तो उसमें भी उनके पास मौके हैं और साथ ही सरकार की योजना है। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी मैम कि कृषि सखी सरकार द्वारा एक पहल चल रही है, कृषि सखी, ये ऐसी पहल है जिसमें कि कौशल पर, महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है और उन्हें जैविक खेती, पशुपालन एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष प्रशिक्षण दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ उत्पादन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है अच्छा मुनाफा के लिए, उत्पादन के साथ साथ हमें उसे प्रसंस्कृत या वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू एडिशन पर अगर हम महिलाओं को प्रशिक्षित कर देते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इस पहल से भी वो अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा कर सकती हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हो है या फिर जो बिहार सरकार द्वारा जो संचालित ये योजना के तहत, कृषि सखी योजना के तहत, पहल के तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आए और इस प्रशिक्षण का लाभ लेकर के वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। जो ये सारी योजनाएं मैंने बताई आपको, वो जो इच्छुक महिलाएं हैं अगर इस पर विशेष जानकारी चाहती हैं तो वो ग्राहक सेवा केंद्र जो जिसे हम CSP भी बोलते हैं वहाँ जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय, चाहे वो प्रखंड कृषि कार्यालय हो या जिला कृषि कार्यालय हो, वहाँ जाकर के या फिर खुद ही अपने कहीं इंटरनेट पर वो अगर सक्षम है तो खुद से ही वो इस पे जानकारी ले सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं लाभ लेने हेतु।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों आज के लिए हमारे कृषि कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। उन्नत कृषि

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाए।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में राम किशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई, तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर राम किशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे, ताकि कोई और राम किशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
2: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
3: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है, जो एक कीटाणु से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
2: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
3: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
2: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
3: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
3: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
2: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
3: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
2: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
3: हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए, भले लक्षण हो या ना हो।
2: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
2: और भैया ये इलाज कितना लंबा चलता है?
3: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं। बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
2: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
3: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
2: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, गलत फहमियां ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
2: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
3: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीबी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीबी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
2: भैया कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
3: यह भी गलत है, टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, जवान, बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
2: भैया ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
3: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया, डायबिटीज, यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
2: भैया और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते।
3: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
2: भैया लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
3: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है। जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है।
2: पर भैया कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
3: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें
3: तो मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
2: और भैया टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
3: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
3: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
2: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
3: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीबी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
2: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
3: हाँ उमा बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग्य बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाई जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना सब

0: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: साथियों, आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
5: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही। धन्यवाद।

आवास घर। जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है, इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി.
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
2: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्तदाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है। छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए

0: के नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्राय हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है, जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्त चलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्त चलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
0: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पीठ पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पीठ पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पीठ पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की औसत शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
0: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।

0: जी
1: भुरकाव यंत्रों को हस्त चालित रोटरी या हस्त चालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्त चालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिलकर जमा न हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
0: जी
1: इसीलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
0: जी
1: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया, तो वहाँ पे भी अलग से हम
0: डाल सकते हैं। जी
1: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है।
0: जी
1: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
2: जी तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
1: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
2: यानी समय का बहुत महत्व है,
1: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
2: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं, तो उनपे दवा अच्छे तरीके से
2: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
1: हर एक जगह फैल सकता है उनकी सहायता से।
0: जी
1: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
2: जी,
1: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
2: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
1: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए। ठीक है, और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
2: जी, डब्बे पे भी लिखा हो एक उसमें कॉशन,
1: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
2: जी,
1: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुला में नहीं रखना चाहिए। अगर खुला में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
2: जी,
1: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
2: जाने अनजाने तो में उसको कोई
1: इसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
2: जी।
1: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उसी समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी मुँह से फूंक मार कर इन यंत्रों को
2: ना चलाएं
1: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
2: पड़े, फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
1: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
2: जी। तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी ना सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
1: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें, जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
2: जी,
1: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
2: जी।
1: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
2: जी,
1: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें, और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए। उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें
2: जी।
1: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज्यादा खर्च पड़ेगा
2: जी।
1: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
2: जी।
1: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से पहले भी मैंने बताया था दो तिहाई भाग तक ही भरना चाहिए
2: ताकि प्रेशर बने,
1: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो दो तिहाई से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
2: जी,
1: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
2: जी,
1: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
2: जी।
1: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
2: जी।
1: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं
2: जी।
1: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन तेल ईंधन एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को खराब कर देगा ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
2: बिल्कुल,
1: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
2: जी,
1: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
2: जी,
1: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
2: बंद
1: कर देगा ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
2: जी।
1: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है, इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पे धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है? अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
2: जी।
1: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है? और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
2: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्त चालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
1: किसान भाई आजकल बहुतायत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सके। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
2: जी।
1: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं।
2: जी, तो किसान भाई डक्शव ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
3: उन्नत कृषि,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और खास तौर से महिलाओं को जरूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है। और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है, तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है, तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जैसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं, या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और खास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफी ज्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफी देर से आएंगे, या फिर उस दौरान आपको काफी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं।
और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेजी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जांच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जाँच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पक्षियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की आधा मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति हेतु यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यूं कहें यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, यह भी हम कह सकते हैं।
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में एक झोपड़ी बनाकर किसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हमारे हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि

0: जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए, तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है, मतलब छत और जमीन के बीच का जो जगह होता है, उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। उसके इसके अलावा जिसे हम देखते हैं कि हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है, क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना। लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है, बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती करना है। तो ये इसलिए हमारे युवाओं का रुझान भी मशरूम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसमें आपका जो खेती में हम पैसा लगाते हैं, तो यह कोई ज़रूरी नहीं जितना हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, और वो मिलता भी है तो एक फसल का जो क्रॉप सीजन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलता है। लेकिन मशरूम ऐसा फसल है जिसमें आज हम पूंजी लगाते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीना के अंदर हम यदि हम 100 रुपया लगाए हैं तो वो कम से कम 200 से 250 रुपया हमको एक से डेढ़ महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसमें हम कहते हैं आमदनी हमारा एक से डेढ़ महीने के अंदर आ जाता है, तो यह इसलिए भी हमारे युवाओं का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो पारंपरिक फसल का उत्पादन होता है उसमें खर्च काफ़ी लगता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मशरूम के उत्पादन में खर्च काफ़ी कम लगता है, इसलिए यह एक लाभकारी फसल है। इसके अलावा यह छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसकी खेती के लिए काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा दूसरे फसल से जो उत्पादन के बाद जो कृषि अवशेष बचता है उस कृषि अवशेष का उपयोग करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इस खेती को चूंकि हम कमरे के अंदर करते हैं, इसे पाला, आंधी, तूफान, पशुओं आदि से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके यदि हम इसको बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो इसको निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया ये हो सकता है, क्योंकि हर घर की महिला खेत नहीं जा सकती है, लेकिन यदि घर के पिछवाड़े में ही या घर के किसी कमरा में खेती करना हो तो वो हर की घर की महिला कर सकती है। इसलिए हम महिलाओं के खाली समय का सदुपयोग करके उनको सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से मशरूम ना केवल हमारा एक पोषक आहार है, एक कुपोषण का जरिया है, बल्कि यह कई मायने में हमारे लिए उपयोगी है।
1: जी, तो ये आपने जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए खास है, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर धूप में और जो आंधियों में नहीं रहना पड़ता, यानी हमें भूमि पर नहीं जाना पड़ता है, बस अपने आप कमरे में ही इसे उगा सकते हैं, छोटे से कमरे में छांव में ही आप इसे उगा सकते हैं। और मैम, इसके औषधीय गुण के बारे में हम जानना चाहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग जो है हर चीज़ के औषधीय गुण को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें इससे बचाव के लिए क्या हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेगी, पौष्टिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी, तो इसके पौष्टिक एवं औषधीय गुण के बारे में बताएं।
0: मशरूम जो है वह सभी उम्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट व उत्तम पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण उच्च श्रेणी का माना जाता है, और इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन कहा जाता है। उत्तम प्रोटीन के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का भी उचित अवशोषण होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण दांतों की समस्याओं से दूर करता है। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है, जो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें लौह तत्व की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जो एनीमिया है उस एनीमिया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। इसमें भस्म और रेशे उपलब्ध होने कारण पेट का जो अम्लीयपन होता है या कब्ज होता है उसकी समस्या को यह दूर करता है। नियासिन और पेंटोथेनिक अम्ल जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह चर्म रोग तथा हाथ व पैरों के जलन को समाप्त करने में सहायक होता है। मशरूम में पाया जाने वाला इंगेस्टेरॉल पाचन क्रिया के दौरान विटामिन डी में बदल जाता है। अतः यह हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा भोजन है और हड्डी के हमारे मजबूती के लिए भी अच्छा है। इसमें कम कैलोरी, कम वसा, कम स्टार्च, कम कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक पोटेशियम सोडियम अनुपात के कारण यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जो मोटापे, अधिक तनाव, हृदय रोग एवं मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अतः यह मशरूम न केवल स्वादिष्ट है, न केवल पौष्टिक है, बल्कि औषधीय उपयोगिता और गुणों से भरपूर है।
1: जी,
0: इसे FAO ने एक मशरूम को संपूरक आहार का दर्जा भी दिया है।
1: संपूरक आहार यानी कि इसमें हर वो चीज़ मिलेंगी आपको जो आपके शरीर को जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप जानते हैं कि बिहार का जो जलवायु है आप भी इससे अवगत हैं, तो क्या इसमें हम ये जान सकते हैं कि मशरूम के कौन कौन से प्रजाति हमारे इस बिहार की जलवायु में लगा सकते हैं हम, और ये अच्छा जो फल है वो हमें मिलेगा इसका?
0: मशरूम कैसे बिहार में हम लोग चार तरह की प्रजातियां जो कि लगा सकते हैं, एक बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम और चौथा पुआल मशरूम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है वह बटन मशरूम का होता है, लेकिन बटन मशरूम की तकनीक थोड़ी जटिल है। उसमें हम लोग को कंपोस्ट बनाना होता है और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हम लोग करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट बनाने में छोटी विधि से यदि हम कंपोस्ट बनाए तो लगभग 15 दिन लगता है और लंबी विधि से बनाए तो 1 महीने लगता है। और लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने की जो खुले में प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है और कंपोस्ट उम्दा क्वालिटी का नहीं बनता है। और लेकिन हमारे किसान भाई बना रहे हैं, भागलपुर में भी कई किसान भाई बना रहे हैं। तो आप यदि बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में आप इसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं, और कंपोस्ट बना करके फिर कंपोस्ट को निर्जीवीकृत करके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसको निर्जीवीकृत अखबार से ढक देते हैं। फिर जब उसमें माइसेलियम रन कर जाता है तो फिर उसमें हम लोग केसिंग करते हैं, फिर केसिंग के बाद उसमें फलन आता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो खेती होती है हमारे यहाँ वह है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की तकनीक काफ़ी सुगम है, काफ़ी आसान है, और इसे बहुत कम कीमत पर आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन है कि इसका मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है, इस कारण से क्या कि इसको हम लोग लाइफ बहुत कम है, इसको हम कोई प्रोसेस करके इसको ताज़ा हम नहीं रख सकते। जैसे कि बटन मशरूम को हम हार्वेस्ट के बाद भी 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, उसको हम लोग उसके कुछ रसायन है सोडियम पोटासियम मेटाबोसल्फाइड, उस रसायन के साथ उसको यदि ट्रीट कर दें तो इसको हम लोग 1 सप्ताह तक रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को हम किसी रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वह गलने लगता है। अच्छा। इसका मार्केट नहीं है, लेकिन यदि इसको हम ताज़ा इसका यदि मार्केट उपलब्ध हो, यदि ताज़े रूप में इसका सेवन करें तो यह काफ़ी उपयोगी मशरूम है, काफ़ी पौष्टिक है और इसकी खेती बहुत आसान है। तो हम लोग जो भागलपुर में मुख्यतः इसकी खेती होती है ऑयस्टर मशरूम की होती है, और इसका भागलपुर में इसका लोकल में बाजार उपलब्ध है। जो भी किसान करते हैं उनको यदि पहले सीजन में जो किसान करते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे लोग जान जाते हैं उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। प्लस दूसरा कि इसका उत्पाद बना के रख के ऑफ सीजन में इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी भी तकनीक काफ़ी आसान है, इसके लिए गेहूँ का भूसा या पुआल की कुट्टी को हम लोग मौसम में भंडारित कर लेते हैं, जिस मौसम में उपलब्ध हो सस्ते में, उसके बाद इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत करने की अलग अलग प्रक्रिया है, भाप द्वारा, ताप या फिर रसायन द्वारा निर्जीवीकृत करके इसके नमी की जांच करते हैं। पर्याप्त मात्रा में नमी होने के बाद इसमें हम लोग मशरूम का बीज या स्पॉन्ज से बिजाई करते हैं और इसको पीपी पैक में पन्नी में उसको पैक करके किसी कमरे में झोपड़ी में निर्जीवीकृत झोपड़ी में इसको रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसेलियम पूरी तरह से रन हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है, और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं। फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है। उसके बाद 3 फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए।
1: जी,
0: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गाँव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
1: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑयस्टर मशरूम जो है उसका उत्पादन कर सकते हैं मैम, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
0: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांव में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 केजी जैसे आपका भूसा है तो 1 केजी मशरूम का स्पॉन्ज चाहिए, उस स्पॉन्ज को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन्ज को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शिका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें, कमरे को फिर बंद कर दें और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसिलियम रन कर गया है। तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है, पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है। फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका दुधिया, मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं। दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का, ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पुआल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं
1: जी। तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की विधि क्या हो सकती है और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
0: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें, गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डुबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का सुखौता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं, वो सारा डिश आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इंग्रेडिएंट है वो सारा एसेसरी इंग्रेडिएंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा, मुख्य इंग्रेडिएंट की जगह पे आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकती हैं हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाए।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई और ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90.4।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों एग्जाम्स चल रहे हैं और कल आपके कोर्स AST 1-1 यानी कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है और आपके लिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। आज के रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। ये जो कल का आप लोग का एग्जाम है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये काफी अहम कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि सीड के बाद सीड क्या होता है, सीड के गुणवत्ता का क्या पैरामीटर मीन सीड क्वालिटी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं और सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उससे हम एक नया प्लांट या नया क्रॉप ले पाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स है वो हमारा सीड कहलाता है। इसके अलावा बॉटनिकल डिफिनेशन में हम उसको राइपेन ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होना अति आवश्यक है, जैसे उसमें जो इम्ब्रियो हो, लाइव हो, रिजर्व फूड मटेरियल्स हो जो कि ग्रोइंग सीडलिंग को वो फूड सप्लाई करे, इसके साथ साथ वो जो सीड है वो सराउंडेड प्रोटेक्टेड रहे, उसके जिसको हम कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं, है ना। अब आते हैं कुछ सीड प्रोडक्शन के बारे में कि हम जो है किस बेसिस पे, किस आधार पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडली जो है दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं और एक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। जेनेटिक प्रिंसिपल्स से हमारा तात्पर्य ये है कि जो वेराइटल डिटोरेशन जेनेटिक लेवल पे होता है उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक कंटामिनेशन ना हो। तो मीन्स जो भी जेनेटिक कंटामिनेशन होगा उससे डिटोरिएट वेराइटी हमारा जेनेटिकली डिटोरिएट करेगा, तो वैसे फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि होता है डेवलपमेंटल वेरिएशन। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो आइडियल लोकेशन है उसी लोकेशन में सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीड प्रोडक्शन करने से जो फेवरेबल प्लेस या क्लाइमेट नहीं है, इवन सॉइल फर्टिलिटी में भी वेरिएशन होने के कारण उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है मैकेनिकल मिक्सचर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये हम ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के टाइम में एंड प्लस सोइंग के टाइम पे किसी भी तरह का दूसरे वैरायटी का मिक्सचर उसमें सीड में ना हुआ हो, नहीं तो सीड पर्टिकुलरली जो है जब हम सीड सोइंग करते हैं उसमें जो है सीड ड्रिल के थ्रू दूसरे वैरायटी का सीड के साथ वहां पे सोइंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल पे हम क्लीन कर लें सीड ड्रिल को, देन हम सोइंग करें।

0: और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारा उसके कारण जो है हमारा आउटक्रॉसिंग होता है, नेचुरल आउटक्रॉसिंग है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके साथ ही कई सारे एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कि सुटेबल लैंड को सेलेक्ट करना, सही टाइम पे सोइंग करना, लाइन सोइंग करेंगे हम टाइमली, हम जो भी एग्रोनॉमिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जैसे वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सब एडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ सोइंग के समय में हम सीड को प्रॉपरली ट्रीट भी कर लें, ताकि किसी भी तरह का सीड बॉर्न डिजीज उसके साथ ना रहे, क्योंकि यदि डिजीज हमारा इन्फेक्टेड रहेगा तो लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड करेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, इसको हम जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन के रूप में करते हैं। इसका कारण ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है यहाँ पे, एक तो हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है और दूसरा चीज लार्ज स्केल पे सीड को प्रोडक्शन भी करना है। तो इसके लिए हम जो है जनरेशन सिस्टम में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस से हम लोग ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाते हैं एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनाते हैं। जो न्यूक्लियस एंड फाउंडेशन, न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड है, इसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय अपने स्तर पे या ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के, वो अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं। और जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड है, उसका प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में होता है। इसके अलावा एक अलग कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं। ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी है वो अपने से इन चीजों को क्वालिटी इंश्योर करती है। जितने भी मार्केट में अभी हाइब्रिड आ रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनी जो भी हाइब्रिड सेल कर रहे हैं, मोस्टली आपका धान का या मक्का का हो गया, या इसके अलावा कुछ वेजिटेबल सीड भी जो है, वो सभी हाइब्रिड जो है एज ए मेजर, मतलब मेजर क्लास ऑफ सीड जो है वो TL सीड के रूप में ही बाजार में सेल होता है। तो ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है। और डिटेल में फिर हम जाएंगे कि अलग अलग क्रॉप का सीड प्रोडक्शन। तो जैसे कि इस क्रॉप में हमें पैडी का जानना है, मेजर क्रॉप को पैडी का जानना है, मेज का जानना है, लेंटिल का जानना है, मूंग का जानना है, और इनके बारे में सब चीज आप लोग जो है एक बार जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीजों को कर लेना है। और सभी क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में समझना है। क्योंकि आइसोलेशन जो भी हम अडॉप्ट करते हैं उसका मेन उद्देश्य है आउटक्रॉसिंग को रोकना, क्योंकि यही मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण कि फील्ड लेवल पे जेनेटिक कंटामिनेशन होता है। जैसे कि पैडी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का 3 मीटर होता है, बट वहीं हम जब देखते हैं कि कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड, क्योंकि पैडी हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखते हैं तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है, है ना। तो इसका मेन कारण ये है कि चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो पॉलेंस है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो दूसरे जगह पे, दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे नहीं जा पाते हैं, या तो वो ड्यू टू नेचर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं, मेनली जो है फ्लावर्स के नेचर के बेसिस पे ही है, है ना। जैसे कि राइस के केस में जो है वो क्लिस्टोगेमस नेचर ऑफ फ्लावर्स होता है, जब मेज में हम देखें वहां पे ओपन पॉलिनेटेड है, विंड के थ्रू पॉलन जो है काफी दूर तक जाता है, इसलिए हम मेज के केस में आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर हम रखते हैं। तो यहाँ पे यदि ये जो आइसोलेशन है 400 मीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो लैंड यदि हम वैकेट रखें आइसोलेशन के लिए, फिजिकल आइसोलेशन करें या जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसका के कारण हम जो हमारा काफी लैंड वेस्ट हो जाता है। तो कई सारे मेथड्स भी हैं, पर्टिकुलरली मेज के केस में हम आइसोलेशन डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर रो का प्लांटिंग करके। जो बॉर्डर रो होता है वहां पे हम मेल लाइन को ग्रो करते हैं, और वहां पे 2 to 3 मेल लाइन को हम सराउंडिंग में कर देते हैं। यदि और बाहर से किसी भी दूसरे प्लॉट से कोई भी पॉलन आता है या कंटामिनेट होने की कोशिश करता है, वो मेल लाइन से कंटामिनेट हो जाएगा, वो फिल्टर्ड कर लेता है, और जो हमारा जो फीमेल लाइन है प्लॉट में, सीड प्रोडक्शन प्लॉट में, वो हमारा सेफ रह जाता है, तो वहां तक जेनेटिक कंटामिनेशन का असर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब हम सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो सीड प्रोडक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि सीड को हार्वेस्ट कब करना है। हार्वेस्टिंग के समय भी हमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मली जो सीड मेच्योर हो जाता है वो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी स्टेज कहते हैं, कि उस समय तक जो है जितना ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन होना होता है सीड में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बट उस स्टेज पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि जो है वहाँ उस लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होता है। तो इसलिए हम लोग जो हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी जो पे हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी पे सीड का मॉइस्चर कंटेंट नियर अबाउट 16% के आसपास आ जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग करके उसके बाद हम जिसको हम कि रॉ सीड के रूप में बोलते हैं, रॉ सीड के रूप में हम उसको रखते हैं। फिर इस रॉ सीड को हम फर्दर जो है उसका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कई सारे जो है हमारे मशीन होते हैं, जो सबसे पहला मशीन होता है उसको कहते हैं प्री क्लीनर, नेक्स्ट मशीन जो है वो कहते हैं क्लीनर, एंड थर्ड मशीन होता है हमारे पास ग्रेडर्स। तो ग्रेडर्स में कई तरह के ग्रेडर्स मशीन होते हैं, और ये ग्रेडर डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है। यदि लॉन्ग ग्रेन सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी का सीड है, तो वहाँ इंडेंटेड सिलिंड्रिकल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। इसमें कट ग्रेन जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। और यदि हमारा राउंड सीडेड है तो स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। और इन जनरल यदि कोई भी क्रॉप है जो कि उसके लिए कॉमन ग्रेडर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मशीन होता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट का। इसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीड को कई ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं। और इसमें जो है मोस्टली जो है 1, 2, 3 और 4 ग्रेड का होता है। उसमें 1 ग्रेड एंड काफी बेस्ट क्वालिटी होता है, एंड 2 ग्रेड्स भी कह सकते हैं कि सीड का अच्छा क्वालिटी होता है। 3rd और 4th जो है उसका सीड का डेंसिटी या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो उसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। अब ग्रेडिंग के बात आती है उसका कि क्या जो सीड है उसको हम पर्टिकुलरली सेफ रखने के लिए, क्योंकि हम जब सीड को प्रोसेस करते होते तो इमीडिएटली जो है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखना है। तो यहाँ पे भी फर्दर हमें एक बार मॉइस्चर चेक कर लेना है कि मॉइस्चर प्रॉपर एज पर जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉइस्चर हमें उसको सेफ लेवल पे करेंगे, फिर सीड को ट्रीटमेंट करते हुए पैकेजिंग करेंगे। और जब भी सीड को हमें बेचा जाता है, बेचना होता है, तो प्रॉपर लेबलिंग के बेचना होता है। जो सीड एक्ट 1966 है उसमें ये कंपलसरी है कि जब पैकेजिंग के विदाउट मीन्स लूज में, लूज कंटेनर में हम सीड को नहीं बेच सकते हैं। जब भी होगा सीड पैकेजिंग करके ही होगा और उस पर प्रॉपर लेबल होगा। और तो मेजर इस कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, कल जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की,
अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। तो अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए।

लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिएं। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों एग्जाम्स चल रहे हैं और कल आपके कोर्स AST 1-1 यानी कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है और आपके लिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। आज के रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। ये जो कल का आप लोग का एग्जाम है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये काफी अहम कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि सीड के बाहर सीड क्या होता है, सीड के गुणवत्ता का क्या पैरामीटर मीन सीड क्वालिटी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं और सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उससे हम एक नया प्लांट या नया क्रॉप ले पाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स है वो हमारा सीड कहलाता है। इसके अलावे बॉटनिकल डिफिनेशन में हम उसको राइपेन ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होना अति आवश्यक है, जैसे उसमें जो इम्ब्रियो हो लाइव हो, रिजर्व फूड मटेरियल्स हो जो कि ग्रोइंग सीडलिंग को वो फूड सप्लाई करे, इसके साथ साथ वो जो सीड है वो सराउंडेड प्रोटेक्टेड रहे, उसके जिसको हम कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं, है ना। अब आते हैं कुछ सीड प्रोडक्शन के बारे में कि हम जो है किस बेसिस पे, किस आधार पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडली जो है दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं और एक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। जेनेटिक प्रिंसिपल से हमारा तात्पर्य ये है कि जो वेराइटल डिटोरेशन जेनेटिक लेवल पे होता है उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक कंटामिनेशन ना हो। तो मीन्स जो भी जेनेटिक कंटामिनेशन होगा उससे डिटोरिएट वेराइटी हमारा जेनेटिकली डिटोरिएट करेगा, तो वैसे फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि होता है डेवलपमेंटल वेरिएशन। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो आइडियल लोकेशन है उसी लोकेशन में सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीड प्रोडक्शन करने से जो फेवरेबल प्लेस या क्लाइमेट नहीं है, इवन सॉइल फर्टिलिटी में भी वेरिएशन होने के कारण उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है मैकेनिकल मिक्सचर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये हम ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के टाइम में एंड प्लस सोइंग के टाइम पे किसी भी तरह का दूसरे वैरायटी का मिक्सचर उसमें सीड में ना हुआ हो, नहीं तो सीड पर्टिकुलरली जो है जब हम सीड सोइंग करते हैं उसमें जो है सीड ड्रिल के थ्रू दूसरे वैरायटी का सीड के साथ वहां पे सोइंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल पे हम क्लीन कर लें सीड ड्रिल को, देन हम सोइंग करें। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारा उसके कारण जो है हमारा आउटक्रॉसिंग होता है, नेचुरल आउटक्रॉसिंग है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके साथ ही कई सारे एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कि सुटेबल लैंड को सिलेक्ट करना, सही टाइम पे सोइंग करना, लाइन सोइंग करेंगे हम टाइमली, हम जो भी एग्रोनॉमिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जैसे वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सब अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ सोइंग के समय में हम सीड को प्रॉपरली ट्रीट भी कर लें ताकि किसी भी तरह का सीड बॉर्न डिजीज उसके साथ ना रहे, क्योंकि यदि डिजीज हमारा इन्फेक्टेड रहेगा तो लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड करेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन के रूप में करते हैं। इसका कारण ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है यहाँ पे, एक तो हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है और दूसरा चीज लार्ज स्केल पे सीड को प्रोडक्शन भी करना है। तो इसके लिए हम जो है जनरेशन सिस्टम में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस से हम लोग ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाते हैं एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनाते हैं। जो न्यूक्लियस एंड फाउंडेशन, न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड है, इसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय अपने स्तर पे या ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के वो अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड है उसका प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में होता है। इसके अलावे एक अलग कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं, ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन है जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी है वो अपने से इन चीजों को क्वालिटी इंश्योर करती है। जितने भी मार्केट में अभी हाइब्रिड आ रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनी जो भी हाइब्रिड सेल कर रहे हैं, मोस्टली आपका धान का या मक्का का हो गया, या इसके अलावे कुछ वेजिटेबल सीड भी जो है वो सभी हाइब्रिड जो है एज ए मेजर मतलब मेजर क्लास ऑफ सीड जो है वो TL सीड के रूप में ही बाजार में सेल होता है। तो ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, और डिटेल में फिर हम जाएंगे कि अलग अलग क्रॉप का सीड प्रोडक्शन। तो जैसे कि इस क्रॉप में हमें पैडी का जानना है, मेजर क्रॉप को पैडी का जानना है, मेज का जानना है, लेंटिल का जानना है, मूंग का जानना है, और इनके बारे में सब चीज आप लोग जो है एक बार जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीजों को कर लेना है। और सभी क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में समझना है। क्योंकि आइसोलेशन जो भी हम अडॉप्ट करते हैं उसका मेन उद्देश्य है आउटक्रॉसिंग को रोकना, क्योंकि यही मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण कि फील्ड लेवल पे जेनेटिक कंटामिनेशन होता है। जैसे कि पैडी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का 3 मीटर होता है, बट वहीं हम जब देखते हैं कि कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड, क्योंकि पैडी हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखते हैं तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है, है ना। तो इसका मेन कारण ये है कि चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो पॉलेंस है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो दूसरे जगह पे दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे नहीं जा पाते हैं, या तो वो ड्यू टू नेचर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं, मेनली जो है फ्लावर्स के नेचर के बेसिस पे ही है, है ना। जैसे कि राइस के केस में जो है वो क्लिस्टोगैमस नेचर ऑफ फ्लावर होता है, जब मेज में हम देखें वहां पे ओपन पॉलिनेटेड है, विंड के थ्रू पॉलन जो है काफी दूर तक जाता है, इसलिए हम मेज के केस में आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर हम रखते हैं। तो यहाँ पे यदि ये जो आइसोलेशन है 400 मीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो लैंड यदि हम वैकेट रखें आइसोलेशन के लिए, फिजिकल आइसोलेशन करें या जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसका के कारण हम जो हमारा काफी लैंड वेस्ट हो जाता है। तो कई सारे मेथड्स भी हैं, पर्टिकुलरली मेज के केस में हम आइसोलेशन डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर रो का प्लांटिंग करके। जो बॉर्डर रो होता है वहां पे हम मेल लाइन को ग्रो करते हैं और वहां पे 2 to 3 मेल लाइन को हम सराउंडिंग में कर देते हैं। यदि और बाहर से किसी भी दूसरे प्लॉट से कोई भी पॉलन आता है या कंटामिनेट होने की कोशिश करता है, वो मेल लाइन से कंटामिनेट हो जाएगा, वो फिल्टर कर लेता है और जो हमारा जो फीमेल लाइन है प्लॉट में, सीड प्रोडक्शन प्लॉट में, वो हमारा सेफ रह जाता है, तो वहां तक जेनेटिक कंटामिनेशन का असर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब हम सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सीड प्रोडक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि सीड को हार्वेस्ट कब करना है। हार्वेस्टिंग के समय भी हमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मली जो सीड मैच्योर हो जाता है वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, कि उस समय तक जो है जितना ड्राई मैटर एक्युमुलेशन होना होता है सीड में वो एक्युमुलेट हो जाता है, बट उस स्टेज पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि जो है वहाँ उस लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होता है। तो इसलिए हम लोग जो हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी जो पे हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी पे सीड का मॉइस्चर कंटेंट नियर अबाउट 16% के आसपास आ जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग करके उसके बाद हम जिसको हम कि रॉ सीड के रूप में बोलते हैं, रॉ सीड के रूप में हम उसको रखते हैं, फिर इस रॉ सीड को हम फर्दर जो है उसका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कई सारे जो है हमारे मशीन होते हैं, जो सबसे पहला मशीन होता है उसको कहते हैं प्री क्लीनर, नेक्स्ट मशीन जो है वो कहते हैं क्लीनर, एंड थर्ड मशीन होता है हमारे पास ग्रेडर्स। तो ग्रेडर्स में कई तरह के ग्रेडर्स मशीन होते हैं और ये ग्रेडर डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है। यदि लॉन्ग ग्रेन सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी का सीड है, तो वहाँ इंडेंटेड सिलिंड्रिकल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है, इसमें कट ग्रेन जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। और यदि हमारा राउंड सीडेड है तो स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। और इन जनरल यदि कोई भी क्रॉप है जो कि उसके लिए कॉमन ग्रेडर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मशीन होता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट का। इसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीड को कई ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो है मोस्टली जो है 1, 2, 3 and 4 ग्रेड का होता है। उसमें 1 ग्रेड एंड काफी बेस्ट क्वालिटी होता है, एंड 2 ग्रेड्स भी कह सकते हैं कि सीड का अच्छा क्वालिटी होता है, 3rd and 4th जो है उसका सीड का डेंसिटी या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो उसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। अब ग्रेडिंग के बात आती है उसका कि क्या जो सीड है उसको हम पर्टिकुलरली सेफ रखने के लिए, क्योंकि हम जब सीड को प्रोसेस करते हैं तो इमीडिएटली जो है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखना है। तो यहाँ पे भी फर्दर हमें एक बार मॉइस्चर चेक कर लेना है कि मॉइस्चर प्रॉपर एज पर जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉइस्चर हमें उसको सेफ लेवल पे करेंगे, फिर सीड को ट्रीटमेंट करते हुए पैकेजिंग करेंगे। और जब भी सीड को हमें बेचा जाता है, बेचना होता है, तो प्रॉपर लेबलिंग के बेचना होता है। जो सीड एक्ट 1966 है उसमें ये कंपलसरी है कि जब पैकेजिंग के विदाउट मीन्स लूज में, लूज कंटेनर में हम सीड को नहीं बेच सकते हैं। जब भी होगा सीड पैकेजिंग करके ही होगा और उसमें प्रॉपर लेबल होगा, और तो मेजर इस कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, कल जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी जी जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: जी बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं विमलेश जी।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे पहले ये प्रयास करें कि अपने बुजुर्गों और परिवार के उन प्रियजनों से मिलें जिनसे हमारी मुलाकात कम होती है। और हाँ, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अब तो सचमुच को समय के लिए पढ़ाई से छुट्टी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपकी छुट्टियों का समय एक बहुत अच्छा अवसर है अपने पढ़े हुए पाठ को दोहराने का। रोज थोड़ा समय पढ़ाई के लिए जरूर रखें, क्योंकि इससे आप जब भी स्कूल जाएंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे।
3: लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं? ये तो फिर से पढ़नी ही होंगी।
2: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ें। जैसे पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी मदद करती हैं। और हाँ, आप राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी लाभ उठा सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा रोचक साहित्य का भंडार।
3: और हाँ, आपको एक विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल पर जाएं और आपको वहाँ NCERT के पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगी। NCERT के ऑडियो बुक्स और वीडियो कार्यक्रम दीक्षा पर भी सुने और देखे जा सकते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें, सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी के पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। अक्सर होता ये है कि बच्चे अपनी पुस्तकों या कमरे को व्यवस्थित नहीं रख पाते। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: जी बहुत अच्छे, एक और बात तो छूटी गई। गर्मियों की छुट्टियों में देश भर में समर कैंप चलाए जाते हैं। इन दिनों बच्चे किसी भी समर कैंप में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कहानी लिखना, डायरी लिखना और हाँ, कविता लिखना इत्यादि। इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में वे कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, छुट्टियों की शुरुआत में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से मिलने का थोड़ा समय तो आपने जरूर निकाला होगा, जैसा हमने कहा था। अब जब छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं तो एक बार फिर से उनसे मुलाकात करने, क्योंकि
2: स्कूल खुलते ही बच्चे फिर से व्यस्त हो जाएंगे। तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो श्रोताओ, हमारा प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
4: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ।

0: पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। खाता के दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: खातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह,
4: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
5: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
4: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे।

0: धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962, जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सूबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सूबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: हैं साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह उठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल

का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. दोस्तों, अगर हम औषधीय पौधों की बात करें और पुराने समय की बात करें, तो उस समय वैद्य जी, जी हाँ, अभी जो डॉक्टर हैं उस समय वैद्य जी हुआ करते थे, और हमारा जो इलाज है वो जड़ी बूटियों से किया करते थे. और आज वही औषधीय पौधों के बारे में हम बात करेंगे. जी हाँ, पहले ज़माने में से जड़ी बूटी कहा जाता था, लेकिन आज हम उसे औषधीय पौधे भी कह सकते हैं, और जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमारे शरीर को, और बहुत सारे रोग दूर किए जा सकते हैं. तो आज खेती के बारे में जानेंगे, इसके औषधीय पौधों की खेती ग्रामीण युवाओं के लिए कैसे एक रोजगार का जरिया बनता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. क्योंकि इस अगर बात करें औषधीय पौधों की खेती के बारे में, तो जब से ये कोविड काल आया है तब से भी इसकी जो है खेती में लोग दिलचस्पी लगाने लगे हैं, क्योंकि इसकी मांग जो है बाज़ार में बढ़ने लग गई है. तो आज पूरी जानकारी इस पर देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर आर डी रंजन. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो बात करते हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में. तो क्या हमारे किसान भाई इसकी खेती हमारे बिहार में कर सकते हैं, और उनके उत्पादित फसल का उपयोग किन किन काम में वो कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल. मेरे प्यारे किसान भाइयों, और जैसा कि सभी जानते हैं कि हम बिहार में ये औषधीय पौधे की खेती की जा सकती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसकी अर्थव्यवस्था का कृषि मेरुदंड के समान है. बिहार प्रदेश की जलवायु तथा मिट्टी में पारंपरिक खेती के अलावा सफलतापूर्वक औषधीय एवं सुगंध पौधे की भी खेती की जा सकती है, जो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है. औषधीय एवं सुगंध पौधों में प्रमुख सतावर, कालमेघ, सनाय, मुश्कदाना, सर्पगंधा, अश्वगंधा, पुदीना, लेमन ग्रास, सिट्रेला, तुलसी आदि प्रमुख हैं. इन औषधीय पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाया जा सकता है. जैसा कि अश्वगंधा के जड़ पत्तियों का उपयोग किया जाता है, कालमेघ का पूरा पौधा यूज करते हैं, तुलसी की पत्तियां यूज करते हैं, और जो कि इसमें औषधीय गुण होते हैं. इन औषधीय पौधे का महत्व मनुष्य जाति के लिए और भी बढ़ गया है, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण एवं संश्लेषित रसायनों के उपयोग से मानव अनेक प्रकार के असाध्य रोगों एवं विकृतियां हो रही हैं, जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है. और मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी विगत वर्तमान में जो हमारे विश्व पर जो एक कोरोना नाम का जो अभिशाप था, उसे मुक्त पाने के लिए हमारा औषधीय पौधा का सहारा लिया गया. इसलिए इसकी महत्ता और ज्यादा है. औषधीय पौधों को दवाई के रूप में तैयार कर विभिन्न लोगों के इलाज हेतु प्रयोग किया जाता है. इन पौधों से प्राप्त तेल से विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पान मसाला, दंत भंजन आदि को उपयोग में किया जाता है, जो कि किसान के लिए आर्थिक लाभकारी है.
0: जी जी, तो ये हो गई खेती की बात, और किन किन फील्ड में से उपयोग किया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए. लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर साहब रोजगार सृजन की दिशा में, तो क्या ये औषधीय पौधे की खेती करना किसान भाइयों के लिए एक रोजगार सृजन का अवसर बन सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग पहले जानते थे कि औषधीय और सुगंधित पौधों का काफ़ी महत्व है, लेकिन विगत वर्षों में इसकी महत्व और बढ़ गई है. जो हमारा जो विश्व जो कोरोना नाम, जो कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोना के बीमारी से जूझ रहा है, उसमें हमारा औषधीय एवं सुगंधित पौधे से काफ़ी अच्छा इलाज करने में मदद मिला है. और अभी के वर्तमान समय में युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के सहित आत्मनिर्भरता एवं आमदनी का एक सशक्त ये जरिया है. प्रदेश के अधिकतर किसान सिर्फ जागरूकता के अभाव में व्यावसायिक खेती एवं उसके मार्केटिंग से अनभिज्ञ हैं.
0: जी,
1: किसानों के आर्थिक स्थिति को व्यावसायिक खेती से जोड़कर उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है. सरकार के स्तर पर समूह बनाकर तकनीकी आधारित खेती पर सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की जानकारी के माध्यम से युवाओं को औषधीय पौधों की खेती की ओर प्रेरित किया जा सकता है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है. बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधे की खेती, आधारभूत संरचना के विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बाजार व्यवस्था आदि से संबंधित योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत फसल के विविधीकरण द्वारा राज्य के किसानों, ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को आय के अधिक आय का स्रोत उपलब्ध कराना है। इस हेतु गुणवत्ता पूर्वक रोपण सामग्री के व्यवहार कर देसी चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले निर्यात योग्य अत्यधिक मांग वाले औषधीय पादप का समूह में खेती करना, आधारभूत संरचना विकास करने में प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं उत्पादों को बाजार में व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान करना है। कृषिकरण की इस परियोजना में वैसी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है जिसकी बाजार सुनिश्चित हो।
0: जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि औषधीय पौधे की खेती करने पर किसान भाइयों को लागत फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत अनुदान राशि सहायता अर्थ मिल सकता है?
1: जी, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। औषधीय पादप के सर्वांगीण विकास हेतु प्राप्त सहायता अनुदान बिहार सरकार के द्वारा निम्न है, जैसा कि घृत कुमारी या काल मेघ या तुलसी या आंवला, स्टीविया, सतावर, ब्राह्मणी, सफ़ेद मुसली, पिंपली, अश्वगंधा, तेजपत्ता, इस औषधीय पौधों को लगाने पर जो सहायता राशि जो सरकार के द्वारा मिलती है वो 20% है। इसके अलावा बेल, सर्पगंधा, चित्रक, कलियाहारी, इस पर 50% की सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा गूगल हैं जिस पर कि 75% सहायता अनुदान दिया जाता है। आधारभूत संरचना विकास करने हेतु सहायता अनुदान इस प्रकार हैं, जैसे कि हम नर्सरी का अगर विकास करना हो, मान लीजिए किसी औषधीय पौधे के नर्सरी का विकास करना है, तो उस पर जो सहायता अनुदान दिया जाता है वो 50% है। या इसके अलावा अगर आप औषधीय पौधों को सुखाने हेतु एक सेट का निर्माण करना है, उस पर सरकार 50% से 100% का सहायता अनुदान देती है। इसके अलावा भंडारण के लिए 50% से 100%, प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होती 25%, या प्रयोगशाला अगर बनाना है तो उस पर सरकार 30% का अनुदान देती है, या फसल बीमा जो इंश्योरेंस होती है क्रॉप इंश्योरेंस, उसके लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। आयुर्वेद के महत्व को पहचानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान को खाली पड़े जमीन का इस्तेमाल औषधीय पौधों की खेती के लिए करना चाहिए। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की असीम संभावना है। अतः किसान बंधुओं से ये मेरी गुजारिश है कि वो औषधीय पौधे को लगाकर अपने आर्थिक स्थिति को और अधिक ये बना सकते हैं।
0: जी, बिहार की बात कर तो बिहार में कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है और इससे कितना किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है?
1: जी, हमारे पास बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, लेकिन जो प्रमुख है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि इस औषधीय पौधों को अगर किसान भाई लगाते हैं तो उन्हें अच्छे आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से युक्त होने के साथ साथ सुगंधित तेलों के लिए उपयुक्त स्रोत होता है। तुलसी में जो हमें है मुख्यतः पत्तियां या बीज को हम उसे प्रमुख यूज में करते हैं। यह पौधा तिरु सुगंध युक्त 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। तुलसी की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु में की जा सकती है, परंतु इसकी खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है जिसका पीएच का मान 5 से 8.5 के मध्य हो एवं जल धारण की क्षमता अधिक हो। इसकी बुआई बीजों के द्वारा की जाती है। बीजों को पौधशाले में तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर में 600 से 800 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बीजों की बुआई के लिए लगभग 30 दिनों के बाद पौधशाला से पौधों को उखाड़ कर मुख्य खेत में 60x30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। इसके 1 हेक्टेयर में लगभग 10 क्विंटल हरी पत्तियां प्राप्त होती है, जिससे आवशन विधि द्वारा 80 से 90 लीटर तेल प्राप्त होता है। इसके तेल में मिथाइल जेविकोल, मिथाइल सिग्नमेट, यूजिनॉल इत्यादि केमिकल होते हैं जो काफ़ी लाभकारी हैं। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी का पौधा कीटनाशक, कीट प्रतिकारक एवं जीवाणुनाशक होता है। तुलसी की खेती जिन किसानों को करते हैं तो उन्हें 30,000 से 35,000 रुपए की प्रति हेक्टेयर का आय प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो औषधीय प्रमुख औषधीय पौधा है वो लेमन ग्रास है। यह पूर्वी भारतीय नींबू घास के नाम से जाना जाता है। यह नींबू इसके पत्ती के द्वारा आश्वन के द्वारा इससे तेल हम प्राप्त करते हैं। इसके तेल का मुख्य घटक सिट्रॉल होता है। इसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन एवं साबुन बनाने में किया जा सकता है। नींबू घास के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु उत्तम रहती है। इसका प्रबंधन शिल्प द्वारा किया जाता है। सिंचाई की सुविधा रहने पर इसे फरवरी मार्च में अथवा वर्षा ऋतु में रोपण उचित होता है। रोपाई के 90 से 100 दिनों के बाद प्रथम कटाई करते हैं। इसकी उपज क्षमता 175 से 225 किलोग्राम तेल प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। और किसान भाइयों, इसे हम 60,000 से 75,000 रुपये का लाभ प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख औषधीय पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में सभी लोग जानते हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय औषधीय पौधा है। इसकी खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसकी जड़ें मूली के समान या मूली जैसी पतली एवं हल्के पीले रंग की होती है। इसके पत्ते एवं जड़ के मसलन पर अश्वमूत्र के समान गंध आती है। अश्वगंधा की जड़ों में एक उड़नशील तेल एवं विथेनियोल, निकोटीन आदि एल्कोएट्स पाए जाते हैं। इसके औषधीय उपयोग अनेक प्रकार के रोग में किया जाता है। यह शक्तिवर्धक, गठिया, मूत्र रोग, प्रसव काल में प्रयुक्त औषधि के रूप में काम आता है। इसकी बुआई बीज के द्वारा की जाती है। इसे अगस्त माह में लगाया जाता है एवं पंक्ति और पौधे के बीच की दूरी 20 से 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसकी खेती में रासायनिक खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और किसान भाइयों, इसे लगाने पर करीब 60,000 से 90,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक हमारा प्रमुख औषधीय पौधा है, वो काल मेघ है। काल मेघ एक अति गुणकारी औषधीय पौधा है। इसमें एक प्रकार का क्षारीय तत्व एंड्रोग्राफिलिड या न्यूड्राग्राफिलिड एवं काल मेघ ग्रीन पाया जाता है, जो स्वाद में तीव्र होता है, काफ़ी तीखा होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग वरण नाशक, जॉन्डिस, पेचिस, सर दर्द, कृमिनाशक, रस शोधक आदि में किया जा सकता है। इसकी नर्सरी मई से जून में लगाया जाता है और खेतों के लिए छायादार स्थान उपयुक्त होता है। इसकी कटाई फूल आने पर अगस्त से नवंबर के माह में करते हैं। पौधे की कटाई फरवरी मार्च में करते हैं। और किसान भाइयों, इससे हम 45,000 से 60,000 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रमुख औषधीय पौधा है शतावर। यह बहुवर्षीय आरोही लता युक्त कंद वाला औषधीय पादप है। इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। यह बलवर्धक, दुग्धवर्धक, पौष्टिक एवं से गुणों से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से गुणकारी औषधि तथा खाद्य पदार्थों का निर्माण में भी किया जाता है, जैसे सतावर घी, सतावर चूर्ण, च्यवनप्राश, महलम आदि में के बनाने में उपयोग किया जाता है। यह सभी प्रकार की मिट्टी पर उगाया जाता है, परंतु अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए बलुई मिट्टी में इसे लगाना चाहिए। इसके खेती प्रति हेक्टेयर से 10 से 15 क्विंटल सूखी जड़े प्राप्त होता है और जिसका मूल्य बाजार में 90,000 से 1,20,000 रुपये तक होता है, तथा इससे 60,000 से 90,000 रुपया शुद्ध लाभ किसानों को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की आय होती है। सनाई एक दूसरा औषधीय पौधा है, जो शुष्क जलवायु में उगाए जाने वाला एक झाड़ीदार औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियां एवं फली में दस्तकारक सेनोसाइड होते हैं। पत्तियों का सामान्यतः प्राकृतिक दस्तवार के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यह फसल के प्रकार के मिट्टियों में उगाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से इसे दोमट या लाल मटियार भूमि पर लगाना उचित होता है। इसके फसल से प्रति हेक्टेयर 38,000 से 56,000 रुपये की आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर्पगंधा एक प्रमुख औषधीय बहुवर्षीय पौधा है। इसके जड़ों में 50 प्रकार के एल्कोएट्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग मानसिक रोग एवं तनाव, रक्तचाप, हृदय रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग, अनिद्रा, विषनाशक आदि रोगों के औषधि निर्माण में किया जाता है। इसकी खेती नम एवं छायादार स्थानों में अनवृक्ष के साथ की जाती है। बलुई मिट्टी में जड़ों के विकास में सहायता देती है। इसकी उपज क्षमता 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिससे किसान भाइयों आप 55,000 से 60,000 रुपया की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: जी, तो ये थे कुछ बातें औषधीय पौधे की खेती से जुड़ी और कैसे एक रोजगार का आप सृजन कर सकते हैं इस खेती को अपनाकर। इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, क्या क्या मुनाफा होगा, कैसे मुनाफा होगा, आप कौन सी औषधीय पौधे की खेती कर सकते हैं बिहार में, सारी जानकारी मिली आपको। आशा करते हैं किसान भाइयों की इस वार्ता से आप लाभान्वित होंगे और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में

0: बाप का जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूं, लेकिन मेरी बच छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बछिया आपकी बेटी की उम्र की है, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
1: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
0: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
2: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे?
0: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
1: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
2: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
2: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
0: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
2: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
2: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
1: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
2: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों, बाद में ले लेंगे।
0: पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है। और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत? यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
1: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा। अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया। यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
0: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा। अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं? कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
1: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है, बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
2: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुनकर होगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
1: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात। अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
2: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है, उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
2: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी, तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
1: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओ, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है, तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए। अब मैं समझ रही हूं कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है। और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
1: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
2: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
0: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
1: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
2: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
0: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ गई, सच में घर तक पहुंचेगा।
1: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले बस घबरा जाती थी। यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर

0: भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए, और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
0: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
3: और यही एक बड़ी सीख है।
0: सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं, हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है, देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है, सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करें?
1: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
1: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, एएनएम या डॉक्टर से पूछें कि एचपीवी वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
1: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है? अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दो, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा एएनएम से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चार, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। पांच, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छह, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सात, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिक कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% और दोपहर में 30-40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13-17 मई के दौरान 10-16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित

आन पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहां तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी खास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दी.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है. और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की, उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुलगैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में, ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. अब बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है, पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसकी सफाई करते हैं. अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं.

0: और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं। बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए और फिर पानी में, जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग, उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो। जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर दो लाइन, एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतराल होना चाहिए और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं। दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को, तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के, जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलिथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलिथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है और फिर हम लोग को जहाँ भी उसके उसे लगाना है उसको हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कल्म सबसे उपयुक्त होता है। यदि कल्म अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का, उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो। और प्रकंदों को हम लोग एक आद्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कल्म के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़े और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहां हम लोग को लगाना है वहां पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियां जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
1: जी। इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग है सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन भारत और जापान में और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है थिया बेडाजोल है इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट जो कि भारत चीन कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं जो कि जो ये एफिड्स है वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रू ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण काले रंग का चूर्ण आ गया है और ये भी डंठ जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों के ऊपरी सतह से नीचे निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएँ होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है जो कैनोपी है पौधे की उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले कहीं भी उनको छाया ना हो क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है, तो इस वजह से जैसा पहले भी हम लोगों ने हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है, जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी और बहुत सारे कृषि यंत्र, और अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का, आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है, जो जो कास्ट है, जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स, कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है, और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदावार के साथ साथ उचित किस्मों, जो उचित किस्म है बांस की, उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को, विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी, मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है। किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

और जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नहीं जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಋಷಿ. किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण. और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशु पालन करते हैं, पशु पालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है. और इस वजह से काफी परेशानियां भी होती हैं पशुओं को भी और पशु पालकों को भी. और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं. और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है.
1: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है. जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो यदि पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है. लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है. उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है. रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है. ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है. इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है. ये एक टीका हुआ. और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं. हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है.
0: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है. और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है. और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है. तो ये बात हो गई टीका के बारे में. और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है. अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है.
1: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है.
0: जी जी.
1: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं. पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है. यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है. तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं. और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में विदिन वीक, एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं. इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है. और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है. टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें.
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है. तो किसान भाइयों और हमारे पशु पालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका. उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही. तो आप एक शेड्यूल बना लें, या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें, और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं, आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए, और क्या क्या क्या जरूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की, और इसके बाद जब हम किसी भी चीज को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि उसके महत्व को समझे, और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की, और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
1: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो, उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन, वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखने चाहिए।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण, यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के, और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। आपके आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से, आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
1: देखिए, किसान बंधुओं के लिए सबसे जरूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा, आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान उसका देखरेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है, तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में

0: अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें। और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता। और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के या समय अवधि पर किया जा सकता है,
1: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र होता है।
0: हर टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है। उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, FMD में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। FMD रोग यदि देखा जाए, खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरियंट्स हैं, एशिया AO करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है। तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। अब कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पर, उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
1: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों, आप सभी का उन्नत कृषि में. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में. और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं. तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए. तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे.
1: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें.
0: यानी कि साफ सफाई बहुत
1: उसका
0: है.
1: जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें. और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो, कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो. ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें. चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है. बिल्कुल. इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें. जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें. कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है. अच्छा. तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें. बछड़ा है, बछड़ा को एक साथ रखें. जो गाय है उसको एक साथ रखें. बाछी को एक साथ रखें. अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं.
0: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें. और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है. और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे. तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है. अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा.
1: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है. आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग.
0: हाँ, ये किस जानवर में देखा जाता
1: ये है? गाय और भैंस में देखा जाता है. बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है.
0: गाय
1: और भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है. दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको. यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है. इस बीमारी से गला में सूजन होता है और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया. कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है. गला, इसलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है. यह जीवाणु जनित रोग है.
0: अच्छा,
1: ठीक है. इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं. यह भी जीवाणु जनित है. यह भी गाय भैंस में होता है. यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसे सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है. अच्छा. इसलिए इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है.
0: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
1: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है. और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता.
0: अच्छा.
1: है और बहुत ही संक्रामक बीमारी है. एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है. इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं. इससे ब्रुसेलोसिस इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है. अच्छा। यह जो समय से गर्भपति पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं, ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है। इसमें मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन यह जो है अबॉर्शन कॉज करता है पूरा का पूरा। एक किसान को जो नई गाय मिलती, बछड़ा मिलता, वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है। यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं,
0: या यानी कि ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
1: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है। आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को, अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
0: और सर इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें, टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी, इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
0: पॉलीवेलेंट,
1: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स। इस रोग में

0: क्या सावधानियां होनी चाहिए?
1: बिल्कुल, सावधानियां ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है, और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
0: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन कहते हैं,
1: बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं उसे, आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
0: चेक करवाएं, या फिर कुछ
1: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
0: थनेला रोग
1: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
0: हमारे यहाँ
1: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
0: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियां बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा।
1: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस, उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में, बंधा हुआ है, और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर। ऐसा नहीं हो, आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
0: लेकिन मनुष्य के जैसे जुबान नहीं है,
1: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा, आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है,
0: इस बात का भी ध्यान रखना।
1: हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज। यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी, यह बरसात के सीजन में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने

0: को इस समय में इस रोग से बचाएं और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएं और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
1: जो पोषक तत्व तो उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
0: हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको, अगर आप नए पशु पालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेजों के समय पे शुरू हुआ या फिर इसका इतिहास काफी पुराना है, आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। अपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खास तौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की, मतलब प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्थल हैं उसके प्रमाण काफी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है, यहाँ पर काफी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है, इसका उत्पाद यहाँ पर काफी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि की जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते है ना तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या हुआ, लेकिन मुगल काल में देखा जाता है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए, बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे, जो इधर उधर फैले हुए थे, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के, वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना
माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की, तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का कि वो व्यापार कर सके। और यहाँ भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया और फिर यहाँ से रेशमी कपड़े यूरोप तक निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में। तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे, पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है, जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं, जो कपड़े पहुँच रहे हैं, वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो, उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है। और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर हैं वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं, पावर लूम है और आधुनिक डिज़ाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं, बहुत ईजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिज़ाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कंपटीशन आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिज़ाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है, जिन्हें सिल्क के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफ़ी फेमस है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम हैं वो पाए जाते हैं और जिनमें से कि चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज़्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है, और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो शहतूत जिसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफ़ी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं हम तसर सिल्क के बारे में तो अब तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों से बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा भागलपुर, हमारा जो अंग जनपद था, एक वक्त पे यहाँ पर काफ़ी घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जो कीड़े होते थे उनसे तसर सिल्क बहुत ही आसानी से बनाया जाता था। और ये हल्का सुनहरा रंग का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, और अभी मैंने बताया कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एसी जैसा फील देता है, गर्मी में आपको ठंडे का एहसास कराएगा, ठंड में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। और इसका जो उत्पादन होता है तसर रेशम का वो खास तौर से बिहार में होता है, बिहार में विशेषकर भागलपुर में होता है, इसके अलावा झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में भी तसर रेशम काफी

प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरी सिल्क भी है, ये अरंडी के पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मुलायम काफी होता है, गर्म होता है और इसे कहते हैं कि ये अहिंसा सिल्क भी है, क्योंकि इसमें ना कीड़े को बिना मारे ही धागे से निकाल दिया जाता है। अगर आपको सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पहले पानी में खौलाया जाता है, उससे क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और उनके चारों तरफ जो रेशे होते हैं फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन एरी रेशम इनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कीड़े को मारने की प्रक्रिया नहीं होती है, बिना कीड़े को मारे ही इसे सिल्क निकाल लिया जाता है और ये खासतौर से असम और उत्तर पूर्व भारत में काफी प्रचलित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हिंसा नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहां पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है, ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए आज अंग उमंग कार्यक्रम में। इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

0: ಋಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में. और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है.
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं. और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है. इसमें असंख्य जीव विद्यमान है. उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है. तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में. तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है. तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है. ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं, तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं. और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है. और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है. तो पहला ये चीज़ हो गया. दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है. तो ये कैसे, क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कम्प्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है. और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है. न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है. इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है. इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं. और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है. तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं. मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है. और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है, तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी, वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है, वो गैस का जो एक्सचेंज है, उस मिट्टी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीड और रंध्र और बृहत रंध्र जो है, वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से, पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं। और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व, यानी सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व, न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है, जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है, उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्म जीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो उसको क्या करता है ये जीवाणु, जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उसे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा, और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है, जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं, वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए, तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में, और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है, उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु, जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो ट्यूबेक्टर हो गया, ये जो एस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रोडियम हो गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं, उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है, मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है, उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज है कि वो जो है सूक्ष्म जीव जीवाणु, वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है, वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है, मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है, वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है, तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्म जीव जीवाणु का हम अपन माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी, निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNH एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन, जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मेचुरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं बीटी बैसुलस थुरिंजेनेसिस ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस

0: तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है, फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है, और इसी को किसान, इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है रेजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है। जो केवल दलहनी पौधों के लिए, इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वैरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSB के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है, जो अन जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ से फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है, जो PSB बायोफर्टिलाइजर है। और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 KG तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है। और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी, रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे उस मात्रा में, उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का, तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी सवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी सवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो वो क्या करते हैं, वो फॉस्फोरस को अवेलेबल कराने में माने फॉस्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर वैस्कुलर और वैस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है, वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है, उसकी मात्रा बढ़ेगी और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फाइटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है, यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है। क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वियबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका

0: है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लिम्स या स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं।

0: है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: خوشی. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले. आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में. हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है लेकिन खेती नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर स्वप्नील भारती. मैम आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: मैम आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फूलों की खेती आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमा. और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में क्या हो गया है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है. अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा वो तेज़ी से बढ़ रहा है. ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है. यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था. यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग. लेकिन अगर अब वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं. अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं जो कंपनीज होती हैं जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है. इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे जिंदगी का जीवन शैली का. इसी प्रकार होटल्स में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं जो डेंटल वाले फूल होते हैं जो ताज़े होते हैं उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है. साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में. तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है. जो कमरे का रेंट वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें. इसके अलावा हाँ साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है. जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जास्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं. तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम जल या फिर इत्र उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं. इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं. तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है. तो इसी बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारी उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं. आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं. 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े. तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की हमेशा बरकरार रह रही है और हमारे किसान इसे अच्छा अर्जित कर रहे, अच्छी कमाई उनकी हो रही है.
0: तो मैम हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन कौन से फूलों की ऐसी किस्में हैं जो सबसे अधिक लाभदायक मानी जाती
1: हैं? ये सबसे ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार की जब हम खेती करते हैं किसान भाई तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में हम कौन सा कहाँ पर ये अनुकूल है, कौन सा तापमान, ये एरिया जो है हमारा वो बिहार प्रदेश जो है हमारा उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं. तो इसमें आप कम लागत में, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं. तो उसके लिए आपके पास सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है. चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है. इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो ये तीनों सीजन में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे एक पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, उसका फिर रोज शरबत बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज में यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है। उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में 2 प्रमुख चीज़ें हैं जो कि है कौर्म और इसका कंद। उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं और ये और ताकि पॉली हाउस में करके और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाज़ार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल है जिसकी जो वास लाइफ यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
0: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
1: हाँ जी माँ जी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई, आप किसी भी कोई भी सीमांत हो या फिर कोई भी छोटे किसान हो, कितनी भी भूमि आपके पास हो, आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे आपको उतने फूल आपको प्राप्त होते जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलती रहता है। आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीजन जब हम उसको उगाते हैं तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
0: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फूलों का जो है, हर फूल हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी मिट्टी, सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपकी जो बीज होंगी वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए, या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से तो वो जो पौधा भी है उसका, वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे कोई भी फफूंद नाशक। वैसे तो जो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एक सेफ साइड पे रहना है तो हम पौधों को, उसके जड़ को या फिर बीज जो है उसको हम, या फिर कंद होता है हमारा, कंद बल्ब कुछ भी जो भी हमारी जो सीड प्लांटिंग मटेरियल है उनको हम कोई भी फफूंद नाशक के साथ में आधे घंटे तक उसमें घोल बनाकर रखते हैं। उसके बाद उसको छाया में सुखाने के बाद तभी आप इसे खेत में लगाएं। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि जो आपके पौधे हैं उनकी जो, उनका जो विकास है, उनकी जो वृद्धि है वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग, बाज़ार में मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में, हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसी के बेसिस पर उन्हें हमारे उन्हें उस पर उसी पर्टिकुलर क्रॉप का, उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे जो लास्ट में अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन, वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है। कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन, उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुराई का समय आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब तुराई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही, शाम में ढलते ही तुराई कर ले ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुराई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
0: तो मैम, फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
1: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब बनी है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए, आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा नवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है। और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं उस फूलों की आवश्यकता महानगरों में, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती है, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शादी हो, गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में, तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए, लोगों की आंखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज फ्लावर होता है, किसान भाई लूज फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं, जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी त्यौहार, किसी भी समाप्त, किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारा इन खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ कट फ्लावर भी होता है, क्लूज भी होता है, पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है, और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम उस फूल में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में, या फिर संगीत में, या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया या फिर होटल हो गया या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं या फिर सरकारी या फिर बहुत सारी जैसे हमारी परियोजनाएं हैं CPWD की, NTPC की, या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उन सबको अब सजावट चाहिए, सबको ग्रीनरी चाहिए। तो ये ग्रीनरी कैसे आएगा, ये ग्रीनरी आएगा आपका लैंडस्केपिंग करने से। तो लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें हम सजावट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। इसमें आप छोटे से एरिया को भी अगर आप सजावट करते हैं, उसका लॉन बिछाते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं। फिर एक आता है ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन डिलीवरी में फर्न्स एंड पेटल्स बोल करके भी एक है, जो कि पौधों को भेजता है, लोग गिफ्ट ऑर्डर करते हैं, लोग पौधे, अभी फ्लिपकार्ट में हो गया, सब जगह अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज है, तो आप चाहें तो आप अपना एक अलग से भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग से भी पौधे सप्लाई कर रहे हैं, सीड सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, तो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और सबसे लास्ट में जो है वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हमारी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता आ रही है, तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
0: तो मैम मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है, जिनके पास खास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है। हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम जिसके जिसमें लागत भी आपकी ज़्यादा ना लगे, वैसे फूल लेकर के आप ये व्यवसाय जो है वो शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
0: तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी ये वार्ता आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है, बस ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से डिमांड को समझें, बाजार को समझें और खेती शुरू करें। मैम बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें बताई।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का भी।
0: तो दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है, या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो, लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची, बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए, अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं। और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता, उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम है, ज्यादा ना हो पर बराबर की तो है, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं, लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बनती है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है। और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं। और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं। उन्हें आवाज उठाना चाहिए। और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी, कौन से घर की इज्जत? घर तो वो होता है ना जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि ना जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, ना जाने कौन आपको क्या बोल दे, ना जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती है और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा। समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी एक कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाए, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें और वो जो पिता है, भाई है, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
0: Ladies first.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: ಋಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए बाग लगाने के बारे में. अभी बहुत सारे किसान भाई बहन नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे होंगे या नए बाग लगाने के प्रोसेस में होंगे. ऐसे में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है. तो उन्हीं बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार सरे उद्यान फल विभाग से और सरे असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर सबसे पहला सवाल कि बाग को लगाने का उचित समय क्या है?
1: हम फलदार वृक्ष का जब हम बाग लगाने की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा जो समय होता है, सबसे उचित समय जुलाई अगस्त का महीना होता है. लेकिन जुलाई अगस्त का महीना इसलिए होता है कि उस समय रुक रुक कर वर्षा होती रहती है और आकाश में बादलों की वजह से दिन में तेज धूप से पौधे बच जाते हैं, साथ ही तेजी से उसमें व्यवस्थित भी हो जाते हैं. इसलिए जुलाई अगस्त का महीना अच्छा रहता है. लेकिन उसके लिए हमें बाग लगाने की तैयारी हमें अप्रैल मई से ही शुरू कर देनी पड़ती है.
0: अच्छा, और सर अगर बाग लगा रहे हो तो उस समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है?
1: हाँ मैडम, अगर मैं बाग लगाने की बात करूँ तो उस पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं, चूँकि फल वृक्ष जो होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं. एक बार जब लगाया जाता है तो वो 50-60 साल तक वो से हम फल प्राप्त करते हैं. तो शुरू में अगर कोई गलतियां होती है तो वो हमें सब दिन उसको भुगतना पड़ता है. तो कोई गलती ऐसा हम ना करें जो आगे चल के हमें कठिनाई का सामना करना पड़े. तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ विभिन्न बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, जैसे कि स्थान का चुनाव. अगर हम बाग लगा रहे हैं तो किस स्थान पर बाग हमको लगाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना है. फल एवं उनकी जातियों का चुनाव, किस तरह का बाग हमें लगाना चाहिए, किस एरिया में. मान लीजिए कि अगर हम भागलपुर रीजन की बात करें तो अगर यहाँ आम है, अमरूद है, लीची है, ये सब लगाएं. लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा क्रॉप लगाएं जो यहाँ पर नहीं, ठंडे प्रदेश में होता है, सेब की, नारंगी की, हम अगर करना चाहें तो उतना प्रॉफिटेबल या उतना कॉमर्शियलाइज नहीं हो सकता है. तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस फल का बाग लगाना चाहिए, दूसरा किस जाति का, किस प्रभेद का लगाना चाहिए. अगर हम यहाँ भागलपुर में जरदालू यहाँ का जो है सो मेन फसल है, अगर हम जरदालू लगाते हैं तो यहाँ पर हमें, या मालदा ये सब अगर हम लगाते हैं तो यहाँ हमें क्या होता है कि इसका डिमांड है. लेकिन अगर यही हम अगर लगाने का हम दशहरी की बात करें तो दशहरी का डिमांड यूपी में ज़्यादा है. तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो वहाँ हमारा उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा. तो इसीलिए किस क्रॉप को लगाएं और किस जाति का लगाएं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए. उसके बाद बात आती है कि भूमि की तैयारी, हमारी ज़मीन कैसी है, उस फल बाग के लायक उसको हम सही ढंग से तैयार करना चाहिए. फिर उसका भूमि का रेखांकन हम करते हैं कि किस तरह से लेआउट करें ताकि जो हम बगीचा लगाएंगे तो प्लांट से प्लांट की दूरी हो या जो भी हमारा रो कतार से कतार की दूरी हो वो ऐसे लाइन में हो जो हमारा बाद में हम उसमें इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन जो भी करते हैं, अंतर्वर्ती खेती करते हैं या उसमें जो भी हम खरपतवार जुताई कुराई करते हैं उसमें आसानी हो, उसके लिए रेखांकन करके ही लगाना चाहिए. प्लस गड्ढा खोदना, गर्मी में अप्रैल और मई के माह में गड्ढा खोदने की बात हम करते हैं और गड्ढा खोदने के बाद जब हम उसकी भराई करते हैं तो वो जो गड्ढा होता है उसमें जिस समय की बहुत तेज धूप, सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ 15 अप्रैल से मई के माह तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उस समय अगर हम गड्ढा करके और 20-25 दिन तक अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो उसके गड्ढे के चारों तरफ जितने भी कीड़े मकोड़े या जितने भी जो बीज होते हैं उसके खरपतवार के बीज गिर के पड़े रहते हैं उनको जैसे ही नमी मिलता है वो जैसे उग आते हैं और वो फिर हमारे मेन क्रॉप को वो क्षति पहुंचाते हैं. तो सीड भी हो गया और कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, मिट्टी से जो भी संक्रमित होने वाले जीवाणु हैं वो सब उस धूप में नष्ट हो जाते हैं जब 20-25 दिन हम खुले छोड़ देते हैं. तो गड्ढा करके 20-25 दिन छोड़ना चाहिए. गड्ढा करने का तरीका है कि उसको हम आधा, अगर मान लीजिए कि आम की बात हम करें, आम का गाछ कहते हैं तो उसके लिए गड्ढे का जो माप होता है वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, यानी 1 घन मीटर का गड्ढा करना चाहिए। तो 1 घन मीटर का गड्ढा जब करते हैं तो उसकी आधी मिट्टी को एक साइड दे लें और उसकी जो नीचे वाली आधी मिट्टी है उसको दूसरे साइड हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके पहले लेआउट करते हैं। लेआउट करने का कई तरीका है, जैसे वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, षडभुजाकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, और जहाँ पर कि जमीन थोड़ी ऊंची नीची होती है तो वहाँ पर हम लोग कंटूर सिस्टम में हम लोग प्लांट को लगाते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बना के उसमें हम लोग लगाते हैं। तो जो विधि हमारा जिस जगह के लिए उपयुक्त है उस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। खास करके वर्गाकार विधि बहुत ही आसान विधि है और कमर्शियलाइजेशन समझिए ज़्यादातर इसी विधि का ही हम लोग करते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। प्लस उसमें जो देख रेख, बाग का देख रेख भी आसान होता है, प्लस उसमें जो हम लोग खरपतवार नियंत्रण हो या जुताई करना हो तो चूँकि कतार से कतार और पौधे से पौधे को वर्गाकार विधि में रहता है तो उसमें भी आसानी होती है। तो इस तरह से हम लोग लेआउट करके और गड्ढा की खुदाई करते हैं, और गड्ढा की खुदाई करने के बाद तब फिर हम लोग उसको, जब वर्षा होने का रहता है तो वर्षा होने से पहले 20-25 दिन छोड़ने के बाद वर्षा होने से पहले उस गड्ढे को हम लोग भराई करते हैं। तो गड्ढे की भराई करने में हम लोग जो उपयोग करते हैं उसमें कुछ फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हम लोग कंपोस्ट का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट जितना आप उसमें लगाएंगे उतना ही आपका जो है सो गड्ढा अच्छा रहेगा, जो पौधे का विकास अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग करीब एक गड्ढे में प्रति गड्ढे हम लोग करीब करीब 30 से 40 kg कंपोस्ट हम लोग एक गड्ढे में डालते हैं। तो ऊपरी जो मिट्टी हमने साइड में रखी है उस ऊपरी मिट्टी में ही हम लोग कंपोस्ट मिलाते हैं, उसमें कुछ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों चीज़ का जो है सो सम्मिश्रण, जैसे यूरिया बहुत कम देना चाहिए, बल्कि यूरिया अगर हम शुरू के डोज में नहीं भी देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर दें तो 250 ग्राम यूरिया दे दें, 500 ग्राम SSP दे दें, 250 ग्राम MOP, और नीम की खल्ली अगर उपलब्ध है तो 1/2 kg कम से कम नीम की खल्ली, आम में अगर हो तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, 1 kg तक भी दे सकते हैं। ये जो है सो सारे चीज़ को मिला के हम गड्ढे की भराई करते हैं, और गड्ढे की भराई करने पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ऊपर का सरफेस है उसको पारागोला साइड में, जैसे कि मुट्ठी जो बांधते हैं तो ये जो मुट्ठी जो ऊपर का जो हो जाता है ऊपरी हिस्सा, तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपरी हिस्सा तक उसको भराई करने चाहिए, ताकि यदि पानी पड़ता है और मिट्टी अगर बैठे तो वो समतल ज़मीन से नीचे ना जाए। अगर समतल ज़मीन से नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी फंसने का चांस रहता है, और जब पानी फंसता है तो वह पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके उसको पिरामिड शेप में हम लोग भराई करते हैं, और जब एक बारिश हो जाती है तो फिर वो मिट्टी बैठती है, जब मिट्टी बैठ जाएगी तब फिर हम उसको करते क्या है कि पौधे से पौधे फिर से हम फीता लेके, और जितना दूरी पर हमको पौधा लगाना है, अगर 10 मीटर पर लगाना है, 5 मीटर पर लगाना है, तो कतार से कतार पौधे से पौधे की दूरी लगा के और उसको फिर हम लोग खूंटा बांध गाड़ के और बीच में खुदाई करते हैं गड्ढे के बीच में, और पौधे को हम लोग लगाते हैं। इस तरह अगर हम लगाते हैं तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है, चूँकि जो 1 घन मीटर इसमें जो मिट्टी की खुदाई हुई तो उसका मिट्टी बहुत जो है सो भुरभुरा हल्की हो जाती है, और पौधे हमारे जो होते हैं जो नर्सरी से हम पौधे ले जाते हैं उसका जड़ जो है सो बहुत कोमल होता है, तो जब उस जड़ को अगर सॉफ्ट मिट्टी, हल्की मिट्टी मिलती है तो उसका व्यवहार भी ज़्यादा होता है, और जितना जड़ का व्यवहार ज़्यादा होता है उतना उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, खास करके किसान भाई करते क्या है कि जब बरसात का समय आया तो नर्सरी से पौधे लेके जाते हैं और गड्ढा करके और उसको लगा देते हैं। लेकिन मैं बता दूं किसान भाइयों कि अगर आप तुरंत में गड्ढा खोद के लगा रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक तरीके से कि हम अप्रैल मई माह में गड्ढे करके 20-25 दिन छोड़ दें, उसके बाद जिस तरह से

0: सर अगर हम आम की बात करें, अमरूद की बात करें और लीची की बात अलग अलग करें, तो इसमें गड्ढों की दूरी क्या होनी चाहिए और गड्ढों की गहराई क्या होनी चाहिए?
1: हाँ मैडम, अगर हम आम की का बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि पारंपरिक विधि से अगर हम लगाना चाहते हैं तो 10 मीटर का कतार से कतार और 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। चूँकि पौधा जो है जो अपना आकार लेता है, तो ऐसा हम लोग दूरी रखते हैं कि एक दूसरे पौधे का टहनी या जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से टकराए नहीं, और धूप का अच्छा जो है सो प्रवेश हो सके, ताकि धूप का जब प्रवेश अच्छा होगा तो कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप कम होगा और फल का ग्रोथ भी अच्छा होता है, और अंदर तक अगर धूप आती है तो वहाँ पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी ऊपर से लेके नीचे तक आता है। और अगर घना हो जाता है बगीचा तो फिर हर पार्ट में, पौधे के हर पार्ट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाता है और दूसरा कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो इसलिए आम के लिए 10 मीटर, और आजकल चूँकि जमीन का जोत घटता जा रहा है इसीलिए सघन बागवानी के रूप में अब 10 मीटर की जगह 5 मीटर पर हम लोग लगाना शुरू किए हैं। गवर्नमेंट भी अनुदान पर जो बगीचा लगाने के लिए अनुदान देती है, तो उनका भी कहना है कि आप 5 मीटर पर लगाएं और उसका मैनेजमेंट करें, उसका कैनोपी मैनेजमेंट, छत्रक प्रबंधन जो होता है वो अगर आप करेंगे तो 5 मीटर पर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे। अगर मैडम 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, अगर उसमें 100 पौधा लगता है 10 मीटर पर, तो 5 मीटर पर अगर हम लगाते हैं तो सीधे 400 पौधे हो जाते हैं। तो कहाँ 100 पौधे, कहाँ 400 पौधे, प्लस जो ज़्यादा बड़े पौधे होते हैं अगर कटाई छटाई उसकी ना करेंगे तो उसका मैनेजमेंट भी हमको कठिन होता है। चाहे उसमें हमको कोई स्प्रे करना हो केमिकल का, तो उसमें भी पौधा बड़ा होने पर हमको दिक्कत होती है। हार्वेस्टिंग करने में फल की तुराई करते हैं उसमें भी परेशानी होती है। तो इसीलिए अब हम लोग सघन बागवानी के रूप में 5 मीटर पर लगाते हैं, ताकि उसका मैनेजमेंट भी आसान हो, कम हाइट रहने पर उसमें स्प्रे भी करना हो कोई चीज़ का तो हम कर सकते हैं आसानी से, उसका फल तुराई करना, हार्वेस्टिंग करना हो तो वो भी हमारे लिए आसान होता है। और अमरूद के लिए हम लोग 5 से 6 मीटर पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखते हैं। लीची के लिए 8 मीटर कतार से कतार, पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। इसी तरह से नींबू के लिए हम लोग 6 मीटर। तो जैसा जो वृक्ष का जितना उसका बरवार होता है, जैसा उसका नेचर है, उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो हमारे यहाँ फसल होती है तो ये आम, अमरूद, लीची, नींबू, इस सब का यही है।
0: सर अगर नर्सरी से जब फल के पौधे खरीद रहे हों तो उस वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ मैडम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि किसान भाई नर्सरी में जाते हैं और वहाँ से पौधे खरीद के लाते हैं और लगाते हैं, चूँकि ये बहुवर्षीय पौधा है, आज अगर हम लगाते हैं तो ये 5 साल बाद हमको फलन देता है, तो हमको पता नहीं चलता है 5 साल में अगर हम वेट करते हैं उसके बाद अगर नर्सरी वाले अगर कोई गलत पौधे भी दिए हैं, अगर सही वैरायटी नहीं दे पाए हैं, तो उस जगह भी हम लोग जो है सो 5 साल के बाद अगर उनके पास कहने के लिए जाएंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी फलदार वृक्ष को खरीदें, जब भी नर्सरी खरीदें, तो किसी सरकारी या विश्वसनीय पौधशाला से, नर्सरी से ही खरीदें, ताकि उसकी एक विश्वसनीयता बनी रहे। अदरवाइज 5 साल हम उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद अगर फल छोटा हो गया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसकी गारंटी होनी चाहिए। दूसरा है कि पौधे जब खरीदते हैं तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि पौधा स्वस्थ हो और कीट व्याधि मुक्त हो। अगर नर्सरी में ही पौधा अगर कीट व्याधि से प्रकोप से रहेगा तो फिर अगर हम बाग में ले जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको परेशानी होगी। तो कीट व्याधि से मुक्त हो और स्वस्थ पौधा हो, उसको हम लोग लेते हैं। तीसरा ध्यान देना चाहिए कि कलमी पौधे, आम का अगर कलमी पौधे लेते हैं तो उसमें हम लोग कलम बांधते हैं बीजू के पौधे पर, सायन लेके उसको हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग का जो पॉइंट होता है, कलम बंद जहाँ पर जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव के ऊपर तथा नीचे तना समान मोटाई का अगर रहता है तो उसका ग्रोथ जो है सो अच्छे से होता है, उसमें डैमेज होने का चांसेस कम रहता है। तो वो जुड़ाव पर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जुड़ाव हमारा बहुत सटीक जुड़ाव हो और ऊपर नीचे का मोर और लेस जो है सो मोटाई जो है सो थिकनेस बराबर हो। चौथा बात ध्यान में रखना चाहिए कि पौधा बहुत ज़्यादा आयु का नहीं होना।

0: प्राइवेट नर्सरी में जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े बड़े पौधे रहते हैं। सवाल है कि किसान भी उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, बड़े पौधे लगाएंगे तो हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा, बकरी नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी। लेकिन एक गमले में, एक पॉट में जो हमने उसका जड़ को रोक के रखा है और पौधा हमारा बड़ा हो गया, और पौधे का नेचर है कि जितना जड़ नीचे जाएगा उतना मैंने ऊपर भी उसका तना वगैरह का विकास होता है, तो ऊपर तो विकास हो रहा है लेकिन नीचे जड़ का जो है तो विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उस पौधे को ले जाके हम अपने बाग में लगाते हैं तो उस पौधे को जमीन में इस्टेब्लिश होने के बाद उस बड़े पौधे को जितना भोजन चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो जड़ सक्षम नहीं हो पाता है उतना न्यूट्रिशन देने में, क्योंकि उसका फीडर रूट उतना डेवलप नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका पौधा सुरक्षित तो बकरी से रहेगा लेकिन उसका ग्रोथ वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप छोटे पौधे ले जाते हैं, एक साल के पौधे, दो साल के पौधे लेके जाते हैं, तो उसका रूट भी, जड़ भी उसका अच्छा रहता है, और उसको जब लगाते हैं तो वो जमीन में जाके उस जितना जड़ का ग्रोथ होता है उसी हिसाब से ऊपर का भी ग्रोथ होता है, और पौधा हेल्दी और अच्छा कैनोपी लेते हुए और उसकी बरबार होती है। उसके बाद हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि पौधशाला की क्यारी से जब पौधे को निकालते हैं तो निकालते समय उसकी मिट्टी जो पिंडी हो वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, या पॉली बैग से या गमले से जब निकाल के हम पौधे को लगाते हैं तो वो जो पिंडी होता है वो पिंड हमारा नहीं टूटना चाहिए। अगर पिंड टूटेगा और जड़ में अगर हवा लग जाएगा तो फिर वो पौधा हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये पिंडी नहीं टूटना चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में भी लाने में वो डैमेज होने का चांस रहता है अगर सही ढंग से उसको नहीं निकाला गया है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, यातायात के दौरान पौधों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि मिट्टी के पिंडी ना टूटे। इन सब बातों का ध्यान में रख के अगर आप नर्सरी से पौधे खरीदते हैं और अपने बाग में लगाते हैं तो वो आपका दूरदर्शिता के लिए अच्छा रहेगा और उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा।
1: सर ये तो बात हो गई बाग लगाने की, लेकिन बाग लगाने के बाद किस तरीके से देखरेख करना चाहिए ताकि पौधों की बढ़भाड़ सही तरीके से हो?
0: हाँ मैडम, पौधा लगा तो लेते हैं और पौधा लगाने के बाद फिर उसमें अगर हम सही तरीके से उसका प्रबंधन ना करें तो फिर हमारा पौधे का विकास उसका नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें क्या है कि जब पौधा हम लगाते हैं तो शुरू से जब एक साल का पौधा हमारा व्यवस्थित हो जाता है तो उसकी कटाई छटाई पर ध्यान देना चाहिए कि अनवांटेड, अवांछित जो शाखाएं हैं उसको हमेशा हटाते रहना चाहिए, जो ज़्यादा घना हो गया उसको हटाते रहना चाहिए। चारों दिशा में अगर पॉसिबल हो तो चारों दिशा में हम चार शाखाएं ही छोड़ें ताकि उसकी दूरी जो सो आपस में टकराए नहीं एक दूसरे का, और चार शाखाएं छोड़ने के बाद फिर वहां से जब पौधे निकलते हैं, मैंने शाखा निकलती है तो वहां पर फिर कटिंग करके वहां से फिर चार शाखाएं छोड़ें, उसके आगे भी फिर जब दो तीन साल तक हम लोग कटाई करके उसको अगर कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो वो पौधा हमारा अच्छा रहता है। दूसरी बात रही कि अगर पौधा व्यवस्थित हो गया है तो उसको नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में अगर सिंचाई नहीं भी करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। जाड़े के समय में हम 15 दिन पर भी सिंचाई करते हैं, 20 दिन पर भी सिंचाई करते हैं तो वो भी हमारा चल जाता है। लेकिन गर्मी के सीजन में हम कम से कम साप्ताहिक जो है सो एक सप्ताह में जरूर हम सिंचाई करें, अदरवाइज हमारा पौधा जो है सो डैमेज होगा। और नया पौधा जब लगाते हैं तो उसमें तो दो दिन तीन दिन पर भी हमको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बहुत अच्छा सिंचाई का प्रबंधन हो तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम जो होता है, टपक सिंचाई विधि, जिसमें कि हम एक बार जो है सो उसका पाइपलाइन बिछा देते हैं और उसके बाद उसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो उससे हमारा जो है सो इरीगेशन बहुत अच्छे से होता है। सह है कि इसमें जो हम कीटनाशक वगैरह का उपयोग करने की बात आती है तो हमको सुपरविजन करते रहना है कि पौधा हमारा अगर कहीं पर इन्फेक्ट कर रहा है, शुरू में दीमक वगैरह का प्रकोप रहता है तो जब पौधा हम लगाते हैं तो उस समय ही क्लोरोपाइरीफॉस, आजकल थाइमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग आप करें। क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करने के बाद आप जब जरूरत पड़े तो वहाँ पर हम कीटनाशक का उपयोग करेंगे और जो वैज्ञानिक के संपर्क में रहें, ताकि जब जो जरूरत पड़े तो दवा पूछें, पहले से उतना अति करने की आवश्यकता नहीं होती है। और शुरू में जब पौधा को स्थापित करने की बात आती है तो खास करके दीमक वगैरह का ही प्रकोप होता है, बाद में जब फलन में आता है तब हमको कई तरह की बीमारी का फेस करना पड़ता है। तो ये हुआ। दूसरा है कि अगर पौधा जो एक वर्ष का पौधा है तो उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें जो है फर्टिलाइजर का उपयोग होना चाहिए। तो फर्टिलाइजर का उपयोग अगर हम हर साल अगर उसमें नहीं करते हैं तो उसका व्यवहार सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो हर साल के लिए अलग अलग, जैसे आम का पौधा अगर हम लगाते हैं तो उसमें प्रथम साल जो कंपोस्ट है उसमें एक पौधे में जो है 10 kg कंपोस्ट 10 kg और नाइट्रोजन 100 g, फॉस्फोरस 75 g और पोटास 100 g, इस मात्रा को हम प्रत्येक पौधे के गड्ढे में हम मिलाकर और उसको हम भराई कर देते हैं और उसके बाद उसका हम सिंचाई कर देते हैं। और जब 2 साल का पौधा हो जाता है तो उसी डोज को हम डबल कर देते हैं, 3 साल का पौधा हुआ तो उसी डोज को हम ट्रिपल कर देते हैं। यानी कि अगर इस तरह से हम बढ़ते हुए क्रम में 10 साल तक हम बढ़ते जाते हैं, तो जब 10 साल का पौधा हो जाता है तो जो 10 kg हमने दिया था वो सीधा हो जाता है 1 क्विंटल। यानी कि एक पौधे में 1 क्विंटल अगर हम दें तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर उपलब्धता कम है तो कम से कम 50 kg तो एक पौधे में देना ही चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन, जहां 100 g हम फर्स्ट ईयर वाले को दे रहे थे तो 10 साल के पौधे में 1 kg चाहिए, 1000 g, यानी कि 1 kg, और फास्फोरस 750 g और पोटास 1000 g। तो इस तरह से 10 साल के पौधे को देते हैं और 10 साल से बाद जो भी हो, 12 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, यानी कि उसके बाद हम लोग वही डोज को स्थिर रखते हैं और उसको देते हैं। इस तरह से अगर हम बाग का समुचित प्रबंधन अगर करेंगे कि उसका कैनोपी मैनेजमेंट, छतक प्रबंधन करेंगे, सिंचाई प्रबंधन करेंगे और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम करेंगे, तो इस तरह से हमारा जो है सो पौधे का विकास अच्छा होगा और हमारा फल बगीचा जो है सो अच्छे रूप में विकसित होगा। एक बात का और ध्यान रखना है जो मैं बोलना चाह रहा था कि जब भी आपका प्लॉट हो तो प्लॉट का जो बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री से आप अगर 10 मीटर पर पौधे को लगा रहे हैं तो कम से कम बाउंड्री से 5 मीटर छोड़ के ही चारों तरफ लगाएं। काहे कि जब पौधा लगाते हैं तो उसका जो छत्रक होता है, कैनोपी होता है, डाली होता है, तो दोनों साइड में बढ़ता है। तो अगर हम सटा के लगाते हैं तो वो फिर दूसरे ज़मीन में वो चला जाएगा। तो इसीलिए उसकी आधी दूरी हम 5 मीटर छोड़ के, और अगर 5 मीटर पर लगा रहे हैं तो 2.5 मीटर छोड़ के, यानी कि चारों बाउंड्री में छोड़ के ही पौधे लगाना चाहिए।
1: अगर किसान भाई बहनों, अगर आप सर के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके बगीचों में पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। 19 कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
2: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें।

जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
1: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है, और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है, और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
0: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं, वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
1: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
1: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
0: जी,
1: भुड़काव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुड़काव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
0: जी,
1: इसलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
0: जी,
1: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हाथे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुड़काव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हाथे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुड़काव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहां पे भी अलग से हम
0: डाल सकते हैं। जी
1: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे, सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है।
0: जी
1: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
0: जी तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
1: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं के विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
0: यानी समय का बहुत महत्व है,
1: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
0: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
0: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
1: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से।
0: जी।
1: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
0: जी,
1: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
0: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
1: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए।
0: जी
1: ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
0: जी डब्बे पे भी लिखा होता है, उसमें कॉशन
1: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
0: जी,
1: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
0: जी,
1: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
0: जाने अनजाने तो, में उसको कोई
1: इसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
0: जी।
1: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का, उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास।

0: रखें किसान, यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा।
1: जी।
0: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
1: ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
1: अगर फंस जाए, अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय।
1: तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई। हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे, जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है, तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में 2 या 3 बार या 5 बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर 1 यह है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके, बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए। कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं, उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें।
1: जी।
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से आप पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से।
1: जी
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छान कर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर, तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें।
1: जी।
0: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा।
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोल कर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है।
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
1: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पर हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो तो,
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें।
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें।
1: जी,
0: और चमड़े के वासर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदल नहीं है
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर, ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है, तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा
1: जी।
0: ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
1: जी,
0: उसका गैप को जो रहता है, जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
1: जी।
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे, अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद
0: कर देगा। ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं
1: जी।
0: वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं, जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पे धूल और मिट्टी को न जमने दें। ठीक है, अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग, जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्त चालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सके। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
1: जी।
0: फिर है छिड़काव यंत्र के टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए, तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं, तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है, ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और खास तौर से महिलाओं को जरूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है पदार्थ है उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और खास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफी ज्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा, इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफी दर्द होगा। और अगर

0: और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुंझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेजी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और खास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5,000 कदम चल रही हैं, उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद है वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐंठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जाँच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
1: लेडीज फर्स्ट।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी तई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमीडा क्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति हेतु यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यूं कहें, यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है। यह भी हम कह सकते हैं,
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में एक झोपड़ी बनाकर इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका यदि हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चे इसका सेवन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण से मुक्त रहेंगे।
0: तो ये तो आपने बताया मैम कि कुपोषित अगर बच्चे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है जो उनके कुपोषण को दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हुए, जो जवान लोग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कुपोषित नहीं हैं, तो उनके लिए क्या उपयोगिता है इसकी?
1: मशरूम की काफ़ी उपयोगिता है। जैसे कि हम बात करें तो हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ कुपोषण बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे कृषि योग्य भूमि, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, कल कारखाने चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि निरंतर घट रही है। घटती हुई कृषि योग्य भूमि से हमें बढ़ती हुई आबादी के लिए उम्दा किस्म का खाद्य पदार्थ चाहिए, तो इसके लिए मशरूम काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि मशरूम ऐसी खेती है जो कि खेती बिना खेत की होती है। इसके लिए हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसी बंजर भूमि पर भी यदि हम एक झोपड़ी बना देते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर जगह होता है, मतलब छत और जमीन के बीच का जो जगह होता है, उस जगह का उपयोग करके इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम यदि भूमि नहीं भी है तो भी हम इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा कि आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ रोजगार का अवसर घट रहा है, तो ऐसे ऐसे मशरूम एक स्वरोजगार का उत्तम साधन हो सकता है। उसके इसके अलावा जिसे हम देखते हैं कि हमारे युवाओं का कृषि के प्रति रुझान घटता जा रहा है, क्योंकि वो कृषि का मतलब समझते हैं कि जेठ के धूप में कृषि में काम करना, सावन के मूसलाधार बारिश में खेती में काम करना और पूस की ठंड में खेती में काम करना। लेकिन इस सारी तथ्यों को मशरूम खेती में हम गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति में एक्सपोज होकर खेती नहीं करना है, बल्कि किसी कमरे के अंदर मौसम की मार से बचते हुए खेती करना है। तो ये इसलिए हमारे युवाओं का रुझान भी मशरूम की ओर बढ़ सकता है। साथ ही इसमें आपका जो खेती में हम पैसा लगाते हैं, तो यह कोई ज़रूरी नहीं जितना हम पैसा लगाए हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, और वो मिलता भी है तो एक फसल का जो क्रॉप सीजन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही मिलता है। लेकिन मशरूम ऐसा फसल है जिसमें आज हम पूंजी लगाते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीना के अंदर हम यदि हम 100 रुपया लगाए हैं तो वो कम से कम 200 से 250 रुपया हमको 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसमें हम कहते हैं आमदनी हमारा 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। तो यह इसलिए भी हमारे युवाओं का रुझान इसकी ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो पारंपरिक फसल का उत्पादन होता है उसमें खर्च काफ़ी लगता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मशरूम के उत्पादन में खर्च काफ़ी कम लगता है, इसलिए यह एक लाभकारी फसल है। इसके अलावा यह छोटे किसान और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इसकी खेती के लिए काफ़ी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो हमारा दूसरे फसल से जो उत्पादन के बाद जो कृषि अवशेष बचता है उस कृषि अवशेष का उपयोग करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। और इस खेती को चूंकि हम कमरे के अंदर करते हैं, इसे पाला आंधी तूफान पशुओं आदि से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और इसके यदि हम इसको बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो इसको निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण जरिया ये हो सकता है, क्योंकि हर घर की महिला खेत नहीं जा सकती है, लेकिन यदि घर के पिछवाड़े में ही या घर के किसी कमरा में खेती करना हो तो वो हर की घर की महिला कर सकती है। इसलिए हम महिलाओं के खाली समय का सदुपयोग करके उनको सशक्त कर सकते हैं। इस तरह से मशरूम ना केवल हमारा एक पोषक आहार है, एक कुपोषण का जरिया है, बल्कि यह कई मायने में हमारे लिए उपयोगी है।
2: जी, तो ये आपने जाना कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे लिए, कैसे ये हमारे लिए खास है, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर धूप में और जो आंधियों में नहीं रहना पड़ता, यानी हमें भूमि पर नहीं जाना पड़ता है, बस अपने आप कमरे में ही इसे उगा सकते हैं, छोटे से कमरे में छांव में ही आप इसे उगा सकते हैं। और मैम, इसके औषधीय गुण के बारे में हम जानना चाहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग जो है हर चीज़ के औषधीय गुण को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और इसमें इससे बचाव के लिए क्या हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिलेगी, पौष्टिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी, तो इसके पौष्टिक एवं औषधीय गुण के बारे में बताएं।
1: मशरूम जो है वह सभी उम्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट व उत्तम पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें का प्रोटीन ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण उच्च श्रेणी का माना जाता है, और इसे हम आसानी से पचा सकते हैं, इसलिए इसके प्रोटीन को सुपाच्य प्रोटीन कहा जाता है। उत्तम प्रोटीन के कारण कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का भी उचित अवशोषण होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण दांतों की समस्याओं से दूर करता है। बी कम्प्लेक्स ग्रुप में इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है, जो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें लौह तत्व की पूरी मात्रा शरीर को उपलब्ध होने की अवस्था में होती है, इसलिए यह जो एनीमिया है उस एनीमिया के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। इसमें भस्म और रेशे उपलब्ध होने कारण पेट का जो अम्लीयपन होता है या कब्ज होता है उसकी समस्या को यह दूर करता है। नियासिन और पेंटोथेनिक अम्ल जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यह चर्म रोग तथा हाथ व पैरों के जलन को समाप्त करने में सहायक होता है। मशरूम में पाया जाने वाला इंगेस्टेरॉल पाचन क्रिया के दौरान विटामिन डी में बदल जाता है। अतः यह हृदय रोगियों के लिए भी अच्छा भोजन है और हड्डी के हमारे मजबूती के लिए भी अच्छा है। इसमें कम कैलोरी, कम वसा, कम स्टार्च, कम कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक पोटेशियम सोडियम अनुपात के कारण यह उन व्यक्तियों के लिए वरदान है जो मोटापे, अधिक तनाव, हृदय रोग एवं मधुमेह की बीमारी से पीड़ित है। अतः यह मशरूम न केवल स्वादिष्ट है, न केवल पौष्टिक है, बल्कि औषधीय उपयोगिता और गुणों से भरपूर है।
2: जी,
1: इसे FAO ने एक मशरूम को संपूरक आहार का दर्जा भी दिया है।
2: संपूरक आहार यानी कि इसमें हर वो चीज़ मिलेंगी आपको जो आपके शरीर को जिसकी ज़रूरत है। तो मैं आप जानते हैं कि बिहार का जो जलवायु है आप भी इससे अवगत हैं, तो क्या इसमें हम ये जान सकते हैं कि मशरूम के कौन कौन से प्रजाति हमारे इस बिहार की जलवायु में लगा सकते हैं हम, और ये अच्छा जो फल है वो हमें मिलेगा इसका?
1: मशरूम कैसे बिहार में हम लोग चार तरह की प्रजातियां जो कि लगा सकते हैं, एक बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा मिल्की मशरूम और चौथा पुआल मशरूम। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है वह बटन मशरूम का होता है, लेकिन बटन मशरूम की तकनीक थोड़ी जटिल है। उसमें हम लोग को कंपोस्ट बनाना होता है और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया सितंबर लास्ट या अक्टूबर में हम लोग करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट बनाने में छोटी विधि से यदि हम कंपोस्ट बनाए तो लगभग 15 दिन लगता है और लंबी विधि से बनाए तो 1 महीने लगता है। और लेकिन इसमें हमारे किसान भाई ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपोस्ट बनाने की जो खुले में प्रक्रिया होती है तो उसमें काफ़ी जो इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है और कंपोस्ट उम्दा क्वालिटी का नहीं बनता है। और लेकिन हमारे किसान भाई बना रहे हैं, भागलपुर में भी कई किसान भाई बना रहे हैं। तो आप यदि बटन मशरूम खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में आप इसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं, और कंपोस्ट बना करके फिर कंपोस्ट को निर्जीवीकृत करके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद उसको निर्जीवीकृत अखबार से ढक देते हैं। फिर जब उसमें माइसिलियम रन कर जाता है तो फिर उसमें हम लोग केसिंग करते हैं, फिर केसिंग के बाद उसमें फलन आता है। इसके इसी और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो खेती होती है हमारे यहाँ वो है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम की तकनीक काफ़ी सुगम है, काफ़ी आसान है, और इसे बहुत कम कीमत पर आप इसकी खेती आप कर सकते हैं। लेकिन है कि इसका मार्केट में बहुत डिमांड नहीं है, इस कारण से क्या कि इसको हम लोग लाइफ बहुत कम है, इसको हम कोई प्रोसेस करके इसको ताज़ा हम नहीं रख सकते। जैसे कि बटन मशरूम को हम हार्वेस्ट के बाद भी 1 सप्ताह तक रख सकते हैं, उसको हम लोग उसके कुछ रसायन है सोडियम पोटासियम मेटाबोसल्फाइड, उस रसायन के साथ उसको यदि ट्रीट कर दें तो इसको हम लोग 1 सप्ताह तक रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम को हम किसी रूप में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वह गलने लगता है। इसलिए इसका मार्केट नहीं है। लेकिन यदि इसको हम ताज़ा इसका यदि मार्केट उपलब्ध हो, यदि ताज़े रूप में इसका सेवन करें तो यह काफ़ी उपयोगी मशरूम है, काफ़ी पौष्टिक है और इसकी खेती बहुत आसान है। तो हम लोग जो भागलपुर में मुख्यतः इसकी खेती होती है ऑयस्टर मशरूम की होती है, और इसका भागलपुर में इसका लोकल में बाजार उपलब्ध है। जो भी किसान करते हैं उनको यदि पहले सीजन में जो किसान करते हैं तो थोड़ी मार्केटिंग की समस्या होती है, लेकिन वो जैसे ही दूसरे लोग जान जाते हैं उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आती है। प्लस दूसरा कि इसका उत्पाद बना के रख के ऑफ सीजन में इसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इसकी भी तकनीक काफ़ी आसान है। इसके लिए गेहूँ का भूसा या पुआल की कुट्टी को हम लोग मौसम में भंडारित कर लेते हैं, जिस मौसम में उपलब्ध हो सस्ते में, उसके बाद इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकृत करने की अलग अलग प्रक्रिया है, भाप द्वारा, ताप या फिर रसायन द्वारा निर्जीवीकृत करके इसके नमी की जांच करते हैं। पर्याप्त मात्रा में नमी होने के बाद इसमें हम लोग मशरूम का बीज या स्पॉन्ज से बिजाई करते हैं और इसको पीपी पैक में, पन्नी में उसको पैक करके किसी कमरे में, झोपड़ी में, निर्जीवीकृत झोपड़ी में इसको रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसिलियम पूरी तरह से रन हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है, और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं। फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है। उसके बाद 3 फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 3 फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए।
2: जी,
1: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गाँव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
2: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑस्टर मशरूम जो है हम उसका उत्पादन कर सकते हैं मैम, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
1: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांव में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 केजी जैसे आपका भूसा है तो 1 केजी मशरूम का स्पॉन्ज चाहिए, उस स्पॉन्ज को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन्ज को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शीका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें, कमरे को फिर बंद कर दें और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसिलियम रन कर गया है। तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है। पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है। फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका दुधिया मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं। दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का, ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पुआल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं
2: जी। तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम की उत्पादन की विधि क्या हो सकती है और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
1: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें। गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डुबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का सुखौता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं वो सारा डिश आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इंग्रेडिएंट है वो सारा एसेसरी इंग्रेडिएंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा। मुख्य इंग्रेडिएंट की जगह पे आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकती हैं हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाए।
2: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई और ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90.8।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों एग्जाम्स चल रहे हैं और कल आपके कोर्स AST 1-1 यानी कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है और आपके लिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। आज के रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। ये जो कल का आप लोग का एग्जाम है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये काफी अहम कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि सीड के बाहर सीड क्या होता है, सीड के गुणवत्ता का क्या पैरामीटर मीन सीड क्वालिटी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं और सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उससे हम नया प्लांट या नया क्रॉप ले पाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स है वो हमारा सीड कहलाता है। इसके अलावा बॉटनिकल डिफिनेशन में हम उसको राइपेन ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होना अति आवश्यक है, जैसे उसमें जो इम्ब्रियो हो लाइव हो, रिजर्व फूड मटेरियल्स हो जो कि ग्रोइंग सीडलिंग को वो फूड सप्लाई करे, इसके साथ साथ वो जो सीड है वो सराउंडेड प्रोटेक्टेड रहे, उसके जिसको हम कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं, है ना। अब आते हैं कुछ सीड प्रोडक्शन के बारे में कि हम जो है किस बेसिस पे, किस आधार पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडली जो है दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं और एक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। जेनेटिक प्रिंसिपल से हमारा तात्पर्य ये है कि जो वेराइटल डिटोरेशन जेनेटिक लेवल पे होता है उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक कंटामिनेशन ना हो। तो मीन्स जो भी जेनेटिक कंटामिनेशन होगा उससे डिटोरिएट वेराइटी हमारे जेनेटिकली डिटोरिएट करेगा, तो वैसे फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि एक होता है डेवलपमेंटल वेरिएशन। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो आइडियल लोकेशन है उसी लोकेशन में सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीड प्रोडक्शन करने से जो फेवरेबल प्लेस या क्लाइमेट नहीं है, इवन सॉयल फर्टिलिटी में भी वेरिएशन होने के कारण उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है मैकेनिकल मिक्सचर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये हम ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के टाइम में एंड प्लस सोइंग के टाइम पे किसी भी तरह का दूसरे वैरायटी का मिक्सचर उसमें सीड में ना हुआ हो, नहीं तो सीड पर्टिकुलरली जो है जब हम सीड सोइंग करते हैं उसमें जो है सीड ड्रिल के थ्रू दूसरे वैरायटी का सीड के साथ वहां पे सोइंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल पे हम क्लीन कर लें सीड ड्रिल को, देन हम सोइंग करें। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारा उसके कारण जो है हमारा आउटक्रॉसिंग होता है, नेचुरल आउटक्रॉसिंग है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके साथ ही कई सारे एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कि सुटेबल लैंड को सिलेक्ट करना, सही टाइम पे सोइंग करना, लाइन सोइंग करेंगे हम टाइमली, हम जो भी एग्रोनॉमिकल पैकेज और प्रैक्टिस जैसे वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सब अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ सोइंग के समय में हम सीड को प्रॉपरली ट्रीट भी कर लें ताकि किसी भी तरह का सीड बॉर्न डिजीज उसके साथ ना रहे, क्योंकि यदि डिजीज हमारा इन्फेक्टेड रहेगा तो लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड करेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन के रूप में करते हैं। इसका कारण ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है यहाँ पे, एक तो हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है और दूसरा चीज लार्ज स्केल पे सीड को प्रोडक्शन का भी करना है। तो इसके लिए हम जो है जनरेशन सिस्टम में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस से हम लोग ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाते हैं एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनाते हैं। जो न्यूक्लियस एंड फाउंडेशन, न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड है, इसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय अपने स्तर पे या ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के वो अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड है उसका प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में होता है। इसके अलावा एक अलग कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं, ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी है वो अपने से इन चीजों को क्वालिटी इंश्योर करती है। जितने भी मार्केट में अभी हाइब्रिड आ रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनी जो भी हाइब्रिड सेल कर रहे हैं, मोस्टली आपका धान का या मक्का का हो गया, या इसके अलावा कुछ वेजिटेबल सीड भी जो है वो सभी हाइब्रिड जो है एज ए मेजर मतलब मेजर क्लास ऑफ सीड जो है वो TL सीड के रूप में ही बाजार में सेल होता है। तो ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, और डिटेल में फिर हम जाएंगे कि अलग अलग क्रॉप का सीड प्रोडक्शन। तो जैसे कि इस क्रॉप में हमें पैडी का जानना है, मेजर क्रॉप को पैडी का जानना है, मेज का जानना है, लेंटिल का जानना है, मूंग का जानना है, और इनके बारे में सब चीज आप लोग जो है एक बार जो सीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीजों को कर लेना है। और सभी क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में समझना है। क्योंकि आइसोलेशन जो भी हम अडॉप्ट करते हैं उसका मेन उद्देश्य है आउट क्रॉसिंग को रोकना, क्योंकि यही मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण कि फील्ड लेवल पे जेनेटिक कंटामिनेशन होता है। जैसे कि पैडी का जो आइसोलेशन

0: ये जो आइसोलेशन है 400 मीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो लैंड यदि हम वैकेट रखें आइसोलेशन के लिए, फिजिकल आइसोलेशन करें या जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसका के कारण हम जो हमारा काफी लैंड वेस्ट हो जाता है। तो कई सारे मेथड्स भी हैं, पर्टिकुलर मैच के केस में हम आइसोलेशन डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर रो का प्लांटिंग करके। जो बॉर्डर रो होता है वहां पे हम मेल लाइन को ग्रो करते हैं और वहां पे 2-3 मेल लाइन को हम सराउंडिंग में कर देते हैं। यदि और बाहर से किसी भी दूसरे प्लॉट से कोई भी पॉलन आता है या कंटामिनेट होने की कोशिश करता है, वो मेल लाइन से कंटामिनेट हो जाएगा, वो फिल्टर्ड कर लेता है और जो हमारा जो फीमेल लाइन है प्लॉट में, सीड प्रोडक्शन प्लॉट में, वो हमारा सेफ रह जाता है, तो वहां तक जेनेटिक कंटामिनेशन का असर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब हम सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सीड प्रोडक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि सीड को हार्वेस्ट कब करना है। हार्वेस्टिंग के समय भी हमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मली जो सीड मैच्योर हो जाता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं कि उस समय तक जो है जितना ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन होना होता है सीड में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बट उस स्टेज पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि जो है वहाँ उस लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होता है। तो इसलिए हम लोग जो हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी जो पे हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी पे सीड का मॉइस्चर कंटेंट नियर अबाउट 16% के आसपास आ जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग करके उसके बाद हम जिसको हम कि रॉ सीड के रूप में बोलते हैं, रॉ सीड के रूप में हम उसको रखते हैं। फिर इस रॉ सीड को हम फर्दर जो है उसका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कई सारे जो है हमारे मशीन होते हैं, जो सबसे पहला मशीन होता है उसको कहते हैं प्री क्लीनर, नेक्स्ट मशीन जो है वो कहते हैं क्लीनर, एंड थर्ड मशीन होता है हमारे पास ग्रेडर्स। तो ग्रेडर्स में कई तरह के ग्रेडर्स मशीन होते हैं और ये ग्रेडर डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है। यदि लॉन्ग ग्रेन सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी का सीड है, तो वहाँ इंडेंटेड सिलिंड्रिकल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। इसमें कट ग्रेन जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और यदि हमारा राउंड सीडेड है तो स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। और इन जनरल यदि कोई भी क्रॉप है जो कि उसके लिए कॉमन ग्रेडर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मशीन होता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट का। इसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीड को कई ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो है मोस्टली जो है 1, 2, 3 और 4 ग्रेड का होता है। उसमें 1 ग्रेड एंड काफी बेस्ट क्वालिटी होता है, एंड 2 ग्रेड्स भी कह सकते हैं कि सीड का अच्छा क्वालिटी होता है। 3rd और 4th जो है उसका सीड का डेंसिटी या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो उसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। अब ग्रेडिंग की बात आती है उसका कि क्या जो सीड है उसको हम पर्टिकुलरली सेफ रखने के लिए, क्योंकि हम जब सीड को प्रोसेस करते हैं तो इमीडिएटली जो है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखना है। तो यहाँ पे भी फर्दर हमें एक बार मॉइस्चर चेक कर लेना है कि मॉइस्चर प्रॉपर एज पर जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉइस्चर हमें उसको सेफ लेवल पे करेंगे, फिर सीड को ट्रीटमेंट करते हुए पैकेजिंग करेंगे। और जब भी सीड को हमें बेचना होता है तो प्रॉपर लेबलिंग के बेचना होता है। जो सीड एक्ट 1966 है उसमें ये कंपलसरी है कि जब पैकेजिंग के विदाउट मीन्स लूज कंटेनर में हम सीड को नहीं बेच सकते हैं। जब भी होगा सीड पैकेजिंग करके ही होगा और उसमें प्रॉपर लेबल होगा। और तो मेजर इस कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, कल जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेकिन

उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं, और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इंटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है
जिसका इलाज जरूरी होता है और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिएं, नींद लें पर्याप्त। तो अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों एग्जाम्स चल रहे हैं और कल आपके कोर्स AST 1-1 यानी कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है और आपके लिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। आज के रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। ये जो कल का आप लोग का एग्जाम है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये काफी अहम कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि सीड के बाद सीड क्या होता है, सीड के गुणवत्ता का क्या पैरामीटर, मीन सीड क्वालिटी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं और सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उससे हम एक नया प्लांट या नया क्रॉप ले पाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स है वो हमारा सीड कहलाता है। इसके अलावा बॉटनिकल डिफिनेशन में हम उसको राइपेन ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होना अति आवश्यक है, जैसे उसमें जो इम्ब्रियो हो, लाइव हो, रिजर्व फूड मटेरियल्स हो जो कि ग्रोइंग सीडलिंग को वो फूड सप्लाई करे, इसके साथ साथ वो जो सीड है वो सराउंडेड प्रोटेक्टेड रहे, उसके जिसको हम कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं, है ना। अब आते हैं कुछ सीड प्रोडक्शन के बारे में कि हम जो है किस बेसिस पे, किस आधार पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडली जो है दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं और एक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। जेनेटिक प्रिंसिपल से हमारा तात्पर्य ये है कि जो वेराइटल डिटोरेशन जेनेटिक लेवल पे होता है उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक कंटामिनेशन ना हो। तो मीन्स जो भी जेनेटिक कंटामिनेशन होगा उससे डिटोरिएट वेराइटी हमारे जेनेटिकली डिटोरिएट करेगा, तो वैसे फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि होता है डेवलपमेंटल वेरिएशन। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो आइडियल लोकेशन है उसी लोकेशन में सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीड प्रोडक्शन करने से जो फेवरेबल प्लेस या क्लाइमेट नहीं है, इवन सॉइल फर्टिलिटी में भी वेरिएशन होने के कारण उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है मैकेनिकल मिक्सचर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये हम ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के टाइम में एंड प्लस सोइंग के टाइम पे किसी भी तरह का दूसरे वैरायटी का मिक्सचर उसमें सीड में ना हुआ हो, नहीं तो सीड पर्टिकुलरली ये जो है जब हम सीड सोइंग करते हैं उसमें जो है सीड ड्रिल के थ्रू दूसरे वैरायटी का सीड के साथ वहाँ पे सोइंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल पे हम क्लीन कर लें सीड ड्रिल को, देन हम सोइंग करें। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारा उसके कारण जो है हमारा आउटक्रॉसिंग होता है, नेचुरल आउटक्रॉसिंग है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके साथ ही कई सारे एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल हैं जैसे कि सुटेबल लैंड को सेलेक्ट करना, सही टाइम पे सोइंग करना, लाइन सोइंग करेंगे हम टाइमली, हम जो भी एग्रोनॉमिकल पैकेज और प्रैक्टिस जैसे वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सब एडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ सोइंग के समय में हम सीड को प्रॉपरली ट्रीट भी कर लें ताकि किसी भी तरह का सीड बॉर्न डिजीज उसके साथ ना रहे, क्योंकि यदि डिजीज हमारा इन्फेक्टेड रहेगा तो लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड करेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन के रूप में करते हैं। इसका कारण ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है यहाँ पे, एक तो हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है और दूसरा चीज लार्ज स्केल पे सीड को प्रोडक्शन का भी करना है। तो इसके लिए हम जो है जनरेशन सिस्टम में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस से हम लोग ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाते हैं एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनाते हैं। जो न्यूक्लियस एंड फाउंडेशन, न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड है, इसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय अपने स्तर पे या ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के वो अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड है उसका प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में होता है। इसके अलावा एक अलग कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं, ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन है जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी है वो अपने से इन चीजों को क्वालिटी इंश्योर करती है। जितने भी मार्केट में अभी हाइब्रिड आ रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनी जो भी हाइब्रिड सेल कर रहे हैं, मोस्टली आपका धान का या मक्का का हो गया, या इसके अलावा कुछ वेजिटेबल सीड भी जो है वो सभी हाइब्रिड जो है एज ए मेजर, मतलब मेजर क्लास ऑफ सीड जो है वो TL सीड के रूप में ही बाजार में सेल होता है। तो ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है। और डिटेल में फिर हम जाएंगे कि अलग अलग क्रॉप का सीड प्रोडक्शन, तो जैसे कि इस क्रॉप में हमें पैडी का जानना है, मेजर क्रॉप को पैडी का जानना है, मेज का जानना है, लेंटिल का जानना है, मूंग का जानना है, और इनके बारे में सब चीज आप लोग जो है एक बार जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीजों को कर लेना है। और सभी क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में समझना है। क्योंकि आइसोलेशन जो भी हम अडॉप्ट करते हैं उसका मेन उद्देश्य है आउटक्रॉसिंग को रोकना, क्योंकि यही मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण कि फील्ड लेवल पे जेनेटिक कंटामिनेशन होता है। जैसे कि पैडी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का 3 मीटर होता है, बट वहीं हम जब देखते हैं कि कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड, क्योंकि पैडी हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखते हैं तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है ना। तो इसका मेन कारण ये है कि चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो पॉलेंस है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो दूसरे जगह पे दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे नहीं जा पाते हैं, या तो वो ड्यू टू नेचर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं, मेनली जो है फ्लावर्स के नेचर के बेसिस पे ही है ना। जैसे कि राइस के केस में जो है वो क्लिस्टोगेमस नेचर ऑफ फ्लावर्स होता है, जब मेज में हम देखें वहां पे ओपन पॉलिनेटेड है, विंड के थ्रू पॉलन जो है काफी दूर तक जाता है, इसलिए हम मेज के केस में आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर हम रखते हैं। तो यहाँ पे यदि ये जो आइसोलेशन है 400 मीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो लैंड यदि हम वैकेट रखें आइसोलेशन के लिए, फिजिकल आइसोलेशन करें या जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसका के कारण हम जो हमारा काफी लैंड वेस्ट हो जाता है। तो कई सारे मेथड्स भी हैं, पर्टिकुलरली मेज के केस में हम आइसोलेशन डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर रो का प्लांटिंग करके। जो बॉर्डर रो होता है वहां पे हम मेल लाइन को ग्रो करते हैं और वहां पे 2 to 3 मेल लाइन को हम सराउंडिंग में कर देते हैं। यदि और बाहर से किसी भी दूसरे प्लॉट से कोई भी पॉलन आता है या कंटामिनेट होने की कोशिश करता है, वो मेल लाइन से कंटामिनेट हो जाएगा, वो फिल्टर्ड कर लेता है, और जो हमारा जो फीमेल लाइन है प्लॉट में, सीड प्रोडक्शन प्लॉट में, वो हमारा सेफ रह जाता है, तो वहां तक जेनेटिक कंटामिनेशन का असर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब हम सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सीड प्रोडक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि सीड को हार्वेस्ट कब करना है। हार्वेस्टिंग के समय भी हमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मली जो सीड मैच्योर हो जाता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, कि उस समय तक जो है जितना ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन होना होता है सीड में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बट उस स्टेज पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि जो है वहाँ उस लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होता है। तो इसलिए हम लोग जो हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी जो पे हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी पे सीड का मॉइस्चर कंटेंट नियर अबाउट 16% के आसपास आ जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग करके उसके बाद हम जिसको हम कि रॉ सीड के रूप में बोलते हैं, रॉ सीड के रूप में हम उसको रखते हैं, फिर इस रॉ सीड को हम फर्दर जो है उसका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कई सारे जो है हमारे मशीन होते हैं, जो सबसे पहला मशीन होता है उसको कहते हैं प्री क्लीनर, नेक्स्ट मशीन जो है वो कहते हैं क्लीनर, एंड थर्ड मशीन होता है हमारे पास ग्रेडर्स। तो ग्रेडर्स में कई तरह के ग्रेडर्स मशीन होते हैं, और ये ग्रेडर डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है। यदि लॉन्ग ग्रेन सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी का सीड है, तो वहाँ इंडेंटेड सिलिंड्रिकल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है, इसमें कट ग्रेन जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और यदि हमारा राउंड सीडेड है तो स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। और इन जनरल यदि कोई भी क्रॉप है जो कि उसके लिए कॉमन ग्रेडर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मशीन होता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट का, इसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीड को कई ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो है मोस्टली जो है 1, 2, 3 and 4 ग्रेड का होता है। उसमें 1 ग्रेड एंड काफी बेस्ट क्वालिटी होता है, एंड 2 ग्रेड्स भी कह सकते हैं कि सीड का अच्छा क्वालिटी होता है, 3rd and 4th जो है उसका सीड का डेंसिटी या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो उसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। अब ग्रेडिंग के बात आती है उसका कि क्या जो सीड है उसको हम पर्टिकुलरली सेफ रखने के लिए, क्योंकि हम जब सीड को प्रोसेस करते हैं तो इमीडिएटली जो है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखना है। तो यहाँ पे भी फर्दर हमें एक बार मॉइस्चर चेक कर लेना है कि मॉइस्चर प्रॉपर एज पर जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉइस्चर हमें उसको सेफ लेवल पे करेंगे, फिर सीड को ट्रीटमेंट करते हुए पैकेजिंग करेंगे। और जब भी सीड को हमें बेचा जाता है, बेचना होता है, तो प्रॉपर लेबलिंग के बेचना होता है। जो सीड एक्ट 1966 है उसमें ये कंपलसरी है कि जब पैकेजिंग के विदाउट मीन्स लूज में, लूज कंटेनर में हम सीड को नहीं बेच सकते हैं। जब भी होगा सीड पैकेजिंग करके ही होगा और उस पर प्रॉपर लेबल होगा, और तो मेजर इस कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, कल जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: जी बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं विमलेश जी।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे पहले ये प्रयास करें कि अपने बुजुर्गों और परिवार के उन प्रियजनों से मिलें जिनसे हमारी मुलाकात कम होती है। और हाँ, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अब तो सचमुच को समय के लिए पढ़ाई से छुट्टी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपकी छुट्टियों का समय एक बहुत अच्छा अवसर है अपने पढ़े हुए पाठ को दोहराने का। रोज थोड़ा समय पढ़ाई के लिए जरूर रखें, क्योंकि इससे आप जब भी स्कूल जाएंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे।
3: लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं? ये तो फिर से पढ़नी ही होंगी।
2: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ें, जैसे पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी मदद करती हैं। और हाँ, आप राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी लाभ उठा सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा रोचक साहित्य का भंडार।
3: और हाँ, आपको एक विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल पर जाएं और आपको वहाँ NCERT के पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगी। NCERT के ऑडियो बुक्स और वीडियो कार्यक्रम दीक्षा पर भी सुने और देखे जा सकते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें, सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी के पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। अक्सर होता ये है कि बच्चे अपनी पुस्तकों या कमरे को व्यवस्थित नहीं रख पाते। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: जी बहुत अच्छे। एक और बात तो छूटी गई, गर्मियों की छुट्टियों में देश भर में समर कैंप चलाए जाते हैं। इन दिनों बच्चे किसी भी समर कैंप में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कहानी लिखना, डायरी लिखना और हाँ, कविता लिखना इत्यादि। इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में वे कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, छुट्टियों की शुरुआत में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से मिलने का थोड़ा समय तो आपने जरूर निकाला होगा, जैसा हमने कहा था। अब जब छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं तो एक बार फिर से उनसे मुलाकात करने, क्योंकि
2: स्कूल खुलते ही बच्चे फिर से व्यस्त हो जाएंगे। तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो श्रोताओ, हमारा प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
4: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
5: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
4: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
5: अब सो जाओ।
4: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह,
6: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
7: वो युद्धनायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
6: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
7: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
8: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
9: हाँ।
7: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
6: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
7: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
6: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
7: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
6: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
10: सैनिक भाइयों,
9: जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोल देना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
10: जी सुबेदार साहब।
9: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
10: जी सुबेदार साहब।
9: बोले सोनिहार।
10: सत श्री अकाल।
7: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
11: तेजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
8: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बूमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना

0: शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं,

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. दोस्तों, अगर हम औषधीय पौधों की बात करें और पुराने समय की बात करें तो उस समय वैद्य जी, जी हाँ, अभी जो डॉक्टर हैं उस समय वैद्य जी हुआ करते थे और हमारा जो इलाज है वो जड़ी बूटियों से किया करते थे. और आज वही औषधीय पौधों के बारे में हम बात करेंगे. जी हाँ, पहले ज़माने में से जड़ी बूटी कहा जाता था, लेकिन आज हम उसे औषधीय पौधे भी कह सकते हैं और जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमारे शरीर को और बहुत सारे रोग दूर किए जा सकते हैं. तो आज खेती के बारे में जानेंगे, इसके औषधीय पौधों की खेती ग्रामीण युवाओं के लिए कैसे एक रोजगार का जरिया बनता है उसके बारे में आज हम जानेंगे. क्योंकि इस अगर बात करें औषधीय पौधों की खेती के बारे में, तो जब से ये कोविड काल आया है तब से भी इसकी जो है खेती में लोग दिलचस्पी लगाने लगे हैं, क्योंकि इसकी मांग जो है बाज़ार में बढ़ने लग गई है. तो आज पूरी जानकारी इस पर देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर आर डी रंजन. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो बात करते हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में. तो क्या हमारे किसान भाई इसकी खेती हमारे बिहार में कर सकते हैं और उनके उत्पादित फसल का उपयोग किन किन काम में वो कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल. मेरे प्यारे किसान भाइयों, और जैसा कि सभी जानते हैं कि हम बिहार में ये औषधीय पौधे की खेती की जा सकती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था का कृषि मेरुदंड के समान है. बिहार प्रदेश की जलवायु तथा मिट्टी में पारंपरिक खेती के अलावा सफलतापूर्वक औषधीय एवं सुगंध पौधे की भी खेती की जा सकती है, जो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है. औषधीय एवं सुगंध पौधों में प्रमुख सतावर, कालमेघ, सनाय, मुश्कदाना, सर्पगंधा, अश्वगंधा, पुदीना, लेमन ग्रास, सिट्रेला, तुलसी आदि प्रमुख हैं. इन औषधीय पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाया जा सकता है. जैसा कि अश्वगंधा के जड़ पत्तियों का उपयोग किया जाता है, कालमेघ का पूरा पौधा यूज करते हैं, तुलसी की पत्तियां यूज करते हैं, और जो कि इसमें औषधीय गुण होते हैं. इन औषधीय पौधे का महत्व मनुष्य जाति के लिए और भी बढ़ गया है, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण एवं संश्लेषित रसायनों के उपयोग से मानव अनेक प्रकार के असाध्य रोगों एवं विकृतियां हो रही हैं, जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है. और मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी विगत वर्तमान में जो हमारे विश्व पर जो एक कोरोना नाम का जो अभिशाप था, उसे मुक्त पाने के लिए हमारा औषधीय पौधा का सहारा लिया गया. इसलिए इसकी महत्ता और ज्यादा है. औषधीय पौधों को दवाई के रूप में तैयार कर विभिन्न रोगों के इलाज हेतु प्रयोग किया जाता है. इन पौधों से प्राप्त तेल से विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पान मसाला, दंत बंधन आदि को उपयोग में किया जाता है, जो कि किसान के लिए आर्थिक लाभकारी है.
0: जी जी, तो ये हो गई खेती की बात और किन किन फील्ड में से उपयोग किया जाता है किन किन चीज़ों के लिए. लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर साहब रोजगार सृजन की दिशा में, तो क्या ये औषधीय पौधे की खेती करना किसान भाइयों के लिए एक रोजगार सृजन का अवसर बन सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग पहले जानते थे कि औषधीय और सुगंधित पौधों का काफ़ी महत्व है, लेकिन विगत वर्षों में इसकी महत्ता और बढ़ गई है. जो हमारा जो विश्व जो कोरोना नाम, जो कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोना के बीमारी से जूझ रहा है, उसमें हमारा औषधीय एवं सुगंधित पौधे से काफ़ी अच्छा इलाज करने में मदद मिला है. और अभी के वर्तमान समय में युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के सहित आत्मनिर्भरता एवं आमदनी का एक सशक्त ये जरिया है. प्रदेश के अधिकतर किसान सिर्फ जागरूकता के अभाव में व्यावसायिक खेती एवं उसके मार्केटिंग से अनभिज्ञ हैं.
0: जी,
1: किसानों के आर्थिक स्थिति को व्यावसायिक खेती से जोड़कर उनके आर्थिक स्थिति

0: को मजबूत किया जा सकता है। सरकार के स्तर पर समूह बनाकर तकनीकी आधारित खेती पर सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की जानकारी के माध्यम से युवाओं को औषधीय पौधों की खेती की ओर प्रेरित किया जा सकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधे की खेती, आधारभूत संरचना के विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, बाजार व्यवस्था आदि से संबंधित योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत फसल के विविधीकरण द्वारा राज्य के किसानों, ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को आय के अधिक आय का स्रोत उपलब्ध कराना है। इस हेतु गुणवत्ता पूर्वक रोपण सामग्री के व्यवहार कर देसी चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले निर्यात योग अत्यधिक मांग वाले औषधीय पादप का समूह में खेती करना, आधारभूत संरचना विकास करने में प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं उत्पादों को बाजार में व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान करना है। कृषिकरण की इस परियोजना में वैसी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है जिसकी बाजार सुनिश्चित हो।
1: जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि औषधीय पौधे की खेती करने पर किसान भाइयों को लागत फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत अनुदान राशि सहायतार्थ मिल सकता है।
0: जी, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। औषधीय पादप के सर्वांगीण विकास हेतु प्राप्त सहायता अनुदान बिहार सरकार के द्वारा निम्न है। जैसा कि धृत कुमारी या काल मेघ या तुलसी या आंवला, स्टीविया, सतावर, ब्राह्मणी, सफ़ेद मुसली, पिंपली, अश्वगंधा, तेजपत्ता, इस औषधीय पौधों को लगाने पर जो सहायता राशि जो सरकार के द्वारा मिलती है वो 20% है। इसके अलावा बेल, सर्पगंधा, चित्रक, कलिहारी, इस पर 50% की सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा गूगल हैं जिस पर कि 75% सहायता अनुदान दिया जाता है। आधारभूत संरचना विकास करने हेतु सहायता अनुदान इस प्रकार हैं, जैसे कि हम नर्सरी का अगर विकास करना हो, मान लीजिए किसी औषधीय पौधे का नर्सरी का विकास करना है तो उस पर जो सहायता अनुदान दिया जाता है वो 50% है। या इसके अलावा अगर आप औषधीय पौधों को सुखाने हेतु एक सेट का निर्माण करना है उस पर सरकार 50% से 100% का सहायता अनुदान देती है। इसके अलावा भंडारण के लिए 50% से 100%, प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना होती 25%, या प्रयोगशाला अगर बनाना है तो उस पर सरकार 30% का अनुदान देती है, या फसल बीमा जो इंश्योरेंस होती है क्रॉप इंश्योरेंस उसके लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। आयुर्वेद के महत्व को पहचानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान को खाली पड़े जमीन का इस्तेमाल औषधीय पौधों की खेती के लिए करना चाहिए। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की असीम संभावना है। अतः किसान बंधुओं से ये मेरी गुजारिश है कि वो औषधीय पौधे को लगाकर अपने आर्थिक स्थिति को और अधिक ये बना सकते हैं।
1: जी, बिहार की बात कर तो बिहार में कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है और इससे कितना किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है।
0: जी, हमारे पास बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, लेकिन जो प्रमुख है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि इस औषधीय पौधों को अगर किसान भाई लगाते हैं तो उन्हें अच्छे आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से युक्त होने के साथ साथ सुगंधित तेलों के लिए उपयुक्त स्रोत होता है। तुलसी में जो हमें है मुख्यतः पत्तियाँ या बीज को हम उसे प्रमुख यूज में करते हैं। यह पौधा तिरु सुगंध युक्त 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। तुलसी की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु में की जा सकती है, परंतु इसकी खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है जिसका पीएच का मान 5 से 8.5 के मध्य हो एवं जल धारण की क्षमता अधिक हो। इसकी बुआई बीजों के द्वारा की जाती है। बीजों को पौधशाले में तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर में 600 से 800 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बीजों की बुआई के लिए लगभग 30 दिनों के बाद पौधशाला से पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में 60x30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। इसके एक हेक्टेयर में लगभग 10 क्विंटल हरी पत्तियां प्राप्त होती है, जिससे आवशन विधि द्वारा 80 से 90 लीटर तेल प्राप्त होता है। इसके तेल में मिथाइल जेविकोल, मिथाइल सिग्नमेट, यूजिनॉल इत्यादि केमिकल होते हैं जो काफ़ी लाभकारी हैं। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी का पौधा कीटनाशक, कीट प्रतिकारक एवं जीवाणुनाशक होता है। तुलसी की खेती जिन किसानों को करते हैं तो उन्हें 30 से 35 हजार रुपये की प्रति हेक्टेयर का आय प्राप्त हो सकता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा दूसरा जो औषधीय प्रमुख औषधीय पौधा है वो लेमन ग्रास है। यह पूर्वी भारतीय नींबू घास के नाम से जाना जाता है। यह नींबू इसके पत्ती के द्वारा आश्वन के द्वारा इससे तेल हम प्राप्त करते हैं। इसके तेल का मुख्य घटक सिट्रॉल होता है। इसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन एवं साबुन बनाने में किया जा सकता है। नींबू घास के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु उत्तम रहती है। इसका प्रबंधन शिल्प द्वारा किया जाता है। सिंचाई की सुविधा रहने पर इसे फरवरी मार्च में अथवा वर्षा ऋतु में रोपण उचित होता है। रोपाई के 90 से 100 दिनों के बाद प्रथम कटाई करते हैं। इसकी उपज क्षमता 175 से 225 किलोग्राम तेल प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। और किसान भाइयों, इसे हम 60 से 75 हजार रुपये का लाभ प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख औषधीय पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में सभी लोग जानते हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय औषधीय पौधा है। इसकी खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसकी जड़ें मूली के समान या मूली जैसे पतली एवं हल्के पीले रंग की होती है। इसके पत्ते एवं जड़ के मसलन पर अश्वमूत्र के समान गंध आती है। अश्वगंधा की जड़ों में एक उड़नशील तेल एवं विथेनियोल, निकोटीन आदि एल्कोएट्स पाए जाते हैं। इसके औषधीय उपयोग अनेक प्रकार के रोग में किया जाता है। यह शक्तिवर्धक, गठिया, मूत्र रोग, प्रसव काल में प्रयुक्त औषधि के रूप में काम आता है। इसकी बुआई बीज के द्वारा की जाती है। इसे अगस्त माह में लगाया जाता है एवं पंक्ति और पौधे के बीच की दूरी 20 से 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसकी खेती में रासायनिक खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और किसान भाइयों, इसे लगाने पर करीब 60 से 90 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक हमारा प्रमुख औषधीय पौधा है वो कालमेघ है। कालमेघ एक अति गुणकारी औषधीय पौधा है। इसमें एक प्रकार का क्षारीय तत्व एंड्रोग्राफिलिड या नियोड्राग्राफिलिड एवं कालमेघ्रीन पाया जाता है, जो स्वाद में तीव्र होता है, काफ़ी तीखा होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग वरण नाशक, जॉन्डिस, पेचिस, सर दर्द, कृमिनाशक, रस शोधक आदि में किया जा सकता है। इसकी नर्सरी मई से जून में लगाया जाता है और खेतों के लिए छायादार स्थान उपयुक्त होता है। इसकी कटाई फूल आने पर अगस्त से नवंबर के माह में करते हैं। पौधे की कटाई फरवरी मार्च में करते हैं। और किसान भाइयों, इससे हम 45 से 60 हजार रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रमुख औषधीय पौधा है शतावर। यह बहुवर्षीय आरोही लता युक्त कंद वाला औषधीय पादप है। इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। यह बलवर्धक, दुग्धवर्धक, पौष्टिक एवं से गुणों से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से गुणकारी औषधि तथा खाद्य पदार्थों का निर्माण में भी किया जाता है, जैसे सतावर घी, सतावर चूर्ण, चौनप्रास, महलम आदि में के बनाने में उपयोग किया जाता है। यह सभी प्रकार की मिट्टी पर उगाया जाता है, परंतु अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए बलुई मिट्टी में इसे लगाना चाहिए। इसके खेती प्रति हेक्टेयर से 10 से 15 क्विंटल सूखी जड़ें प्राप्त होता है और जिसका मूल्य बाजार में 90 से 1,20,000 रुपये तक होता है तथा इससे 60 से 90 हजार रुपया शुद्ध लाभ किसानों को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की आय होती है। सनाए एक दूसरा औषधीय पौधा है जो शुष्क जलवायु में उगाए जाने वाला एक झाड़ीदार औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियां एवं फली में दस्तकारक सेनोसाइड होते हैं। पत्तियों का सामान्यतः प्राकृतिक दस्तवार के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यह फसल के प्रकार के मिट्टियों में उगाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से इसे दोमट या लाल मटियार भूमि पर लगाना उचित होता है। इसके फसल से प्रति हेक्टेयर 38 से 56 हजार रुपये की आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर्पगंधा एक प्रमुख औषधीय बहुवर्षीय पौधा है। इसके जड़ों में 50 प्रकार के एल्कोएट्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग मानसिक रोग एवं तनाव रक्तचाप हृदय रोग चर्म रोग नेत्र रोग अनिद्रा विषनाशक आदि रोगों के औषधि निर्माण में किया जाता है। इसकी खेती नम एवं छायादार स्थानों में अनवृत के साथ की जाती है। बलुई दोमट मिट्टी में जड़ों के विकास में सहायता देती है। इसकी उपज क्षमता 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिससे किसान भाइयों आप 55 से 60 हजार रुपया की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
1: जी। तो ये थी कुछ बातें औषधीय पौधे की खेती से जुड़ी और कैसे एक रोजगार का आप सृजन कर सकते हैं इस खेती को अपनाकर। इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, क्या क्या मुनाफा होगा, कैसे मुनाफा होगा, आप कौन सी औषधीय पौधे की खेती कर सकते हैं बिहार में, सारी जानकारी मिली आपको। आशा करते हैं किसान भाइयों के इस वार्ता से आप लाभान्वित होंगे और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

नमस्कार, सेहत सही लाभकारी में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी मांओं को